रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने मनोजबं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेम शैला विदेहं धनुजुवन कृशानुजानि नामाग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराधी समरघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः ओम हमहनमते नमः ओम बागेश्वराय नमः ओम संन्यासिदेवाय नमः ओम दादा गुरुवे नमः लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय कपीशूर नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर चन को दाम मोह से

कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पंचनाथ महादेव की, राजकोट के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संत समाज की, आज के दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते।

0: रेस कोर्स ग्राउंड के इस समूचे क्षेत्र में चारों तरफ आज जहां नजर जा रही है ऐसा लग रहा जैसे हिंदू राष्ट्र का महाकुंभ लग गया हो। कहीं भगवान ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा, कहीं तिरंगा लहराता दिखाई पड़ रहा, कहीं हनुमान जी का ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा। चारों तरफ केवल सनातनी ही सनातनी दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे मैदान में राजकोट के पागलों, राजकोट में अब भगवान राज आता दिखाई पड़ रहा है। आज के तीसरे दिवस पर आज केवल दिव्य दरबार का आयोजन है। चूंकि कथा तो तीन दिन की थी लेकिन दो दिन की कथा हमने जानबूझकर की कि तीसरे दिन दिव्य दरबार 2-2.5 घंटे तक देर तक लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लगे। ये तो छोड़ो, अगली बार राजकोट आएंगे तो 2 दिन दरबार लगाएंगे। हाँ, एक की तो छोड़ो, 2 दिन दरबार लगाएंगे। हनुमान जी की भक्ति कराना करना, हनुमान चालीसा का प्रचार करना कराना, हनुमान जी से जोड़ना जुड़वाना कोई अंधविश्वास नहीं है। किसी ने कहा कि बाबा की कथा में, बाबा के दरबार में अंधविश्वास फैलाया जाता, बाबा को भगाया जाए, बाबा का दरबार ना किया जाए, वहां कोई ना जाए। अरे भाई, अंधविश्वास फैलाना होता तो हम राजकोट थोड़ी आते। भैया, यहां अंधविश्वास नहीं, हनुमान जी का विश्वास फैलाया जाता है। ये प्राचीन पद्धति है। हमारे यहां काल गणना है, हमारे यहां वैदिक ज्योतिष गणना है, हमारे यहां अंक गणना है, हमारे यहां पर अंक के आधार पर जीवन की विधा प्रथा बताई जाती, महत्वता बताई जाती। वैसे ही हमारे दादा गुरु के गुरु ने सवा करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की ऐसी कृपा और सिद्धि मिली कि पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लग रहा है और आज तक उस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। भारत तो भारत, हमने लगभग 7 देशों में जाकर के बालाजी की अनुकंपा से दिव्य दरबार लगाया। आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, देखकर भरोसा करना। आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आप किस विषय को पूछने आए हैं। अब ये क्या है हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो है। अब वो तुम पता करो ठटरी के बरी कि वो क्या है। वो हमको पता नहीं है, हम तो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेकर लिख देते हैं, हनुमान दादा उसको सही कर देते हैं। ये हनुमान दादा की कृपा है। हम भविष्य नहीं बताते, हम भविष्य बताने पर भरोसा नहीं करते, हम भविष्य बनाने पर भरोसा करते हैं। भविष्य बनाने की बात करते हैं, भविष्य बताने की नहीं करते। इसलिए जो भी दरबार में आज संपूर्ण राजकोट वाले उपस्थित हुए, भैया आप सब हमारे हो, हमारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, पड़ना ही है वीर बजरंग बली के चक्कर में पड़ो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। इसलिए हिंदुओं को शक्तियों के नाम पर, दरबारों के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा संकट मिट जाएगा। हनुमान जी महाराज के पास सब सामर्थ्यता, भूत पिशाच निकट नहीं। और महावीर जब नाम सुना दे ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जो चरण शरण में जाएगा, भैया आज तक का नियम है लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई राजकोट के पागलों, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। देखो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, हम तो उनके चाकर हैं, हनुमान जी के दास हैं, सब कुछ बालाजी जानते हैं, उनकी ही कृपा है। मन में राम नाम जपो, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देना, महीने में दो महीने में तीन महीने में धाम की पेशी के लिए आ जाना। आज जिनका पर्चा पर्ची निकले सो तो ठीक है, ना भी निकले तो आप लाल रंग के कपड़ा का नारियल अथवा सामूहिक अर्जी में सबसे लास्ट में हम लगवाएंगे, मुट्ठी बांध के बैठ जाना, आपकी बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और स्वप्न में दो दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना काम सफल हो करके रहेगा। हारे हारे बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बागेश्वर बालाजी महाराज स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनके ही चरण पकड़ो, उनकी ही दया है। हम हनुमान जी, हम चाहते हैं भारत का सनातनीय हिंदू हनुमान जी की भक्ति करे। किसकी भक्ति करे? हर हिंदू हनुमान जी की भक्ति करे, और भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। जो जो भारत में जन्म लेता वो हिंदू है, सनातनी है, और हम चाहते सब हनुमान जी की भक्ति करें ताकि दरबारों में भटकना ना पड़े। बोलो सीताराम। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता, पक्का या कच्चा, जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे, सोच लो। सोच लिया? अरे जोर से बोलो, सोच लिया? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। हमारी तीन बातें मानोगे? हमारी तीन बातें मानोगे? अरे बोलो तो। मानोगे? पक्का? पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो साधारण जीव हैं, साधारण आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जा। अब दूसरी बात सुनो, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है? और तीसरी बात सुनो, जब भी बालाजी के धाम पर जाना, जब भी बागेश्वर जाना, कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़ा ली, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। ये भाव जाकर के कह देना। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जातना टारो, देवन आन करीब नती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। नाम तिहारो, हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। लेकिन बालाजी की कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, ठटरी के बरे दोनों एक काम नहीं हो सकते, एक साथ एक ही काम हो सकता। इसलिए तुम सोचो कि हम नियम ना करें और बालाजी की कृपा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। नियम तो करना पड़ेगा, भले ही रुक रुक के करो, वर्ष में एक बार पेशी करो, पर नियम का पालन करना पड़ेगा। भैया बागेश्वर धाम पर हर शनिवार मंगलवार लाखों लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसे धाम बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में हम प्रणाम कर रहे, यहाँ के स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे। अब आज का दरबार बिना देरी किए हुए हम प्रारंभ कर रहे। बोलो,
1: क्या आपको बेडरूम के रंग का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या बेडरूम में हर व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए? क्या बेडरूम में गाय और बछड़े का चित्र रखने से विशेष फायदा होता है? कैसा होना चाहिए आपका शयन कक्ष यानी बेडरूम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
2: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर

0: कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से दिलाई राहत, मौसम विभाग का अनुमान उत्तर भारत में 16 जून तक नहीं सताएगी गर्मी, मॉनसून के झारखंड पहुंचने का दावा। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और ज्यादा फसल के लिए अनूठा कार्यक्रम, पशुओं की सेवा के जरिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए 15 क्विंटल लड्डू। कैंची धाम के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी, 1500 से ज्यादा जवान संभालेंगे पूरे समारोह की सुरक्षा, आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। देश को मिला 3000 से ज्यादा अग्निवीरों का दम, ओडिशा के खोरदा में INS चिलिका पर पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। आज फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के नीश शहर में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ कल इनोवेशन समिट, भारत इनोवेट 2026 का करेंगे शुभारंभ। असम से सिंगापुर भेजी गई GI टैग वाली तेजपुर लीची की पहली खेप, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कंटेनर को दिखाई हरी झंडी, दुनिया भर में फेमस है तेजपुर लीची की मिठास। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, SpaceX IPO ने रचा इतिहास, पहले दिन ही जुटाए $75 अरब।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए गर्मी से राहत वाली न्यूज, मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तर भारत में हफ्ते भर बारिश का अनुमान। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के लोगों को भी मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने कई राज्यों में 16 जून तक आंधी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना। लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जारी किया हाई अलर्ट। शिमला समेत हिमाचल में कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन आधी बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। रुक रुक कर बारिश जारी रहने के अनुमान। ज्यादातर इलाकों में तापमान में कई डिग्री तक आई गिरावट। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कई जगह पर तेज हवाएं चलने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपना पड़ा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने बारिश का लुत्फ लिया। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मसूरी में ठंडा हुआ मौसम, अचानक गिरा तापमान। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से गिरा पारा। तेज आंधी के बीच कई जगह गिरे पेड़, 7 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। बिजनौर में तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगह गिरे पेड़, यातायात भी प्रभावित। तमिलनाडु के तेनकासी में भारी बारिश के कारण डैम ओवरफ्लो। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मानसूनी बारिश के बीच प्रशासन मुस्तैद। देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। पहले के मुकाबले मानसून की रफ्तार कुछ धीमी। नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस समारोह के लिए तैयारियां पूरी। मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। 15 जून से शुरू होने वाले मेले के लिए 1500 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। कुमाऊं रेंज की आईजी ने इंतजामों का लिया जायजा। 3 सेक्टर में बांटा गया पूरा मेला क्षेत्र। कैंची धाम स्थापना दिवस पर देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के नैनीताल पहुंचने की संभावना। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। स्थापना दिवस पर कैंची धाम में पुलिस, यातायात, खुफिया और आपदा प्रबंधन की टीमें रहेंगी तैनात। संवेदनशील जगहों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। बाबा नीम करौली ने 15 जून को ही आश्रम की स्थापना की थी। स्थापना दिवस पर बाबा की विशेष पूजा और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को बांटे महाप्रसाद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक भक्त ने श्री महालक्ष्मी अंबाबाई देवी मंदिर को दी अनोखी भेंट। दान किया 1.5 किलो सोने का कलश। मंदिर को दान किए गए सोने के कलश की कीमत करीब 2.5 किलो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के परिवार ने अर्पित किया। मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया यह सोने का कलश क्रेन की मदद से करीब 12 घंटे की मेहनत के बाद स्थापित हुआ कलश। प्रयागराज के झूसी में 1.25 लाख तंदुल शिवलिंग महायज्ञ का आयोजन। श्रद्धालुओं ने मिट्टी और चावल से शिवलिंग बनाकर किया रुद्राभिषेक। तपोवन आश्रम में आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में हुआ महायज्ञ। महायज्ञ में शामिल श्रद्धालुओं ने देश की शांति, प्रगति और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के संत गजानन महाराज मंदिर में चढ़ाया गया 7.25 क्विंटल आम का भोग। पूरे इलाके में बना चर्चा का विषय। प्रसाद के तौर पर बांटे गए भोग में चढ़ाए गए आमों का रस, करीब 6000 भक्तों ने लंगर में खाया आमरस का विशेष प्रसाद। सबसे पहले संत गजानन महाराज की आरती की गई, जिसके बाद भक्तों में बांटा गया महाप्रसाद। संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की थी। आसपास के 30 गांवों से आई महिला वॉलंटियर्स ने श्रद्धालुओं के लिए तैयार की पूरन पोली, आमरस और दूसरे व्यंजन। एकादशी के मौके पर चढ़ाया गया था यह महाभोग। अपनी अनूठी परंपरा और विशाल महाप्रसाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है संत गजानन महाराज मंदिर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: क्या आपको बेडरूम के रंग का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या बेडरूम में हर व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए? क्या बेडरूम में गाय और बछड़े का चित्र रखने से विशेष फायदा होता है? कैसा होना चाहिए आपका शयन कक्ष यानी बेडरूम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: C Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके घर के बेडरूम यानी शयन कक्ष के बारे में और जानेंगे कि आपके घर का बेडरूम कैसा होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं आपके शयन कक्ष के बारे में यानी आपके बेडरूम के बारे में। शयन कक्ष यानी बेडरूम किसी घर के लिए कितना जरूरी है पहले ये समझते हैं। देखिए, मानसिक और शारीरिक आराम के लिए घर में बेडरूम होता है या घर में बेडरूम बनाया जाता है। शयन कक्ष का या आपके बेडरूम का संबंध होता है शुक्र ग्रह के साथ। कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव आपके बेडरूम से, आपके शयन कक्ष से संबंध रखता है। अगर आपका बेडरूम अच्छा हो, ठीक तरीके से आप रखते हो उसको, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याओं का निवारण जल्दी होता है। मानसिक चिंताएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं और बेडरूम को ठीक से रखने पर, शयन कक्ष को ठीक से रखने पर घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में खास तौर से पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहता है। देखिए, आपकी बेडरूम का रंग बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बेडरूम में जाते हैं चैन से सोने के लिए, चैन से रहने के लिए। तो बेडरूम में आपको चैन मिले, आनंद मिले, इसके लिए शयन कक्ष के रंग में और स्थान में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से शयन कक्ष नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम के साउथ वेस्ट के कोने में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम दिशा का अगर आपके बेडरूम में आए तो अच्छा होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिएगा कि आपके फ्लैट में, आपके कमरे में सूर्य का प्रकाश बेडरूम में आना चाहिए। शयन कक्ष की जगह फिक्स होनी चाहिए और उसे बार बार मत बदलिए। आज इस कमरे में सो रहे हैं, कल उस कमरे में सो रहे हैं, बार बार जगह बदलना उचित नहीं होगा। अपने बेडरूम का रंग हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखिएगा। बेडरूम में काला रंग, लाल रंग, भूरा रंग और गाढ़े रंगों का प्रयोग मत करिएगा। और बेडरूम में हल्के कलर तो रहने ही चाहिए, बेडरूम में लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बेडरूम में अंधकार ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। देखिए, शयन कक्ष में लोग जाने क्या क्या रखते हैं, क्यों रखते हैं, भगवान ही जाने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आप अपने बेडरूम में रखते हैं जिससे दिक्कत होती है, परिवार में तनाव पैदा होता है, आप चैन से सो नहीं पाते, आपके मन को शांति का अनुभव नहीं होता। तो बेडरूम में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीजें आप रखते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, शयन कक्ष में बहुत ज्यादा भारी पलंग मत रखिए। बहुत ज्यादा लोग आजकल डिजाइनर पलंग, नक्काशी वाले बड़े भारी भारी पलंग रखते हैं, वो ना रखें। हल्का और उपयोगी पलंग रखना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अपने बेडरूम में पलंग इस तरीके से रखें कि उसका सिरहाना दक्षिण की तरफ हो या पूरब की तरफ हो। पलंग के दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल रख सकते हैं। और अपने सिरहाने बहुत सारी चीजें मत रखिए, खास तौर से अपने सिरहाने पर या सर के पास जो साइड टेबल है उस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें। अपने शयन कक्ष में पानी और फूलों के चित्र आप लगा सकते हैं। सबसे बेहतर होगा अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र या अपने परिवार के लोगों का चित्र लगाएं तो अच्छा रहेगा। जिन पति पत्नी को संतान की कामना है वो अपने बेडरूम में सफेद गाय और सफेद बछड़े का चित्र या सफेद गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं। ऐसा करने से संतान उत्पत्ति में सहायता होती है। अब आपके घर का बेडरूम आपके चैन सुकून का स्थान है, आपके मैरिटल लाइफ का स्थान है और आपके जीवन में शांति लाने की जगह है। किन बातों का ध्यान आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए? शयन कक्ष में गंदगी मत रखिए। शयन कक्ष में रोज अच्छी तरह साफ सफाई, डस्टिंग होनी चाहिए। शयन कक्ष में जो भी टेबल है, पलंग है, अच्छी तरह से रोज साफ सफाई होनी चाहिए। अपने बेडरूम में देवी देवताओं और पूर्वजों के चित्र ना लगाएं। और अपने बेडरूम में अस्त्र शस्त्र, पिस्तौल, चाकू, लाठी डंडा ये सब ना रखें। अगर आपके बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें, बाथरूम का दरवाजा खुला ना रहे। शयन कक्ष में हल्की सुगंध और उत्तम प्रकाश की व्यवस्था रखनी चाहिए। देखिए, दो जगह घर की बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आपकी रसोई और एक आपका बेडरूम। तो अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें और अपने बिस्तर पर हर व्यक्ति को लेटने या सोने ना दें। अपने बिस्तर का प्रयोग हर व्यक्ति को ना करने दें और हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में प्रवेश भी ना करने दें। बेडरूम और किचन बहुत पर्सनल जगह है, वहां पर हर व्यक्ति का प्रवेश करना उचित नहीं होगा। देखिए बात बिल्कुल सही है, हो सकता है कि आपके पास एक ही बेडरूम हो, अब आपको पूजा भी करनी है, शयन भी करना है, उसी बेडरूम में रहना भी है, तो ऐसी स्थिति में आप घबराइए नहीं। देखिए या तो बेडरूम की किसी अलमारी को इस तरह पूजा का स्थान बना दीजिए और वहां पर सुबह शाम पूजा करिए, रात में जब सोने जाते हैं या दोपहर के समय जब होता है तो दोनों समय, दोपहर के समय भी और रात में अपने सोने के पहले, मंदिर में ऐसी व्यवस्था करिए कि एक पर्दे जैसा लगा दीजिए और दोपहर में भी पर्दा खींच दीजिए और रात में सोने के पहले भी पर्दा खींच दीजिए, उसके बाद आप अपने शयन कक्ष में आराम कर सकते हैं। अब जो आप पूजा स्थान मान लिया, बेडरूम में छोटा सा मंदिर रखे, उसके ऊपर पर्दा भी लगा दिए, दोपहर में बंद भी कर देते हैं, रात में भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा करके आप चला सकते हैं जीवन, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने बेडरूम में मंदिर रखा है तो देखिए आपको देवी देवताओं के उग्र स्वरूप का चित्र या उग्र स्वरूप की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लिया कि आपने बेडरूम में मंदिर बना लिया है, आपकी मजबूरी है, तो उस मंदिर में माँ काली का स्वरूप, भगवान नृसिंह का स्वरूप, भगवान भैरव का स्वरूप, ये जो देवी देवता के उग्र स्वरूप हैं, इनका चित्र या इनकी मूर्ति आपको नहीं रखनी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मान लिया आपने बेडरूम में अपने पूजा घर में शाम के समय दीपक जला दिया, आपने पूजा कर ली, तो जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बेडरूम में सोइए नहीं। दीपक शांत हो जाए, देवी देवता को नमस्कार कर लीजिए, बेडरूम का पर्दा, अपने पूजा घर का पर्दा खींच दीजिए, उसके बाद आप विश्राम और शयन कर सकते हैं। देखिए आप जिस कलम का लिखने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं उस अपनी कलम को हमेशा संभाल कर रखिए। अगर आपकी कलम बार बार खोती रहेगी या बार बार कलम गिराते रहेंगे तो धन की बचत कर पाना बहुत कठिन होगा। आप पुरुष हों या स्त्री हों, ससुराल के रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या करें? रोज शाम के समय पूजा जरूर करें और पूजा में एक बार माता दुर्गा के 32 नाम पढ़िएगा और अपने पूजा के स्थान पर एक चांदी की कटोरी या चांदी के गिलास में हमेशा जल भर करके रखिएगा, नियमित रूप से इस जल को बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें, आप पुरुष हो या स्त्री हो, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में 16 जून तक नहीं सताएगी गर्मी। मॉनसून के झारखंड पहुंचने का दावा। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और ज्यादा फसल के लिए अनूठा कार्यक्रम। पशुओं की सेवा के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए 15 क्विंटल लड्डू। कैची धाम के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। 1500 से ज्यादा जवान संभालेंगे पूरे समारोह की सुरक्षा। आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। देश को मिला 3000 से ज्यादा अग्निवीरों का दम। ओडिशा के खुर्दा में आईएनएस चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड। अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। स्पेसएक्स आईपीओ ने रचा इतिहास। पहले दिन ही जुटाए $75 अरब।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
13: नमस्कार।
12: तो देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आपके शयन कक्ष यानी कि आपके बेडरूम के बारे में। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र आखिरकार बेडरूम के बारे में क्या कहता है, किस तरीके का रंग होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, किस तरीके की वस्तुएं अपने बेडरूम में रखना आपके लिए शुभ हो सकता है, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
9: देखिए, आप जिस कलम का लिखने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं उस अपनी कलम को हमेशा संभाल कर रखिए। अगर आपकी कलम बार बार खोती रहेगी या बार बार कलम गिराते रहेंगे तो धन की बचत कर पाना बहुत कठिन होगा।
12: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 13 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
9: दिनांक 13 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 4:07 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:25 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
12: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं शयन कक्ष की बनावट के बारे में यानी कि आपके बेडरूम के बारे में। तो अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें या फिर वास्तुकला के बारे में बात करें, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, पंडित जी से जानते हैं बेडरूम की बनावट, उसकी दिशा, अमूमन हम इसके बारे में बात करते हैं कैसा हो बेडरूम और कितना महत्वपूर्ण होता है ज्योतिषीय नजरिए से इसे देखें तो।
9: जी, आज हम बात कर रहे हैं आपके शयन कक्ष के बारे में यानी आपके बेडरूम के बारे में। शयन कक्ष यानी बेडरूम किसी घर के लिए कितना जरूरी है पहले ये समझते हैं। देखिए, मानसिक और शारीरिक आराम के लिए घर में बेडरूम होता है या घर में बेडरूम बनाया जाता है। शयन कक्ष का या आपके बेडरूम का संबंध होता है शुक्र ग्रह के साथ। कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव आपके बेडरूम से, आपके शयन कक्ष से संबंध रखता है। अगर आपका बेडरूम अच्छा हो, ठीक तरीके से आप रखते हो उसको, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याओं का निवारण जल्दी होता है, मानसिक चिंताएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। और बेडरूम को ठीक से रखने पर, शयन कक्ष को ठीक से रखने पर घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में खास तौर से पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहता है।
12: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
9: मेष राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, करियर की समस्या हल होगी, पारिवारिक समस्या भी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अपने महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
12: तो चलिए, शयन कक्ष के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो बेडरूम का आखिरकार किस तरह का रंग होना चाहिए, कौन से रंग का चुनाव आपको करना चाहिए और साथ ही में बेडरूम में किन बातों का खास ध्यान रखें, किस तरीके की वस्तुएं आपको अपने बेडरूम में रखनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
9: देखिए, आपकी बेडरूम का रंग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बेडरूम में जाते हैं चैन से सोने के लिए, चैन से रहने के लिए। तो बेडरूम में आपको चैन मिले, आनंद मिले, इसके लिए शयन कक्ष के रंग में और स्थान में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से शयन कक्ष नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम के साउथ वेस्ट के कोने में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम दिशा का अगर आपके बेडरूम में आए तो अच्छा होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिएगा कि आपके फ्लैट में आपके कमरे में सूर्य का प्रकाश बेडरूम में आना चाहिए। शयन कक्ष की जगह फिक्स होनी चाहिए और उसे बार बार मत बदलिए। आज इस कमरे में सो रहे हैं, कल उस कमरे में सो रहे हैं, बार बार जगह बदलना उचित नहीं होगा। अपने बेडरूम का रंग हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखिएगा। बेडरूम में काला रंग, लाल रंग, भूरा रंग और गाढ़े रंगों का प्रयोग मत करिएगा। और बेडरूम में हल्के कलर तो रहने ही चाहिए, बेडरूम में लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बेडरूम में अंधकार ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा।
12: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
9: कर्क राशि, नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
12: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
9: जी, आज का पहला प्रश्न यमन सैनी जी ने लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 6 अगस्त 2025, 3:54 शाम को, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का जीवन, करियर और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए अमन जी, एक तो आपकी पुत्री बहुत छोटी है, अभी बहुत सारी चीजें कह पाना जल्दबाजी है। फिर भी इसकी कुंडली है धनु लग्न की और धनु राशि की, और अभी के लिए जो कुंडली में संभावना बनती है, जब तक ये 8 वर्ष की नहीं हो जाती हैं, तब तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इनको सर में चोट न लगे, इस बात से इनको बचाइएगा। आगे चल करके अगर कृपा रही तो मेडिकल के क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जा सकती हैं, लेकिन शुरुआत में स्वास्थ्य की समस्याएं इनको परेशान करेंगी। इनकी माता जी को बोलिए कि इस बच्ची के नाम से रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, और इस बच्ची के लिए हर सोमवार को सफेद चीज का अगर दान करें तो काफी बेहतर होगा।
12: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम यानी कि गुड लक टुडे रोज देखते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि हमारी ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, डिटेल्स हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और आपके सवालों का जवाब पंडित जी आपको जरूर देंगे। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
9: जी अगला प्रश्न जय करिया जी ने हमें लिखा है, जूनागढ़ से लिखते हैं। 8 दिसंबर 1994 का जन्म है, 2:15 मध्य रात्रि को, जूनागढ़। ये कह रहे हैं कि मैं कमोडिटी का काम करता हूं, काम मेरा नहीं चल पा रहा है, आगे मैं नौकरी में जाऊं या व्यापार करूं। देखिए आपकी कुंडली जो है वो मकर राशि की बनती है और बुध और बृहस्पति दोनों के हालात कुंडली में बहुत अच्छे तो नहीं है, इसीलिए शेयर मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बुद्धिमानी ये कहती है कि आपको नौकरी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। वैसे आपके हालात 29 सितंबर 2026 के बाद बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा।
12: देखिए शयन कक्ष यानी आपका जो बेडरूम है वो सिर्फ एक कमरा नहीं है बल्कि कई एनर्जीज अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसे में किस तरह की वस्तुएं वहां पर रखनी चाहिए, किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
9: देखिए शयन कक्ष में लोग जाने क्या क्या रखते हैं, क्यों रखते हैं, भगवान ही जाने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आप अपने बेडरूम में रखते हैं जिससे दिक्कत होती है, परिवार में तनाव पैदा होता है, आप चैन से सो नहीं पाते, आपके मन को शांति का अनुभव नहीं होता। तो बेडरूम में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीजें आप रखते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखें। देखिए शयन कक्ष में बहुत ज्यादा भारी पलंग मत रखिए। बहुत ज्यादा लोग आजकल डिजाइनर पलंग, नक्काशी वाले बड़े भारी भारी पलंग रखते हैं, वो ना रखें। हल्का और उपयोगी पलंग रखना सबसे ज्यादा बेहतर होगा।

0: सफेद बछड़े का चित्र या सफेद गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं। ऐसा करने से संतान उत्पत्ति में सहायता होती है।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें, शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, शयन कक्ष आपके घर के सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक है। ऐसे में शयन कक्ष को डिजाइन करते हुए, उसे सेट करते हुए किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं।
0: अब आपके घर का बेडरूम आपके चैन सुकून का स्थान है, आपके मैरिटल लाइफ का स्थान है और आपके जीवन में शांति लाने की जगह है। किन बातों का ध्यान आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए? शयन कक्ष में गंदगी मत रखिए। शयन कक्ष में रोज अच्छी तरह साफ सफाई डस्टिंग होनी चाहिए। शयन कक्ष में जो भी टेबल है, पलंग है, अच्छी तरह से रोज साफ सफाई होनी चाहिए। अपने बेडरूम में देवी देवताओं और पूर्वजों के चित्र ना लगाएं और अपने बेडरूम में अस्त्र शस्त्र, पिस्तौल, चाकू, लाठी डंडा ये सब ना रखें। अगर आपके बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें, बाथरूम का दरवाजा खुला ना रहे। शयन कक्ष में हल्की सुगंध और उत्तम प्रकाश की व्यवस्था रखनी चाहिए। देखिए, दो जगह घर की बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आपकी रसोई और एक आपका बेडरूम। तो अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें और अपने बिस्तर पर हर व्यक्ति को लेटने या सोने ना दें। अपने बिस्तर का प्रयोग हर व्यक्ति को ना करने दें। और

0: हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में प्रवेश भी ना करने दें। बेडरूम और किचन बहुत पर्सनल जगह है, वहां पर हर व्यक्ति का प्रवेश करना उचित नहीं होगा।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: दबाव कम होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न तरुण जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1979, 10:30 प्रातः, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर और मेरे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तरुण, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मेष राशि की, लग्न में ही शनि राहु विद्यमान हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में दशा चल रही है राहु की और अंतर दशा चल रही है बृहस्पति की। पहली बात यह है कि आप दोबारा से नौकरी खोजने का प्रयास करिए, आपको नौकरी मिलेगी। मेंटल टेंशन, डिप्रेशन और पेट की समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाला समय आपका बेहतर है, फरवरी 2027 के बाद से चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 12-13 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा तो परिणाम बेहतर होंगे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल यानी आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी पर आप हमें अपने प्रश्न अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए इसी के साथ पंडित जी से आप जान लेते हैं अगला सवाल किसका है।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अपेक्षा द्विवेदी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 6 मई 2004 का जन्म है, 3:50 दोपहर में, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और किस क्षेत्र में मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। अपेक्षा, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा केतु की और अंतर दशा सूर्य की चल रही है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि 2026-27 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आंखों की समस्या से, चोट चपेट से, दुर्घटना से बचिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन या कानून के क्षेत्र में अगर आप कोशिश करें, सबसे ज्यादा एजुकेशन या प्रशासन के क्षेत्र में कोशिश करें तो आप सफल होंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में एक ही बेडरूम होता है और पूजन पाठ भी उसी कमरे में करते हैं, और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि जो आपका शयन कक्ष होता है उसमें आपको मंदिर नहीं रखना। लेकिन अगर कोई इस तरीके की परिस्थिति में है तो उनसे किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर भी उसी कमरे में हो और उसका बेडरूम भी उसी कमरे में हो?
0: जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके पास एक ही बेडरूम हो, अब आपको पूजा भी करनी है, शयन भी करना है, उसी बेडरूम में रहना भी है, तो ऐसी स्थिति में आप घबराइए नहीं। देखिए, या तो बेडरूम की किसी अलमारी को इस तरह पूजा का स्थान बना दीजिए और वहां पर सुबह शाम पूजा करिए। रात में जब सोने जाते हैं या दोपहर के समय जब होता है तो दोनों समय, दोपहर के समय भी और रात में अपने सोने के पहले, मंदिर में ऐसी व्यवस्था करिए कि एक पर्दे जैसा लगा दीजिए, और दोपहर में भी पर्दा खींच दीजिए और रात में सोने के पहले भी पर्दा खींच दीजिए। उसके बाद आप अपने शयन कक्ष में आराम कर सकते हैं। अब जो आप पूजा स्थान मान लिया, बेडरूम में छोटा सा मंदिर रखे, उसके ऊपर पर्दा भी लगा दिए, दोपहर में बंद भी कर देते हैं, रात में भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा करके आप चला सकते हैं जीवन, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने बेडरूम में मंदिर रखा है तो देखिए, आपको देवी देवताओं के उग्र स्वरूप का चित्र या उग्र स्वरूप की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लिया कि आपने बेडरूम में मंदिर बना लिया है, आपकी मजबूरी है, तो उस मंदिर में माँ काली का स्वरूप, भगवान नृसिंह का स्वरूप, भगवान भैरव का स्वरूप, ये जो देवी देवता के उग्र स्वरूप हैं, इनका चित्र या इनकी मूर्ति आपको नहीं रखनी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मान लिया आपने बेडरूम में अपने पूजा घर में शाम के समय दीपक जला दिया, आपने पूजा कर ली, तो जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बेडरूम में सोइए नहीं। दीपक शांत हो जाए, देवी देवता को नमस्कार कर लीजिए, बेडरूम का पर्दा, अपने पूजा घर का पर्दा खींच दीजिए, उसके बाद आप विश्राम और शयन कर सकते हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 13 जून को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कितना अच्छा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 13 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए करियर की शुरुआत हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का रखिएगा, दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं। साल के अंत में अविवाहितों के विवाह के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: देखिए, शनि की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो हनुमान जी की कैसे पूजा करें जिससे शनि की बाधाएं दूर हो जाएं? रोज सवेरे और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के शरीर का सिंदूर लाकर रख लें और सुबह स्नान के बाद उस सिंदूर को अपने कंठ पर या अपने माथे पर लगाएं। हर शनिवार की शाम को दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके से हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि की बाधा कम हो जाएगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 13 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 13 जून, दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है कन्या। ये मेहनत के दम पर शिक्षा में सफलता पाते हैं। अक्सर अपना करियर पढ़ाई जो करते हैं उसके अलावा के क्षेत्रों में बना लेते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए इनको शनि देव की नियमित उपासना करनी चाहिए।
1: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आप पुरुष हो या स्त्री हो, ससुराल के रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या करें? रोज शाम के समय पूजा जरूर करें और पूजा में एक बार माता दुर्गा के 32 नाम पढ़िएगा और अपने पूजा के स्थान पर एक चांदी की कटोरी या चांदी के गिलास में हमेशा जल भर करके रखिएगा। नियमित रूप से इस जल को बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें, आप पुरुष हो या स्त्री हो, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: क्या आपके घर के बेडरूम का रंग महत्वपूर्ण होता है? क्या बेडरूम में पलंग के सिरहाने की दिशा भी होनी चाहिए? क्या बेडरूम में पूजा घर रख सकते हैं? कैसा होना चाहिए आपका बेडरूम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोज जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
13: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
12: और चलिए अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव दिख रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा चल रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन आस्था फिर भी मौसम पर भारी पड़ रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारों पर मौसम का असर नहीं दिखा। हालांकि मौसम के बदले मिजाज से ठंड जरूर बढ़ गई है, बावजूद इसके श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ बद्री विशाल के दर्शन पूजन कर रहे हैं।
14: आसमान में बादलों की मौजूदगी, सड़कों पर गाड़ियों की थमे रफ्तार और खुली छतरियां लिए लोग बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं। ये दूसरी तस्वीर भी बद्रीनाथ धाम की ही है जो बताती है कि आस्था मौसम पर भारी है। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में खुले आसमान के नीचे भक्तों की लंबी कतारें हैं। आसमान में बादलों का डेरा है, हवा में नमी है, ठंड बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बता रही है कि आस्था के आगे मौसम की नहीं चलने वाली। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। लगातार हो रही झमाझम बारिश और जून में भी पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर हो रही बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। लोगों के गर्म कपड़े निकल आए हैं।
15: पहाड़ों में जो बारिश हो रही है, चोटियों पे बर्फबारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है। अचानक ठंड बढ़ने से हर तरफ फिर से लोगों के जो गर्म कपड़े थे वो बाहर निकल आए हैं। अभी फिर से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो उसका साक्षात देखने को मिल रहा है कि प्रशासन ने भी यात्रियों को, जो तीर्थयात्री हैं हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं, उन्हें यात्रा को, जो यात्रा मार्गों पे है, नजर बनाकर सफर करने की हिदायत दी है।
14: मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया था। हालांकि इस साल 19 अप्रैल से लेकर अब तक कई बार मौसम का मिजाज बिगड़ा। मौसम आंधी बारिश और बर्फबारी के रूप में तीर्थयात्रियों की कई बार परीक्षा ले चुका है। बावजूद इसके चार धाम यात्रा को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद से ही धाम में भक्तों का लगातार सैलाब उमड़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
16: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
17: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या आपके घर के बेडरूम का रंग महत्वपूर्ण होता है? क्या बेडरूम में पलंग के सिरहाने की दिशा भी होनी चाहिए? क्या बेडरूम में पूजा घर रख सकते हैं? कैसा होना चाहिए आपका बेडरूम, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: भारतीय सैन्य अकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसर के साथ बातचीत के साथ भारतीय सेना को मिले 441 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। देश को मिला 3,000 से ज्यादा अग्निवीरों का दाम, ओडिशा के खुर्धा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन पूजन। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मिला रिकॉर्ड दान, कुंडी से निकली 4,20,00,000 रुपए की धनराशि, बड़ी संख्या में मंदिर सेवकों ने मिलकर गिनी रकम। बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से दिलाई राहत, मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में 16 जून तक नहीं सताएगी गर्मी, मॉनसून के झारखंड पहुंचने का दावा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दोपहर 1:30 पर होगा शुरू।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके।
5: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए गर्मी से राहत वाली न्यूज, मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत में हफ्ते भर बारिश के अनुमान। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के लोगों को भी मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने कई राज्यों में 16 जून तक आंधी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के जताया अनुमान, लोगों को गर्मी से मिलेगी इससे राहत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना, लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जारी किया हाई अलर्ट। शिमला समेत हिमाचल में कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने 2 दिन आंधी बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। रुक रुक कर बारिश जारी रहने के अनुमान, ज्यादातर इलाकों में तापमान में कई डिग्री तक आई गिरावट। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कई जगह पर तेज हवाएं चलने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपना पड़ा, बड़ी संख्या में सैलानियों ने बारिश का लुत्फ लिया। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मसूरी में ठंडा हुआ मौसम, अचानक गिरा तापमान। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से गिरा पारा। तेज आंधी के बीच कई जगह गिरे पेड़, 7 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। बिजनौर में तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगह गिरे पेड़, यातायात भी प्रभावित। तमिलनाडु के तेनकासी में भारी बारिश के कारण डैम ओवरफ्लो। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मानसूनी बारिश के बीच प्रशासन मुस्तैद। देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। पहले के मुकाबले मानसून की रफ्तार धीमी हुई। नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस समारोह के लिए तैयारियां पूरी। मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। 15 जून से शुरू होने वाले मेले के लिए 1500 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। कुमाऊं रेंज की आईजी ने इंतजामों का जायजा लिया। 3 सेक्टर में बांटा गया पूरा मेला क्षेत्र। कैंची धाम स्थापना दिवस पर देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु नैनीताल उनके पहुंचने की संभावना। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। स्थापना दिवस पर कैंची धाम में पुलिस, यातायात, खुफिया और आपदा प्रबंधन की टीमें रहेंगी तैनात। संवेदनशील जगहों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। बाबा नीम करौली ने 15 जून को ही रीति आश्रम की स्थापना। स्थापना दिवस पर बाबा की विशेष पूजा और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे महाप्रसाद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक भक्त ने श्री महालक्ष्मी अंबा देवी मंदिर में दी अनोखी भेंट। दान किया 1.5 किलो सोने का कलश। मंदिर को दान किए गए सोने के कलश की कीमत करीब 2.5 किलो उसका वजन। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के परिवार ने अर्पित किया। मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया यह सोने का कलश क्रेन की मदद से करीब 12 घंटे की मेहनत के बाद स्थापित हुआ कलश। प्रयागराज की झूसी में 1.25 लाख तंदुल शिवलिंग महायज्ञ का आयोजन। श्रद्धालुओं ने मिट्टी और चावल से शिवलिंग बनाकर किया रुद्राभिषेक। तपोवन आश्रम में आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल के नेतृत्व में हुआ महायज्ञ। महायज्ञ में शामिल श्रद्धालुओं ने देश की शांति, प्रगति और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रार्थना की। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में से सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर तिरुचेंदूर की दानपेटी में 4.20 करोड़ के रिकॉर्ड धनराशि प्राप्त। कुछ समय पहले 4 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ था संग्रह। इस नकद राशि के अलावा भक्तों ने भारी मात्रा में सोना चांदी भी चढ़ाया जिसमें 1 किलो 62 ग्राम सोना और 26 किलो चांदी शामिल। मंदिर की दानपेटी से देश विदेश के भक्तों द्वारा अर्पित किए गए 963 विदेशी नोट। लगातार बढ़ रही है विदेशी भक्तों की आस्था। दान करने वाले भक्तों ने भगवान को चांदी का पालना किया अर्पित। सैकड़ों वॉलंटियर्स महिलाओं ने की नोटों की गिनती। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भक्तों की सुविधाओं के लिए नया प्रशासनिक भवन बनाया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के संत गजानन महाराज मंदिर में चढ़ाया गया 7.25 क्विंटल आम का भोग। पूरे इलाके में बना चर्चा का विषय। प्रसाद के तौर पर बांटा गया भोग में चढ़ाए गए आमों का रस। करीब 6000 भक्तों ने लंगर में खाया आम रस का विशेष प्रसाद। सबसे पहले संत गजानन महाराज की आरती की गई जिसके बाद भक्तों ने बांटा महाप्रसाद। संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। आसपास के 30 गांवों में आई महिलाएं वॉलंटियर्स ने श्रद्धालुओं के लिए तैयार की पूरन पोली, आमरस और दूसरे व्यंजन। एकादशी के मौके पर चढ़ाया गया था ये महाभोग। अपनी अनूठी परंपरा विशाल महाप्रसाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है संत गजानन महाराज मंदिर। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन। पशुओं के लिए तैयार किए गए करीब 15 क्विंटल लड्डू। कार्यक्रम में योगदान देकर पशुओं की सेवा के जरिए वरुण देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं लोग। पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किए गए पौष्टिक लड्डू। इस अनूठे कार्यक्रम में 250 से 300 महिलाएं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल। 1200 किलो आटा, 300 किलो गुड़, 300 किलो तेल से बनाए गए लड्डू। लगातार 23वें साल किया जा रहा है इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के जरिए बरसात से पहले पशु सेवा माध्यम से वरुण देव को प्रसन्न करने की कोशिश। जामनगर शहर के अलग अलग इलाकों के साथ आसपास के गांवों में गायों, शानों और दूसरे मूंगे पशुओं को खिलाए जाएंगे लड्डू। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के न्योते पर आज फ्रांस रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलेंगे मोदी। कल पीएम मोदी और मैंग्रोन की अगुवाई में भारत और फ्रांस के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। बैठक में दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे दोनों नेता। नीस में कल भारत इनोवेट 2026 समिट का उद्घाटन करेंगे मोदी और मैक्रोन। समिट में भारत फ्रांस समेत दुनिया भर के इनोवेशन स्टार्टअप होंगे शामिल। नीस शहर में 14 से 16 जून तक चलेगा भारत इनोवेट 2026 समिट। नीस शहर के चलने वाले ट्राम पर लगाए गए भारत इनोवेट 2026 के संदेश। भारत इनोवेट 2026 में 120 भारतीय इनोवेटर, 500 से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ साथ ग्लोबल सीईओ और इंडस्ट्री लीडर होंगे शामिल। फ्रांस से स्लोवाकिया दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 से 16 जून तक पीएम के स्लोवाकिया दौरे पर दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों पर होगी बात। स्लोवाकिया दौरे के बाद फिर फ्रांस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के एवियन में 16 से 17 जून को G7 समिट में होंगे शामिल। कई देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद के डूंडीगल वायुसेना अकेडमी में सम्मान समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने वायुसेना अकेडमी में अफसरों और कैडेट से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने कई अफसरों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री आज अकेडमी के 217वें कोर्स की संयुक्त दीक्षांत परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लाइट कैडेट्स को कमीशन भी प्रदान करेंगे। देश को मिली 3011 नए अग्निवीरों की शक्ति। ओडिशा के खोरधा में हुई पासिंग आउट परेड। जोश से भरे अग्निवीरों के कदमताल से गूंजा INS चिलिका। पासिंग आउट परेड में शामिल अग्निवीरों ने 116 महिला अग्निवीर भी शामिल। पासिंग आउट परेड से कोस्ट गार्ड को मिले 265 नाविक। भारतीय सेना ने लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती गांवों के स्कूली बच्चों को बचालिक में सिंधु व्यू पॉइंट का कराया दौरा। करगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित। इस दौरे के दौरान बच्चों को सीमावर्ती इलाकों में जीवन सैनिक की चुनौतियां और सशस्त्र बलों के साहस बलिदान को करीब से जानने समझने का मौका मिला। बेंगलुरु में 13 से 14 जून को राइस कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। 100 से ज्यादा स्टार्टअप अपनी तकनीक का करेंगे प्रदर्शन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर लद्दाख के टंगसे में कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय सेना बाल श्रम के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। टंगसे के सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों और शिक्षा पर दिया गया जोर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हिमाचल के दुर्गम इलाकों में अब आसानी से और बेहद कम समय में पहुंचेगा डाक पार्सल। मंडी में ड्रोन से डाक पहुंचने की हुई शुरुआत। ड्रोन के जरिए मंडी से द्रंग क्षेत्र के रेहड़धार ब्रांच भेजी गई पहली डाक। 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित ब्रांच में सिर्फ 6 मिनट में पहुंचा पार्सल। झारखंड के हजारीबाग में आम और आम से बने उत्पादनों की लगी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा तरह के आम। किसानों की आमदनी बढ़ाना मकसद। ओडिशा में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन मांझी हुए शामिल। 6 दिवसीय शिमला समर फेस्टिवल का हुआ समापन। समारोह के आखिरी दिन गीत संगीत के साथ स्थानीय कला संस्कृति के दिखे रंग। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। थिएटर सिनेमा रेडियो और टीवी कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। डॉक्टर रस्तोगी ने 100 नाटकों 75 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ओडिशा के सीमांचल पात्रा को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। अनोखी संगीत में और मुखौटा आधारित लोक नाट्य परंपरा के विकास और संरक्षण में निभाई अहम भूमिका। इसी महीने शादी के बंधन में बंधेंगे तेज गेंदबाज आकाशदीप। होने वाली पत्नी अक्षता के साथ 24 जून को वाराणसी में शादी करेंगे आकाशदीप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में NSPCL द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन 2026 संपन्न। 80 स्कूली ग्रामीण बेटियों ने सीखे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वासता के गुण। असम से सिंगापुर भेजी गई GI टैग वाली तेजपुर लीची की पहली खेप। CM हेमंत शर्मा ने कंटेनर को दिखाई हरी झंडी। दुनिया भर में फेमस है तेजपुर लीची की मिठास। सिंगापुर में भारतीय मूल की सिसिली और मीठी लीची की बिहारी मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनकल्याण शिविर में लिया हिस्सा। योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे मंजूरी पत्र। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले हर स्तर पर और हर तबके के लिए हुआ काम। वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा, डीआरडीओ 25 जून को स्वदेशी ओवॉक्स नेतृत्व को देगा फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस, दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना होगा आसान। लाखों नीट परीक्षार्थियों के लिए राहत वाली न्यूज, परीक्षा में मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय, 21 जून को दोबारा होगी परीक्षा। जामनगर में रिवाबा जडेजा ने बैडमिंटन में आजमाया हाथ, युवाओं को किसी न किसी खेल से जुड़ने और फिट रहने की अपील की। कर्नाटक के उडुपी पहुंचे तमिलनाडु के सीएम विजय, देवी मूकाम्बिका मंदिर में पूजा कर लिया आशीर्वाद। सीएम विजय ने देवी को भेंट की 1.5 किलो से ज्यादा वजनी वाली चांदी की तलवार, शक्ति साधना का दिया संदेश। भारत अफगानिस्तान के बीच आज होने वाले पहले वनडे के लिए धर्मशाला तैयार, प्रशासन ने धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर लगाई रोक। आज के मैच में रिकॉर्ड बना सकते हैं शुभमन गिल वनडे में दुनिया में सबसे तेज, 3000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने में सिर्फ 47 रन दूर। आज अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में उतरते ही रोहित शर्मा के नाम जुड़ेगा अनोखा रिकॉर्ड, भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे रोहित। आज से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा पहला मुकाबला, ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा किंगस्टन करेंगी परफॉर्म। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन सूयू को सिर्फ 31 मिनट में 21-6 21-9 से दी मात। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल बनाई गई, इस फुटबॉल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। फुटबॉल की ऊंचाई 47 फीट और वजन 2200 पाउंड है, ये 2013 में बने पुराने रिकॉर्ड से बड़ी है। बॉस्टन शहर के गर्व का पल, बॉस्टन के लोग इस रिकॉर्ड उपलब्धि से बेहद खुश। पहले सबसे बड़ी फुटबॉल का रिकॉर्ड दोहा के नाम था, वहां 39 फीट ऊंची फुटबॉल बनाई गई थी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के तहत बॉस्टन में 7 मैच खेले जाएंगे, पहला मैच स्कॉटलैंड और हेती के बीच 13 जून को होगा। जर्मनी के पहले वर्ल्ड कप मैच से पहले कोलोन चिड़ियाघर के हाथी तारक ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की, उसने जर्मनी वाली गेंद को चुना। चार 4.5 टन वजनी तारक ने गेंद को इतना दबाया कि वह धमाके के साथ फट गया, उसे जर्मनी के मजबूत जीत का संकेत माना जा रहा है। हाथी की देखभाल करने वाली इंग्रीड वॉलनर ने कहा कि तारक का फैसला बिल्कुल साफ था, उसके मुताबिक जर्मनी जीत के साथ शुरुआत कर सकता है। डॉर्टमुंड के औरंगुटान वॉल्टर ने भी मैच का नतीजा बताने की कोशिश की, हालांकि उसका चुनाव तारक जितना स्पष्ट नहीं रहा। अब सभी की नजर जर्मनी और कुराकाओ के मुकाबले पर, जर्मन फैंस जानवरों की भविष्यवाणी के सच होने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: क्या आपके घर के बेडरूम का रंग महत्वपूर्ण होता है? क्या

0: listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae.
5: Exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop.
7: Exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार

0: से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: भारतीय सैन्य अकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसर के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। देश को मिला 3,000 से ज्यादा अग्निवीरों का दाम, ओडिशा के खुर्धा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन पूजन। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मिला रिकॉर्ड दान, हुंडी से निकली 4,20,00,000 रुपए की धनराशि, बड़ी संख्या में मंदिर सेवकों ने मिलकर गिनी रकम। बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से दिलाई राहत, मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में 16 जून तक नहीं सताएगी गर्मी, मॉनसून के झारखंड पहुंचने का दावा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दोपहर 1:30 पर होगा शुरू।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे शिव शक्ति के उत्सव की। एक उत्सव भवानी का जिसका शुभारंभ कश्मीर में होने जा रहा है और दूसरा उत्सव महादेव का जिसका आयोजन हुआ है संगम नगरी प्रयाग में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है और एक उत्सव वो जिसने तपते ज्येष्ठ महीने में महादेव की आस्था का सावन संगम तट पर बरसा दिया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए कश्मीर के गांदरबल की, जहां कुछ ही दिनों में मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस खास मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। कभी अपने ही घर से पलायन को मजबूर हुए कश्मीरी पंडित खीर भवानी मेले को अब मिलन का मेला भी कहते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर है प्रयागराज की, जहां गंगा की पावन मिट्टी और तंदुल से 125,000 शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया गया। महादेव की महापूजा आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गांदरबल, जहाँ शक्ति उत्सव की तैयारियां चल रही है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। और अब माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेले की तमाम तैयारियों के बीच और सारे श्रद्धालुओं से पहले गुड न्यूज टुडे आज आपको लेकर आया है माँ खीर भवानी के धाम।
1: गांव में जो है माता खीर भवानी का मंदिर है, माँ खीर भवानी का धाम है। हम यहाँ पहुँचे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो मंदिर परिसर है उसके प्रवेश द्वार पर हम खड़े हैं। हम यहाँ मंदिर में जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे और आपको माता खीर भवानी के इतिहास से अवगत कराएंगे। यहाँ मंदिर में थोड़ी देर बाद आरती भी होने वाली है, हम आरती में भी शामिल होंगे। हम स्वयं भी यहाँ माता के दर्शनों के लिए आए हैं और साथ ही में हम आपको माता खीर भवानी के दर्शन करवाएंगे और माता खीर भवानी मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। ये जो मंदिर है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ खीर भवानी का महापर्व होता है, माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है और इस दिन हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ पहुँचते हैं तुलमुला गांव में, कश्मीरी घाटी के गांदरबल जिले में, ताकि वो माता खीर भवानी के दर्शन कर पाएं। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी 22 जून को है, उससे ठीक पहले यहाँ पर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है क्योंकि 22 जून को यहाँ पर महापर्व होगा, माता खीर भवानी का जो है प्रादुर्भाव दिवस है।
0: मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने नजर आता है प्रांगण में मौजूद षटकोणीय कुंड। खीर भवानी धाम आने वाले हर व्यक्ति की यात्रा इसी पवित्र कुंड से शुरू होती है। जब तक जीएनटी संवाददाता सुनील जी भट्ट मंदिर के भीतर पहुंचे, सुबह के 5 बज चुके थे, यानी मंदिर में माँ भवानी की मंगल आरती का शुभ मुहूर्त हो चुका था।
1: इस समय ब्रह्म मुहूर्त है और यहाँ माता खीर भवानी के मंदिर में शंखनाद हो चुका है और यहाँ सुबह की जो आरती है वो भी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हम आपको यहाँ पर जो पूजा हो रही है उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये है माता खीर भवानी का दिव्य भव्य मंदिर जो यहाँ कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुला गाँव में स्थित है। ये मंदिर जो है कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है जिसको समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय एक महापर्व के रूप में मनाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी 22 जून को है और उससे कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो यहां पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है।
0: आरती के बाद श्रद्धालु माँ खीर भवानी को अपने साथ प्रेम से लाई भेंट श्रद्धा से अर्पित करने लगे।
1: तो आपने देखा यहाँ माता खीर भवानी के मंदिर में आरती हुई और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु थे बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने माता की पूजा अर्चना की और अब यहाँ पर जो है आरती समाप्त हो चुकी है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी भेंटें अर्पित कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने दूध लाया है, कंद लाया है, पुष्प लाए हैं और वो माँ को अर्पित कर रहे हैं, माता खीर भवानी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर श्रद्धालु जो है अपनी भेंटें माता को अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आए और उन्होंने यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की। आप भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए माता खीर भवानी के। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ पर माता की जो प्रतिमा है वहाँ आपको तस्वीरें दिखाए और आप भी अपने घरों में गुड न्यूज टुडे के माध्यम से माता खीर भवानी के दर्शन कीजिए।
0: माँ खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है, ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की अपने घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
2: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई
1: है। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
2: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे हैं कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: हमारी मुलाकात कई ऐसे भक्तों से हुई जो बरसों बाद माँ के दर्शन कर रहे थे। माँ के दर पहुंचकर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो चार दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। बरसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का मौका मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सर झुकाने का अवसर मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: 90 में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
2: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहाँ हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा या?
2: बस
1: प्रार्थना,
2: वापसी हो जाए अच्छी तरह, अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। कहाँ से आप?
3: कश्मीर से हैं, बाल गार्डन श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर बालगढ़।
1: गर्व के साथ आप कह रहे हैं?
3: मैं सच कह रहा हूँ, इस मिट्टी से कुछ लगाव ऐसा है कि खाते पीते उठते सोते वक्त भी याद करते रहते हैं। और माता खास तौर पर इनका सचत नमन, ये तो हमारे दिलों में बसी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, रैली रोने को जी करता है कि ये हमसे क्यों बिछड़ गई, क्यों ऐसे हमारे साथ किया गया।
4: माय नेम इज गिरधर लाल कोल। मैं गिरधर लाल को प्रार्थना मही माता से की कि कहीं किसी तरीके से हमें अपने वापस भूमि पर पहुंचा दे, ताकि हम अपने रूट से जट जाए।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह हजारों कश्मीरी पंडितों का यहां मिलन होता है। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते ये श्रद्धालु माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। आपको बता दें, माँ खीर भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गैर हिंदू भक्त भी पहुँचते हैं। हर साल मेले के दौरान स्थानीय लोग भक्तों की सुविधा के इंतजामों में प्रशासन की मदद करते हैं। अब की बार 22 जून को लगने वाले मेले के लिए मंदिर में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मेले के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने की उम्मीद की जा रही है। मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही LG मनोज सिन्हा ने मेले से पहले तुलमुल में नए यात्री निवास भवन का उद्घाटन किया। अब इंतजार है तो 22 जून का, जब देश दुनिया के भक्त माँ खीर भवानी के धाम में पहुँच इस खास दिन उनके दर्शन कर सकेंगे। गांदरबल में माँ खीर भवानी धाम से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खीर भवानी मंदिर की कहानी का एक सिरा सीधे जुड़ता है रामायण काल के साथ। मान्यता है कि देवी रागन्या का निवास कभी श्रीलंका में था, लेकिन रावण से रुष्ट होकर वो भारत लौटी थी और बजरंग बली देवी रागन्या को कश्मीर लेकर आए थे। आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी और बजरंग बली के साथ लौटी देवी रागन्या आखिर कश्मीर आकर ही क्यों बस गई।

0: हमेशा से गांदरबल का माखीर भवानी मंदिर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ देवी को खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि खीर के भोग से माँ अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में यही खीर दी जाती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में मौजूद ये मंदिर देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गई थी, लेकिन कभी जिस रावण की आराधना से प्रसन्न होकर माँ खीर भवानी ने अपना देश छोड़ा था, आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर उन्होंने दोबारा अपने देश में वापस आने का निर्णय किया था। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंग बली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है, और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया, उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफी दुखी हुई, और रावण की जो आसुरी कृत्य है उससे माता जो है काफी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय, जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी, और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूं। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहां कश्मीर घाटी लाए थे।
0: माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आए, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में रहना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने भौगोलिक स्थिति देखकर तुलमुला गांव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: तुलमुल गांव है ये, और अगर हम तुलमुल शब्द का जो है अर्थ जाने तो इसका मतलब है मार्शी लैंड, जो रुई जैसी नरम भूमि हो उसी को कहते हैं तुलमुल्य, और उसी से इस गांव का नाम भी है तुलमुल। तो माता को लगा कि ये उपयुक्त भूमि है उनके लिए और साथ ही में उनके 360 नागों के लिए, और माता ने फिर यहीं पर अपना निवास स्थान बनाया, अपना वास बनाया। और जिस दिन माता ने यहां पर अपना वास दोबारा स्थापित किया उसी दिन को समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय महापर्व के रूप में मनाता है, माँ खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाता है, और ये दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को।
0: कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद श्री राम हर साल यहाँ माँ रागन्या के दर्शन करने आते थे। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मुख्य मंदिर के अलावा माँ खीर भवानी के कई और भी मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब माँ को लेकर वापस कश्मीर आए थे और माँ अपने लिए उपयुक्त निवास स्थान खोज रही थी, उस समय वे रास्ते में जहाँ भी रुकी वहाँ माँ का मंदिर बना दिया गया।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं, जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी। लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है, चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी देवसर में है, मंजगाम में है, लखडीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहां पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना वो ये है, तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: बताया जाता है कि तुलमुला में मौजूद मुख्य मंदिर का निर्माण डोगरा वंश के राजाओं ने करवाया था। डोगरा वंश के महाराजा प्रताप सिंह ने मंदिर बनवाया और बाद में राजा हरि सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कालांतर में माँ खीर भवानी के इस धाम से जुड़ी कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हुई। मसलन मंदिर में मौजूद षटकोणीय कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये कश्मीर की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। यहाँ के मूल निवासी इस कुंड को देवी का प्रतीक मानते हैं और इसी कुंड के बीचों बीच माँ की स्थापना की गई है। मान्यता है कि माता को अपना ये कुंड बेहद प्रिय है और उन्हीं के प्रताप से इस कुंड के जल का रंग बदलता रहता है। इसके चलते माँ खीर भवानी के साथ साथ इस कुंड की भी पूजा अर्चना की जाने लगी। इस दौरान यहाँ कुंड में फूल अक्षत के साथ साथ दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है।
1: गुड न्यूज टुडे के माध्यम से जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो माता खीर भवानी के दर्शन कर सकते हैं। इस पवित्र जलकुंड का जो रंग है हल्का हरा रंग है इस बार, और शुभ संकेत माना जा सकता है। 1990 के कालखंड में जब आतंकवाद कश्मीर घाटी में चरम पर था, तब माना जाता है कि इस पवित्र जलकुंड का रंग जो है काला हो गया था, क्योंकि इस जलकुंड के रंग का जो रंग जो है वो आने वाले समय का कुछ संकेत देता है। तो जब इसका रंग काला हो गया तो उसका अर्थ था कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है। और हुआ क्या, कश्मीर घाटी से समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय को पलायन करना पड़ा।
0: सदियों तक कश्मीरी पंडित गांदरबल में अपनी इष्ट देवी के इस पावन धाम से जुड़े रहे, लेकिन 90 के दशक में धधकी आतंक की आग ने उन्हें अपने घर के साथ अपनी आस्था से जुड़े इस पावन तीर्थ को भी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कश्मीरी पंडित देश भर में जहाँ जहाँ गए, उन्होंने माँ खीर भवानी के प्रति न केवल अपनी आस्था को जिंदा रखा, बल्कि माँ खीर भवानी के एक नहीं बल्कि अनेक मंदिर तैयार करवाए। हर साल माँ खीर भवानी के प्राकट्य उत्सव को गांदरबल के मुख्य मंदिर में तो मेला लगता ही है, लेकिन देश भर में मौजूद माँ खीर भवानी के दूसरे मंदिरों में भी कश्मीरी पंडितों के इस महापर्व को बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गांदरबल में माँ खीर भवानी धाम से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो माँ भवानी के बाद बात महादेव की। प्रयागराज में सवा लाख तंदुल शिवलिंग महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने गंगा की पवित्र मिट्टी और तंदुल यानी चावल से शिवलिंग बनाकर श्रद्धापूर्वक रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है, अक्षत यानी जो कभी खंडित ना हो। इसी तरह चावल यानी तंदुल को पूर्णता का प्रतीक मानते हैं। शिव पुराण के अनुसार तंदुल से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से साधक को अमोघ फल, अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसे शिवलिंग के रूप में स्थापित करने से घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। चावल को माता अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। जब तंदुल से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। प्रयागराज में ऐसे 125,000 तंदुल शिवलिंग बनाकर पूजा की गई। बताया गया कि इस महायज्ञ को मानव कल्याण और सनातन संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज उठा। और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए कहानी उलझते सुलझते रिश्तों की। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: भारतीय सैन्य अकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसर के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। देश को मिला 3000 से ज्यादा अग्निवीरों का दाम, ओडिशा के खुर्दा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन पूजन। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में मिला रिकॉर्ड दान, हुंडी से निकली 4,20,00,000 रुपए की धनराशि, बड़ी संख्या में मंदिर सेवकों ने मिलकर गिनी रकम। बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से दिलाई राहत, मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में 16 जून तक नहीं सताएगी गर्मी, मॉनसून के झारखंड पहुंचने का दावा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दोपहर 1:30 पर होगा शुरू।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके घर के बेडरूम यानी शयन कक्ष के बारे में और जानेंगे कि आपके घर का बेडरूम कैसा होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जून 2026, दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 4:07 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:25 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके शयन कक्ष के बारे में यानी आपके बेडरूम के बारे में। शयन कक्ष यानी बेडरूम किसी घर के लिए कितना जरूरी है पहले ये समझते हैं। देखिए, मानसिक और शारीरिक आराम के लिए घर में बेडरूम होता है या घर में बेडरूम बनाया जाता है। शयन कक्ष का या आपके बेडरूम का संबंध होता है शुक्र ग्रह के साथ। कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव आपके बेडरूम से, आपके शयन कक्ष से संबंध रखता है। अगर आपका बेडरूम अच्छा हो, ठीक तरीके से आप रखते हो उसको, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याओं का निवारण जल्दी होता है। मानसिक चिंताएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं और बेडरूम को ठीक से रखने पर, शयन कक्ष को ठीक से रखने पर घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में खास तौर से पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहता है। मेष राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, करियर की समस्या हल होगी, पारिवारिक समस्या भी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अपने महत्वपूर्ण काम 1-2 के लिए टाल दें।
शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपकी बेडरूम का रंग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बेडरूम में जाते हैं चैन से सोने के लिए, चैन से रहने के लिए। तो बेडरूम में आपको चैन मिले, आनंद मिले, इसके लिए शयन कक्ष के रंग में और स्थान में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से शयन कक्ष नैऋत्य कोण में, यानी दक्षिण पश्चिम के साउथ वेस्ट के कोने में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम दिशा का अगर आपके बेडरूम में आए तो अच्छा होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिएगा कि आपके फ्लैट में, आपके कमरे में सूर्य का प्रकाश बेडरूम में आना चाहिए। शयन कक्ष की जगह फिक्स होनी चाहिए और उसे बार बार मत बदलिए। आज इस कमरे में सो रहे हैं, कल उस कमरे में सो रहे हैं, बार बार जगह बदलना उचित नहीं होगा। अपने बेडरूम का रंग हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखिएगा। बेडरूम में काला रंग, लाल रंग, भूरा रंग और गाढ़े रंगों का प्रयोग मत करिएगा। और बेडरूम में हल्के कलर तो रहने ही चाहिए, बेडरूम में लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बेडरूम में अंधकार ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें, शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
देखिए शयन कक्ष में लोग जाने क्या क्या रखते हैं, क्यों रखते हैं, भगवान ही जाने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आप अपने बेडरूम में रखते हैं जिससे दिक्कत होती है, परिवार में तनाव पैदा होता है, आप चैन से सो नहीं पाते, आपके मन को शांति का अनुभव नहीं होता। तो बेडरूम में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीजें आप रखते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखें। देखिए शयन कक्ष में बहुत ज्यादा भारी पलंग मत रखिए। बहुत ज्यादा लोग आजकल डिजाइनर पलंग, नक्काशी वाले बड़े भारी भारी पलंग रखते हैं, वो ना रखें। हल्का और उपयोगी पलंग रखना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अपने बेडरूम में पलंग इस तरीके से रखें कि उसका सिरहाना दक्षिण की तरफ हो या पूरब की तरफ हो। पलंग के दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल रख सकते हैं। और अपने सिरहाने बहुत सारी चीजें मत रखिए, खास तौर से अपने सिरहाने पर या सर के पास जो साइड टेबल है उस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें। अपने शयन कक्ष में पानी और फूलों के चित्र आप लगा सकते हैं। सबसे बेहतर होगा अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र या अपने परिवार के लोगों का चित्र लगाएं तो अच्छा रहेगा। जिन पति पत्नी को संतान की कामना है वो अपने बेडरूम में सफेद गाय और सफेद बछड़े का चित्र या सफेद गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं। ऐसा करने से संतान उत्पत्ति में सहायता होती है। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब आपके घर का बेडरूम आपके चैन सुकून का स्थान है, आपके मैरिटल लाइफ का स्थान है और आपके जीवन में शांति लाने की जगह है। किन बातों का ध्यान आपको अपने बेडरूम में रखना चाहिए? शयन कक्ष में गंदगी मत रखिए। शयन कक्ष में रोज अच्छी तरह साफ सफाई, डस्टिंग होनी चाहिए। शयन कक्ष में जो भी टेबल है, पलंग है, अच्छी तरह से रोज साफ सफाई होनी चाहिए। अपने बेडरूम में देवी देवताओं
और पूर्वजों के चित्र ना लगाएं और अपने बेडरूम में अस्त्र शस्त्र पिस्तौल चाकू लाठी डंडा ये सब ना रखें। अगर आपके बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें, बाथरूम का दरवाजा खुला ना रहे। शयन कक्ष में हल्की सुगंध और उत्तम प्रकाश की व्यवस्था रखनी चाहिए। देखिए, दो जगह घर की बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आपकी रसोई और एक आपका बेडरूम। तो अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें और अपने बिस्तर पर हर व्यक्ति को लेटने या सोने ना दें। अपने बिस्तर का प्रयोग हर व्यक्ति को ना करने दें और हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में प्रवेश भी ना करने दें। बेडरूम और किचन बहुत पर्सनल जगह है, वहां पर हर व्यक्ति का प्रवेश करना उचित नहीं होगा। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके पास एक ही बेडरूम हो, अब आपको पूजा भी करनी है, शयन भी करना है, उसी बेडरूम में रहना भी है, तो ऐसी स्थिति में आप घबराइए नहीं। देखिए, या तो बेडरूम की किसी अलमारी को इस तरह पूजा का स्थान बना दीजिए और वहां पर सुबह शाम पूजा करिए। रात में जब सोने जाते हैं या दोपहर के समय जब होता है, तो दोनों समय, दोपहर के समय भी और रात में अपने सोने के पहले, मंदिर में ऐसी व्यवस्था करिए कि एक पर्दे जैसा लगा दीजिए और दोपहर में भी पर्दा खींच दीजिए और रात में सोने के पहले भी पर्दा खींच दीजिए। उसके बाद आप अपने शयन कक्ष में आराम कर सकते हैं। अब जो आप पूजा स्थान मान लिया, बेडरूम में छोटा सा मंदिर रखे, उसके ऊपर पर्दा भी लगा दिए, दोपहर में बंद भी कर देते हैं, रात में भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा करके आप चला सकते हैं जीवन, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने बेडरूम में मंदिर रखा है, तो देखिए, आपको देवी देवताओं के उग्र स्वरूप का चित्र या उग्र स्वरूप की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लिया कि आपने बेडरूम में मंदिर बना लिया है, आपकी मजबूरी है, तो उस मंदिर में माँ काली का स्वरूप, भगवान नृसिंह का स्वरूप, भगवान भैरव का स्वरूप, ये जो देवी देवता के उग्र स्वरूप हैं, इनका चित्र या इनकी मूर्ति आपको नहीं रखनी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मान लिया आपने बेडरूम में, अपने पूजा घर में शाम के समय दीपक जला दिया, आपने पूजा कर ली, तो जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बेडरूम में सोइए नहीं। दीपक शांत हो जाए, देवी देवता को नमस्कार कर लीजिए, बेडरूम का पर्दा, अपने पूजा घर का पर्दा खींच दीजिए, उसके बाद आप विश्राम और शयन कर सकते हैं। देखिए, आप जिस कलम का लिखने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं, उस अपनी कलम को हमेशा संभाल कर रखिए। अगर आपकी कलम बार बार खोती रहेगी या बार बार कलम गिराते रहेंगे, तो धन की बचत कर पाना बहुत कठिन होगा। आप पुरुष हों या स्त्री हों, ससुराल के रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या करें? रोज शाम के समय पूजा जरूर करें और पूजा में एक बार माता दुर्गा के 32 नाम पढ़िएगा और अपने पूजा के स्थान पर एक चांदी की कटोरी या चांदी के गिलास में हमेशा जल भर करके रखिएगा। नियमित रूप से इस जल को बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें, आप पुरुष हों या
स्त्री हों, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु

0: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैला विदेहं धनुजुवन कृशानुजानि नामाग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम महामहनमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम संन्यासिदेवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय कपिशूर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर चन को दाम मोह से।

कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पंचनाथ महादेव की, राजकोट के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संत समाज की, आज के दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते।

रेस कोर्स ग्राउंड के समूचे क्षेत्र में चारों तरफ आज जहां भी जहां नजर जा रही है ऐसा लग रहा जैसे हिंदू राष्ट्र का महाकुंभ लग गया हो। कहीं भगवान ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा, कहीं तिरंगा लहराता दिखाई पड़ रहा, कहीं हनुमान जी का ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा, चारों तरफ केवल सनातनी ही सनातनी दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे मैदान में राजकोट के पागलों, राजकोट में अब भगवान राज्य आता दिखाई पड़ रहा है। आज के तीसरे दिवस पर आज केवल दिव्य दरबार का आयोजन है। चूंकि कथा तो तीन दिन की थी लेकिन दो दिन की कथा हमने जानबूझकर की कि तीसरे दिन दिव्य दरबार दो ढाई घंटे तक देर तक लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लगे। ये तो छोड़ो, अगली बार राजकोट आएंगे तो दो दिन दरबार लगाएंगे। हाँ, एक की तो छोड़ो, दो दिन दरबार लगाएंगे। हनुमान जी की भक्ति कराना करना, हनुमान चालीसा का प्रचार करना कराना, हनुमान जी से जोड़ना जुड़वाना कोई अंधविश्वास नहीं है। किसी ने कहा कि बाबा की कथा में, बाबा के दरबार में अंधविश्वास फैलाया जाता, बाबा को भगाया जाए, बाबा का दरबार ना किया जाए, वहां कोई ना जाए। अरे भाई, अंधविश्वास फैलाना होता तो हम राजकोट थोड़ी आते। भैया, यहां अंधविश्वास नहीं, हनुमान जी का विश्वास फैलाया जाता है। ये प्राचीन पद्धति है। हमारे यहां काल गणना है, हमारे यहां वैदिक ज्योतिष गणना है, हमारे यहां अंक गणना है, हमारे यहां पर अंक के आधार पर जीवन की विधा प्रथा बताई जाती, महत्वता बताई जाती। वैसे ही हमारे दादा गुरु ने सवा दादा गुरु के गुरु ने 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की ऐसी कृपा और सिद्धि मिली कि पीढ़ी दर पीढ़ी तीन पीढ़ियों से बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लग रहा है और आज तक उस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। भारत तो भारत, हमने लगभग 7 देशों में जाकर के बालाजी की अनुकंपा से दिव्य दरबार लगाया। आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, देखकर भरोसा करना, आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आप किस विषय को पूछने आए हैं। अब ये क्या है हमें पता नहीं, हमारे पास कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो है। अब वो तुम पता करो ठटरी के बरी कि वो क्या है, वो हमको पता नहीं है। हम तो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेकर लिख देते हैं, हनुमान दादा उसको सही कर देते हैं, ये हनुमान दादा की कृपा है। हम भविष्य नहीं बताते, हम भविष्य बताने पर भरोसा नहीं करते, हम भविष्य बनाने पर भरोसा करते हैं।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
7: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
14: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
15: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
16: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
14: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
18: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
19: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
14: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
20: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
14: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
21: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
14: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
22: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आ जाए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
22: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
14: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
20: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
14: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
14: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
0: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
18: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
1: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
3: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
14: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
4: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
14: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
24: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
14: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
21: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
16: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
14: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
7: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
14: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
15: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
14: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
14: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
20: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
14: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
12: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
10: आज के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: होने जा रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन, कौन सी राशि के जीवन में होगा कमाल, किसका होगा हाल बेहाल और कौन सी राशि के लोग होंगे माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
22: भारतीय सैन्य अकादमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसरों के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी दी। देश को मिला 3,000 से ज्यादा अग्निवीरों का दम, उड़ीसा के खोरदा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदम ताल से गूंजा इलाका। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर भव्य महाकाल का भव्य श्रृंगार विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्तों के दर्शन पूजन। बारिश ने दिल्ली के लोगों को गर्मी से दिलाई राहत, मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में 16 जून तक नहीं सताएगी गर्मी, मॉनसून के झारखंड पहुंचने का दावा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा, मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। बोस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल एकेडमी, बनाया गया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 47 फीट इसकी ऊंचाई है।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ धाम की। हिमालय की गोद में बसा है अमरनाथ धाम, भगवान शिव के सबसे पावन और रहस्यमय स्थलों में से एक माना जाता है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम है। अमरनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां स्वयं प्रकृति द्वारा बनने वाला हिम शिवलिंग, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के नाम से पूजते हैं, वो बसा हुआ है।
1: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिमालय की बर्फीली चोटियां, बादलों से बातें करती पर्वत श्रृंखलाएं और समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई, यही है एक ऐसा धाम जहां हर साल प्रकृति स्वयं महादेव का स्वरूप रचती है। यह है बाबा बर्फानी का दिव्य अमरनाथ धाम, एक ऐसी पवित्र गुफा जहां बर्फ से स्वयंभू हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। एक ऐसा तीर्थ जहां पहुंचकर भक्तों को लगता है मानो साक्षात महादेव विराजमान हों। ये पवित्र गुफा करीब 150 फीट ऊंची और विशाल प्राकृतिक संरचना वाली है। हजारों साल से ये स्थान साधकों, संतों और शिव भक्तों की तपस्थली रहा है।

0: अमरनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला दिव्य हिम शिवलिंग। हर साल प्राकृतिक रूप से गुफा के भीतर बर्फ की बूंदों के जमने से हिमलिंग का निर्माण होता है। श्रद्धालु इसे महादेव का साक्षात स्वरूप मानते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ हिमलिंग के आकार में परिवर्तन होना भी भक्तों के लिए अद्भुत आस्था का विषय है। अमरनाथ गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था।
1: भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए महागूढ़ पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो पंचतरणी नामक स्थान पर उन्होंने अपने पांचों तत्वों को छोड़ दिया, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश को, और इनको छोड़ करके माता पार्वती के साथ अमर कथा सुनाने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए। यह स्थान पांच नदियों का संगम है, पांच सरिताओं का संगम है। यह संदेश है, प्रभु ने यह संदेश दिया कि जब तक हम पांचों तत्वों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा मिलन प्रभु से नहीं हो सकता, तब तक हम अपने जीवन की अपनी आत्मा के अमरत्व को नहीं जान सकते।
0: मान्यता है कि भगवान शिव को ये धाम इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यही उन्होंने माता पार्वती को सृष्टि जीवन मृत्यु और अमृतत्व का रहस्य सुनाया था, तभी से यह स्थान मोक्ष मुक्ति और शिव कृपा का सर्वोच्च केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती के साथ ही अमृतत्व के रहस्य को एक तोते और दो कबूतरों ने भी सुन लिया था। इसी के बाद शुक यानी तोता बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गया, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है।
1: जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो उस दौरान उस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी कथा का श्रवण कर रहा था। कथा के श्रवण करने के कारण दोनों कबूतर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज भी कबूतर का यह जोड़ा उस अमरनाथ गुफा में निवास करता है, रहता है। और यह भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कबूतर के जोड़े के रूप में उस गुफा में आज भी निवास करते हैं और अपना आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करते हैं।
0: बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियाँ अनंत हैं। कहा जाता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ खुद अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक यानी कुल 57 दिनों तक चलेगी। प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों समेत कई एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही हैं। पंजीकरण, सुरक्षा प्रबंधन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं और मार्गों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय पवित्र गुफा क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बर्फ हटाने, ट्रैक की मरम्मत, संचार सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काम जारी है ताकि यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाए।
2: इस समय हम मौजूद हैं यात्री निवास भवन के बाहर, जो कि जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित है। अगर हम यात्री निवास भवन की बात करें तो लगातार यहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, और यहां पर कुछ अगर मरम्मत करने की आवश्यकता है कहीं तो वो कार्य भी लगातार चल रहा है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, देखिए ये यहां पर यात्री निवास भवन है, और यात्री निवास भवन के ठीक स्थान पर जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है, और यही से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा।
0: अमरनाथ यात्रा केवल भगवान शिव के आराधना का मार्ग नहीं बल्कि माँ पार्वती की श्रद्धा का पीठ भी है। अमरनाथ गुफा में मौजूद पार्वती पीठ को 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। माना जाता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भागीरा था। पुराणों में कहा गया है कि बाबा बर्फानी दर्शन के लिए सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। कहते हैं जिसने बाबा बर्फानी के एक बार दर्शन कर लिए उसे काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग में दर्शन से 100 गुना और निमिषारण्य में पूजा अर्चना से 1000 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए बाबा बर्फानी की महिमा अपरंपार है।

0: अमरनाथ धाम केवल हिमलिंग के दर्शन का स्थान भर नहीं है, ये उस सत्य का प्रतीक है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ये उस दिव्य ज्ञान का केंद्र है जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, जहाँ पहुँचना आसान नहीं है लेकिन जो पहुँच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
1: और अब बात करते हैं श्री केदारनाथ धाम की। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हैं भगवान केदारनाथ। यहाँ आस्था युगों पुरानी है और भगवान शिव का मंदिर सदियों पुराना। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वो भूमि है जहाँ पर कण कण में भगवान शंकर का वास होता है। ये वो धाम है जहाँ आकर भक्तों को असीम शांति और परम आनंद मिलता है। कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

0: उत्तराखंड में हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों को चीरती हुई गूंजती है आस्था की आवाज, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। यही है महादेव का सबसे प्रिय धाम केदारनाथ। बादलों की गोद में बसा भगवान शिव का ये वो धाम है जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ आस्था के आगे हर चुनौती बौनी साबित होती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये वो भूमि है जहाँ प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम होता है, जहाँ पहुंचकर हर श्रद्धालु अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना और एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है।
1: उम्मीद नहीं थी इतने बढ़िया दर्शन होंगे, पर कोई चमत्कार हुआ, एकदम से चले गए अंदर और दो बार जल चढ़ा के आए।
2: अरे वाह!
1: एक बार नहीं, दो बार।
3: जय श्री केदारनाथ।
4: एकदम अद्भुत, फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे, लेकिन ऐसा पहले जब निकले हम गौरीकुंड से तो ऐसा लग रहा था कहाँ जा रहे हम, बहुत थकान महसूस ये वो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थकान ये वो सब मतलब ऐसा न्यूट्रल हो गया आदमी, और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि एकदम स्वर्ग में आ गए हम। जय श्री केदार।
0: कहते हैं कि भगवान शिव को हिमालय अत्यंत प्रिय है, इसलिए हिमालय की इस पवित्र जगह केदारनाथ को उन्होंने अपना निवास बनाया। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे तो शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे बैल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चले गए, लेकिन पांडवों ने उनका पीछा किया। तब महादेव ने पांडवों को बैल के कुबड़ के रूप में दर्शन दिए। यही वजह है कि केदारनाथ में शिवलिंग सामान्य गोलाकार स्वरूप में नहीं, बल्कि बैल के कुबड़ जैसी त्रिकोणीय आकृति में है।
5: बाबा केदार जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बाबा केदार जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे ऊंचाई, यानी कि जितने भी बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। आपको हम बता दें यहाँ पर स्कंद पुराण का भी वर्णन है और कई ऐसे हमारे वेद हैं और शास्त्र हैं जिसमें कई कथाएं इस जगह को लेकर जो है वो वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है केदारनाथ शिवलिंग सबसे फलदायी है।
0: केदारनाथ धाम के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। शिव पुराण के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने कराया था, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये धाम सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, सामने मंदाकिनी का पावन प्रवाह और बीच में पत्थरों से निर्मित ये भव्य मंदिर, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव हिमालय के सिंहासन पर विराजमान हो।
1: ये 11वां ज्योतिर्लिंग है अपने केदार बाबा का, तो इसलिए ये 11वां ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसका महत्व है। यहाँ आने से हर सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बाबा का साक्षात चमत्कार है, और लोगों ने देखा भी है, 2013 में भी देखा, साक्षात चमत्कार है बाबा का। ओम भूर भूर सव तस्वितु वरेणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योम नम पचोदया। त्रिगाम्बम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी वंदना मृत्यु मोक्षर्ममतम।
0: केदारनाथ धाम की विशेषता है इसकी अनूठी परंपरा। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से मंदिर का कपाट सर्दियों में बंद कर दिया जाता है। हर साल अप्रैल या मई के महीने में कपाट खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने का मतलब ये नहीं कि केदारनाथ धाम में पूजा रुक जाती है। मान्यता है कि 6 माह तक मनुष्य बाबा केदार की पूजा करते हैं और शीतकाल में देवता स्वयं उनकी आराधना करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो बाबा की उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचती है। जहां पूरे शीतकाल में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर जब गर्मियों में कपाट खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं।
5: ये धाम युगों युगों से लोग यहाँ कर्म फल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं स्वयं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है।
0: जो भी भक्त केदारनाथ पहुंचता है वो केवल दर्शन करके नहीं लौटता, वो अपने साथ एक विशेष अनुभूति लेकर लौटता है। श्रद्धालु बताते हैं कि धाम में पहुंचते ही उन्हें एक अद्भुत शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्ति का एहसास होता है, मानो महादेव स्वयं उनके मन के सारे बोझ हर लेते हों।
5: यहाँ आप जैसे ही पहुंचते हैं एक ऐसी अनुभूति होती है, आपको लगता है कि ऐसे लोक में आप आ गए हैं जहां पर परम ब्रह्म जो है उनका एहसास होता है।
0: 11,000 फीट की ऊंचाई, हाड़ कपा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ियों का रास्ता, लेकिन जब महादेव का बुलावा

जीवंत राजधानी है। तड़के होने वाली भस्म आरती की भस्म से लेकर महाकाल लोक के आधुनिक वैभव तक ये दरबार गवाह है कि जो समय के साथ ढल जाए वो संसार है और जो समय को भी अपने वश में कर ले वही महाकाल है। आज यही आस्था उज्जैन की प्रगति और समृद्धि का नया आधार बन चुकी है।

0: सनातन संस्कृति में भगवान शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में बाबा भोलेनाथ जिस रूप में विराजते हैं वो अद्वितीय है, अलौकिक है। भगवान शिव का ये रूप है राजाधिराज महाकालेश्वर का। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि में जब सब कुछ थमता है तब भी महाकाल का अस्तित्व रहता है। वे समय के नियंता हैं, मृत्यु के विजेता हैं और भक्तों के संकट हरता है। भारत का दिल मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन, यहाँ भक्तों के मन में पूजा के स्वर में हर सड़क हर गली हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है शिव के प्रति अगाध आस्था। इतिहास गवाह है, समय बदला शासन बदले, लेकिन उज्जैन में अगर कुछ अडिग है तो वो है अवंतिका नगरी के राजा महाकाल का दरबार। ये मंदिर केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि हजारों सालों की संस्कृति का भी साक्षी है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव स्वयंभू हैं और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। यही विशेषता महाकालेश्वर को बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देती है।
1: दक्षिण की दिशा समृद्धि की दिशा है, दक्षिण की दिशा काल की दिशा है और काल अर्थात महाकाल यहाँ समय, यह एक तरह से यह समय का निर्धारण यहाँ से किया जाता है और दक्षिण की दिशा होने के कारण पूर्व में बाबा महाकाल की जलाधारी गई है। दक्षिण की समृद्धि की दिशा काल की दिशा कहलाती है, इसलिए इसे महाकाल कहा जाता है।
0: जहाँ भस्म से श्रृंगार होता है वही मृत्युंजय का दरबार होता है। महाकाल मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है इसकी विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। हर दिन तड़के होने वाली इस आरती में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु शामिल होते हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने उनके दरबार में हाजिरी लगाती हैं।
2: हम करीबन 5-10 साल से आ रहे हैं पैदल महाकाल दर्शन करने के। बहुत प्यारा रूप है उनका, उनके दर्शन होते ही हमारी सब थकान उतार जाती है। धूप में बारिश में सब में हम पैदल चल के आते, सब बाबा की कृपा है। बोलिए महाकाल महाराज की जय।
0: महाकाल मंदिर में हर दिन अलग अलग स्वरूप में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। हर श्रृंगार का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है।
1: देखिए ये अनेक प्रकार के श्रृंगार होते हैं, इस श्रृंगार की कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। जब पुजारी श्रृंगार करने के लिए चालू करता है तो उसके मन में जो भगवान भाव दे देता है वही भाव श्रृंगार के अंदर आ जाते हैं। कभी राजा के रूप में आ जाते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं, कभी योगी के रूप में आ जाते हैं, कभी भगवान शिव के साथ में माता पार्वती विराजमान हो जाती है। ये उस समय जो भावना आती है चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में जो भावना आ जाती है, जैसा प्रारंभ में प्रातः पहला हाथ बाबा पे घूम जाता है बस उसी पे बाबा का श्रृंगार चालू हो जाता है। पहले से किसी प्रकार का इसमें यह नहीं रहता है कि आज हम जाकर यह बनाएंगे या यह स्वरूप होगा बाबा का कि वह स्वरूप होगा।
0: महाकाल मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उज्जैन की अर्थव्यवस्था की धुरी भी बन चुका है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इन अवसरों पर लाखों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, जिससे मंदिर के आसपास फूलमाला प्रसाद होटल रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। वैसे तो महाकाल की नगरी में हर दिन उत्सव का दिन है, लेकिन सबसे खास मौका होता है जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। राजा के स्वरूप में महाकाल प्रजा को दर्शन देते हैं। इस पावन मौके पर सड़कों पर उत्सव का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन

0: में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिली है। ये देश के सबसे बड़े और अलौकिक आध्यात्मिक गलियारों में से एक है। यही वजह है कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर शहर में कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। काल के थपेड़ों को मात देकर आज भी अपनी भव्यता से दुनिया को चमका रहे हैं महाकाल। सिर्फ एक दरबार नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसलिए कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त है महाकाल का। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब आपको लिए चलते हैं भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी, जो सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि अपनी सदियों पुरानी आध्यात्मिक आत्मा के साथ एक नए वैभव को जी रही है। गंगा की लहरों से लेकर बाबा के गर्भगृह तक फैला काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर इस बात का गवाह है कि जब आस्था को आधुनिकता का साथ मिलता है तो प्रगति के बंद द्वार भी खुल जाते हैं।

0: जहाँ जीवन का अंत नहीं अनंत की शुरुआत होती है, जहाँ काल भी महाकाल के आगे शीश झुकाता है, वही है मोक्ष की नगरी काशी। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर और भक्तों के दिलों में डमरू और मंत्रोच्चार की मंगल ध्वनि गूंजती है। काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजमान ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती से विवाह के बाद जब भगवान शिव ने अपने रहने के लिए ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान की खोज की, तब उन्होंने काशी को चुना। एक ऐसी नगरी जो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है काशी। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय के समय जब समस्त संसार नष्ट हो जाता है तब भी काशी का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। महादेव के त्रिशूल पर टिकी वो नगरी है जिसका कायाकल्प अब काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है।
1: पिछले 13 साल से पहले बाद हम आ रहे हैं।
2: उस समय
1: बहुत फर्क है। बहुत अंदर का जो आर्किटेक्चर है, जो अभी नया लुक है, इतना बढ़िया एप्रिसिएबल
2: और
1: फैसिलिटीज बढ़िया है। पानी का सुविधा है
2: और
1: हाँ शेड है, मैट भी है।
0: अब काशी सिर्फ सावन या महाशिवरात्रि पर नहीं जाती, यहाँ हर दिन एक उत्सव है। आंकड़े गवाह हैं कि धाम के बनने के बाद हर साल भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। वीकेंड्स हो या त्योहार, लाखों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए खींची चली आ रही है।
3: यहाँ भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो काशी में काफ़ी मात्रा में, मतलब दुगुना क्या बोले उसको, चौगुने मात्रा में यहाँ यात्री आए दिन आते हैं। रोज प्रतिदिन आने का मतलब, जैसे जिस पूर्व में जैसे 1000 यात्री, अगर 1,00,000 यात्री आते थे, तो इस समय रोज रेगुलर कम से कम 5 से 6 लाख यात्री रोज काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नौका विहार भी कर रहे हैं।
0: विश्वनाथ धाम में जब आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है तो वो अपने साथ समृद्धि भी लाता है। भक्तों के इस रेले ने काशी के व्यापार को नए पंख दे दिए हैं। चाहे वो बनारसी साड़ी का करघा हो, मल्लाहों की नावें हो, होटल इंडस्ट्री हो या फिर पूजा पाठ से जुड़े छोटे दुकानदार, काशी का आर्थिक ढांचा आज बाबा की कृपा से चमक रहा है। आस्था का ये नया कॉरिडोर रोजगार का भी सबसे बड़ा जरिया बन चुका है।
4: मंदिर कॉरिडोर बनने से यहाँ के दुकानदारों को बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और ये गवर्नमेंट और प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इतने गर्मी में रहने के बावजूद सारे श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मतलब कूलर लगाए गए, मैट लगाए गए ताकि कोई भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
0: अक्सर आधुनिकता के पीछे अध्यात्म कहीं छिप जाता है, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम ने पूरी दुनिया के सामने तकनीक और आध्यात्मिक संतुलन का एक बेजोड़ उदाहरण पेश किया है। जो मंदिर कभी तंग गलियों से घिरा था, वो अब गंगा की लहरों से सीधे गर्भगृह तक एक भव्य कॉरिडोर के रूप में जुड़ा है। अब भक्त गंगा में स्नान कर सीधे जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करने बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी क्षेत्र को आनंद कानन यानी आनंद का वन कहा जाता है और बाबा विश्वनाथ इसके केंद्र हैं। ये शिव और शक्ति का आदि स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा का बखान शिव पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि श्रद्धालु अगर हर दिन सुबह उठकर केवल बाबा विश्वनाथ के नाम का स्मरण भी कर लेता है, उसके जीवन के सारे संकट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के उगने से अंधकार। सदियों से अचल, समय से परे काशी विश्वनाथ धाम आज नए रूप में सजकर मुस्कुरा रहा है। ये महादेव का वो धाम है जो मुक्ति भी देता है और जीवन को प्रगति भी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ काशी विश्वनाथ धाम आज पूरी दुनिया को अपनी दिव्यता से सराबोर कर रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें आपको समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: भारतीय सैन्य अकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसरों के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी ली। देश को मिला 3,000 से ज्यादा अग्निवीरों का दम, ओडिशा के खोर्धा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदम ताल से ऊंचा इलाका। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्तों के दर्शन पूजन जारी।

0: शुरुआत करते हैं चारू पांडे से। जिस दौर में एक अदद सरकारी नौकरी के लिए छात्र कई सालों तक संघर्ष करते हैं, चारू ने अपने पहले ही प्रयास में एक साथ 19 सरकारी नौकरियों की परीक्षा क्रैक कर ली। फिलहाल चारू विशाखापट्टनम में सीएजी दफ्तर में काम कर रही हैं और इस शानदार उपलब्धि के लिए चारू को इस साल राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिना कोचिंग के और छोटे शहर में रहते हुए ये अद्भुत कामयाबी चारू ने कैसे हासिल की है, चले खुद उन्हीं की जवानी जानते हैं।
1: प्रवीण पांडे और उनकी पत्नी सुधा ने जब घर बनाया तो बड़े दुलार से घर को बिटिया यानी चारू का नाम दिया। बड़े हरफों में लिखवाया चारू गृह। इस तरह घर की पहचान तो बिटिया से हो गई, पर शायद प्रवीण पांडे को पता नहीं था कि चंद सालों में चारू वो कारनामा करने वाली है जिससे वो रायपुर के तिल्दा नेवरा कस्बे की पहचान बन जाएंगी।
2: ऐसा वक्त हम अभी देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है वो किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 21 साल की उम्र में कैसे चारू ने ये 19 परीक्षाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, भले वो एसएससी हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो, पुलिस कर्मी की हो, और ऐसी कई अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं उन्होंने क्लियर की है। चारू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई।
1: चलिए सबसे पहले चारू की कामयाबी विस्तार से आपको बताते हैं। 23 साल की उम्र में चारू ने 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने का कीर्तिमान हासिल किया है। इसमें एसएससी बैंक, रेलवे, पुलिस और दूसरे कई सरकारी नौकरियां शामिल हैं। अपने पहले प्रयास में ही चारू ने ये सभी परीक्षाएं क्लियर की और कमाल ये है कि सभी नतीजों में चारू टॉप 5 में रही। जिस दौर में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एक सपना होती है, एक अदद नौकरी हासिल करना तारे तोड़ने जैसा होता है, उसी दौर में चारू ने मुख्तलिफ विभागों की 19 परीक्षाएं एक साथ पास कर ली। बस एक के बाद एक फॉर्म भरती गई, तैयारी के साथ परीक्षाएं दे दी गई और एक सिरे से सभी में कामयाबी हासिल करती गई। एक सामान्य छात्र ऐसा सोच भी नहीं सकता।
2: उसका क्या सिलेबस, तो काफी वेरिएड सिलेबस है क्योंकि आपने भांति भांति के एग्जाम्स दिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के एग्जाम दिए हैं, डाइवर्सिफाइड सिलेबस को कैसे आपने क्लियर किया, ये मेरा सबसे पहला सवाल है।
3: जी एक्चुअली एसएससी का ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, किसी में कुछ टॉपिक्स कम हो जाती है। सबसे मेन इस पे कॉमन ये होती है टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि अगर हम सीजीपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें उसकी दिक्कत उतनी नहीं होगी, लेकिन एसएससी, रेलवे ये सब में मेन दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की, जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया। कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सिलेबस होती थी रेलवे के लिए जो मुझे प्रिपरेशन करना पड़ा, बट मैं ये सोच के वो प्रिपरेशन की क्योंकि मुझे किसी ना किसी एक डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, तो 2 से 3 इयर्स मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ता, बट ठीक है हो जाएगा ये सोच के रेलवे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ा। बाकी कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगा ज्यादा, बस सिलेबस कम ज्यादा ऐसा था।
1: सपनों को हासिल करने के लिए छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से झोला उठा के चलने वाले कोई और होंगे, 23 साल की इस लड़की ने घर में रहते हुए सिर्फ अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर ली, है ना कमाल की बात। लेकिन हैरान तो आप ये जानकर होंगे कि चारू ने परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं ली, बस यूट्यूब पर टीचर्स के वीडियोस देखकर सीखा। यूट्यूब पर ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उलझन हुई तो एआई की मदद ले ली, पर घंटों पढ़ाई की और मन बहलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और आखिरकार सरकारी नौकरी का सपना साकार हो गया।
2: आपको कब ऐसा लगा कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम ही चाहिए, क्या बचपन से आपने सोचा था कि गवर्नमेंट एग्जाम ही करना है, और कब से आपने प्रिपरेशन इसकी शुरू की और कब आपने एग्जाम देना शुरू किया, क्योंकि 21 साल की उम्र में ही आपने सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट निकाल लिए थे।
3: एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब तो मुझे बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी, क्योंकि बताए मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड पूरे गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं, ऑलमोस्ट सारी टीचर्स हैं, तो बचपन से ड्रीम था मेरा भी कि मैं भी बड़ी होकर एक टीचर बनूंगी। बट ये हुआ कि मुझे जाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बहुत इंटरेस्ट आया मुझे क्योंकि मैथमेटिक्स पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो ये सोच के फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंने देखा कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू होती है, फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला सीजीपीएससी के बारे में, पता चला एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला, तो सीजीपीएससी का मैं प्रिपरेशन कर रही थी बट मैं फॉर्म नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी एज नहीं हुई थी 21 उस टाइम, तो मैं सोची कि एसएससी का प्रिपरेशन करती हूँ, फिर सोच के एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट स्टार्ट किया मैंने, फिर एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई। किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था। अगर पहले ही अगर एक का पता चल जाता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन ठीक है, अब पूरा फॉर्म डाल के एग्जाम देते गई मैं।
1: सपना पूरा हुआ। चारू ने सीएजी के दफ्तर में बतौर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ज्वाइन किया, लेकिन एक और कीर्तिमान उनका इंतजार कर रहा था। अद्वितीय प्रतिभा और कामयाबी के लिए चारू को राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला है। इसी साल 15 अगस्त को उन्हें ये सम्मान मिलेगा।
3: पोस्टमैन का कॉल आया कि मेरे नाम से कुछ पोस्ट आई हुई है, तो मैं सोची कि कुछ आया होगा पोस्ट, क्योंकि ऑफिस एड्रेस पे आई थी। फिर उनके जाने के बाद मैंने अपने एजी सर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे एट होम पे बुलाया गया है 15 अगस्त को। फिर उन्होंने मुझे फोटो सेंड करके मुझे भेजा, क्योंकि उस टाइम मेरी ड्यूटी थी वाइजाग पे। फिर मैं वाइजाग से घर आना था मुझे, क्योंकि यहाँ से ही मुझे ड्यूटी पे केदारनाथ जाना था। सो बस वैसे ही पता चली, बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया वो।
1: गणित से ग्रेजुएट करने वाली चारू का सफर तो अभी शुरू हुआ है। कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी है, पर फिलहाल प्रवीण पांडे और सुधा पांडे की दुनिया जादुई हो गई है। इतनी इज्जत, ऐसी शोहरत, यकीन नहीं होता कि ये सब सच है।
4: हम लोग कभी सोचे नहीं थे, मतलब ये बताई तो हम लोग कल्पना से बाहर है।
5: मेरे को ऐसा लगा कि इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि एट प्रेजेंट उस टाइम पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी 7 पीढ़ियों में और हमारे जान पहचान में जितने हम जानते हैं, जितने रिश्तेदारी है और जितने दोस्त यार हैं, जितने जानते पहचानते हैं, अगर किसी के साथ भी ऐसा मूवमेंट हुआ होता तब भी हमको उतनी ही खुशी होती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अकल्पनीय बात है।
2: बहुत सारी बधाइयां आ रही है हर जगह से।
5: जी जी, बहुत सारी बधाइयां आ रही है। दिन भर हम तीनों के तीनों बिजी रहते हैं,
2: फोन कॉल्स में लगातार बिजी रहते हैं,
5: इसमें लगातार किसी का वीडियो कॉल, बधाई कॉल, फोन कॉल, बहुत, मैंने ऐसा लग रहा है कि हम लोग अलग ही दुनिया में
1: है। जिन घरों में बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वहाँ थोड़ी बहुत टेंशन तो लाजमी है, लेकिन सभी काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खिलाते हुए, बगैर किसी चिंता या परेशानी के अगर कोई छात्र धड़ाधड़ परीक्षाएं पास करता चला जाए तो लोग इसे चमत्कार ही कहेंगे। लेकिन इस चमत्कार के पीछे रोजाना घंटों की पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर अर्जुन जैसी एकाग्रता चाहिए। सफलता का यही सीधा सा मंत्र है।
3: स्टूडेंट्स को, मतलब उनके चिल्ड्रंस को जो भी पढ़ने पे इंटरेस्ट है उनको वो करने देना चाहिए, उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए उस पे। स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इस पे ना जाए कि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें ये देखना है कि जितना हम पढ़ रहे उतना अच्छे से कर रहे या नहीं कर रहे, बस उसी चीज पे फोकस करनी है। और ऐसे कुछ मंत्र वगैरह तो नहीं है, बस वही है कि जितना पढ़े हम अच्छे से पढ़े, पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतने हम मॉक टेस्ट दें, क्योंकि हर मॉक टेस्ट देने से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
2: बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत डिटरमिंड हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी नेगेटिव इवेंट उनके साथ हो जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा कम्युनिकेट करिए। आपके अभिभावक आर ऑलवेज देयर, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। हमेशा अपने पेरेंट्स को रीच आउट करिए और ऐसे सिचुएशन में उनसे हमेशा बात करिए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से।
0: छत्तीसगढ़ की चारू अकेली नहीं है, राज्य के एक शहर राजनंदगांव की रहने वाली महक ने भी इतिहास रचा है। वो इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है, वो भी बतौर उपकप्तान। ये मामूली उपलब्धि नहीं है। छत्तीसगढ़ के शहरों में बड़े शहरों की तरह क्रिकेट का माहौल नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए महिला साथी भी नहीं है, लेकिन फिर भी महक ने अपनी लगन से क्रिकेट का हुनर हासिल किया और अब उनकी फिरकी का जादू बड़े मैदान पर भी चलने वाला है।
6: उम्र से 100 गुना ज्यादा ट्रॉफियां, 50 पुरस्कार, पर इस होनहार बिटिया ने तो अभी उड़ान भरी है। सफर आसमान से आगे का है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव ऐसा शहर नहीं जो चर्चा में रहता हो, पर अब इसका जिक्र महक नरवासी के नाम के साथ होगा और तय मानिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होगा। किसने सोचा होगा कि शहर की बेटी एक दिन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलेगी और उसकी उपकप्तान बनेगी। पर ऐलान हो चुका है, श्रीलंका दौरे में T20 सीरीज के लिए जो टीम बनी है महक उसकी उपकप्तान है। और सच जानिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ा कीर्तिमान है।
7: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के, अभी और आगे जाने को है तो ये कैरी फॉरवर्ड करूँ जो भी है सब। अभी बैंगलोर में कैंप लगे थे हमारे, उसके बाद हमारे मैचेस थे तो उसपे जो भी अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है फिर ऐसा टीम बना है। आगे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप खेलना है उसपे और आगे इंटरनेशनल खेलना है, सीनियर्स लोग के साथ खेलना है इंडिया। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, जब भी मेरे को कहीं भी बाहर मैचेस के लिए जाना पड़ता था वो सपोर्ट करते थे। मेरे सर मेरे साथ जाते थे, मनोज सर, सब अच्छा सपोर्ट था, मोटिवेट करते थे मेरे को।
6: महिला क्रिकेटर महक छत्तीसगढ़ की पहली क्रिकेटर है जिसका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ की अंडर 15 और अंडर 19 टीम का हिस्सा रही हैं। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज महक बल्लेबाजों को छकाने में माहिर हैं। अब उन्हें बड़े मंच पर हुनर दिखाने का मौका मिला है। माता पिता की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती।
8: कैसा लग रहा है
9: ये? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारा चीज उनके मेहनत परिश्रम और लगन का प्रतिफल है और उसके साथ साथ बच्चे के साथ साथ उनके कोच को भी दूंगा क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया, क्योंकि मार्ग बताने वाला प्रमुख होता है और उसके साथ साथ मेहनत करने वाला
10: ये। बहुत खुशी हो रही है सर मेरे को सुन के, मतलब कल जैसे हम लोग का परीक्षा ड्यूटी लगा था आए ना, फिर बच्ची व्हाट्सएप में मैसेज की थी तो सुन के ना बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी मेहनत सर, वो ना 3 टाइम जाती थी ग्राउंड, सुबह फिटनेस के लिए जाती थी, 11 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती थी, फिर 3:30 बजे फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके कोच का रहा मनोज तिवारी सर, और वो कभी मेरे बच्ची को ना, मतलब ये लड़की है तो इनको लड़कों के साथ ना खिलाऊं ऐसा उनके मन में कभी नहीं आया, हमेशा साथ लेके ही गए।
11: सबसे पहले तो मैं उनके मम्मी पापा को बधाई देना चाहूंगा कि और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो उनके परिवार का पहला हक बनता है। और रहा सवाल मेरे कोचिंग का, तो उनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा विश्वास किया उन्होंने और मेरा विश्वास करके उन्होंने मेरी एकेडमी में ज्वाइन कराया और जिसका परिणाम आज इंडिया टीम में वाइस कैप्टन के रूप में महक को मिला।
6: छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में क्रिकेट का माहौल बड़े शहरों जैसा नहीं, पर महक का जुनून काम आया। परिवार ने भी सपोर्ट किया, प्रैक्टिस के लिए महिला साथी नहीं थी तो महक ने पुरुषों के साथ अभ्यास किया, पर खुद को बड़े मंच के लिए तैयार किया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। राजनांदगांव से परमानंद रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
2: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: दिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। इटावा, आगरा, फिरोजाबाद से लेकर अमरोहा तक तेज आंधी का अलर्ट। लखनऊ में जमकर बरसे बादल। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार। विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन पूजन। भारतीय सैन्य एकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड। 9 महिला सैन्य अफसर के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। देश को मिला 3000 से ज्यादा अग्निवीरों का दम। ओडिशा के खोरदा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड। अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल। बनाया गया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 47 फीट है इसकी ऊंचाई।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के इसी राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान त्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान त्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। देखिए, इस श्लोक में तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश साथ में नौ ग्रहों से कृपा करने की प्रार्थना की गई है। तो आप रोज सुबह और रोज शाम को जब पूजा करते हैं कम से कम तीन बार या नौ बार इस श्लोक को कहिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान त्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर तीन बार सुबह और तीन बार शाम को या नौ बार सुबह और नौ बार शाम को इस श्लोक को आप पढ़ें तो सारे ग्रह शांत होंगे, ग्रहों की पीड़ा, ग्रहों की मुश्किल, सामान्य जीवन में आपको परेशान नहीं करेगी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान हैं। वृष राशि में दो नंबर की राशि में मौजूद हैं। अब 15 जून को दोपहर के समय में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मिथुन राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि मानी जाती है, सूर्य देव के लिए अच्छी राशि कही जाती है। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अमावस्या तिथि को हो रहा है और अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। वर्षा के मामले में और मौसम के मामले में सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। ये जो परिवर्तन है सूर्य देव का, ये देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक असर डालेगा। अगले एक महीने तक
सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरी देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन 15 जून को होने जा रहा है और लगभग 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अच्छा या बुरा पड़ेगा। देश दुनिया पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है, द्वादश में केतु और छठे भाव में राहु, यानी 6, 8 और 12वें स्थान में पाप ग्रह विद्यमान है। इसका परिणाम ये है कि दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां और ज्यादा भड़केंगी। इस समय जब सूर्य मिथुन में जा रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बाढ़ आने की, भूकंप आदि आने की संभावना बनेगी। भूकंप की स्थिति और मौसम की स्थिति समस्या दिखा रही है। मौसम उल्टे सीधे तरीके से व्यवहार करेगा, कभी बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, कभी तेज धूप निकल आएगी, तो मौसम अजीब तरह से व्यवहार करेगा और इस एक महीने में देश दुनिया में भूकंप की संभावना बन रही है। सूर्य राजनीति के, शासन और सत्ता के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश इस समय राजनैतिक उथल पुथल मचा सकता है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, लोगों के पदों में बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन राज्यों की, देश की सत्ता में परिवर्तन दिखा रहा है। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से इस समय को बहुत बेहतर समय नहीं कहेंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक सूर्य देव के इस महापरिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से सूर्य देव तीसरे भाव में आ जाएंगे तो मेष वालों की जो आर्थिक स्थिति है, पैसे रुपए का मामला है, वो काफी बेहतर हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपको वाहन का और संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस एक महीने में अगर आप प्रयास करें, अगर आप कोशिश करें,
तो रुके हुए तमाम काम इस एक महीने में आपके पूरे होंगे। इस एक महीने में आपकी मुश्किलें हल होंगी और आप प्रयास करके अपने महत्वपूर्ण काम कर ले जाएंगे। लेकिन मेष वालों को एक सावधानी रखनी है, इस एक महीने में यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। इस एक महीने में यात्राओं के मामले में लापरवाही ना करें और यात्राओं में सावधानी बनाए रखें, क्योंकि यहां पर मेष राशि वालों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अब अगले एक महीने को अपने लिए लाभकारी कैसे बनाएं? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। रोज सवेरे अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा मिलेगी और इस एक महीने का समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, सूर्य देव आपके दूसरे स्थान में गोचर करेंगे तो वृषभ वालों को बता दें कि अपनी आंखों की समस्या पर ध्यान दीजिएगा। आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है, सरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, पारिवारिक अशांति जैसी स्थिति इस समय बन रही है। पारिवारिक विवादों से और पारिवारिक अशांति से बचें। सेहत में आपके समस्याएं दिख रही हैं, शरीर दर्द, हड्डी दर्द, आंखों में सर दर्द की मुश्किल, आलस्य का बढ़ना, ये तमाम स्वास्थ्य की समस्याएं वृषभ वालों को इस समय हो सकती हैं। संतान को लेकर आपके मन में चिंताएं आ सकती हैं, संतान को लेकर, उसके करियर और जीवन को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। तो वृषभ वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपनी संतान को लेकर के अगर सतर्क रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगले एक महीने में नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा। निरंतर अगर आप गुड़ का दान करें या गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाएं, तो ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में ही होने जा रहा है, तो मिथुन वाले सबसे पहले ये जान लें कि उनके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। करियर में परिवर्तन की संभावना मिथुन वालों के लिए बन रही है। मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी हड्डियों का,
कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में

समस्या हो सकती है। इस समय कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपयश मिले, आपकी बदनामी हो। तो गलत आचरण से, गलत कार्यों से बचने का प्रयास इस समय आपको करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह स्नान करके 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। कर्क राशि, द्वादश भाव में, बारहवें भाव में सूर्य देव जा रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, महत्वपूर्ण काम बीच में बंद हो सकते हैं, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सेहत को लेकर समस्या हो सकती है, खास तौर से आंखों की समस्या और डाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, भविष्य को लेकर तनाव हो सकता है, तो बेवजह की चिंता आपको परेशान करेगी, भविष्य को लेकर आप तनाव पालेंगे, जिसके चक्कर में आप परेशान होंगे। व्यर्थ की सोच से परेशानी रह सकती है। आंखों की समस्या का ध्यान दीजिए, सर दर्द से बचिए, सर में चोट न लगे, इसकी सावधानी भी कर्क राशि वालों को बनानी होगी। तो कर्क राशि के लोग भविष्य को लेकर के थोड़े चिंतित होंगे और महत्वपूर्ण काम अभी कुछ समय के लिए रुकेंगे, इसीलिए इस समय शांति बनाए रखिए, काम में जल्दबाजी मत करिएगा। नियमित रूप से इस एक महीने में गुड़ का और गेहूं का दान करिएगा। अगर इस एक महीने में गुड़ और गेहूं का आप दान करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। सिंह राशि, सूर्य देव एकादश भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए पैसे रुपए की स्थिति बेहतर रहेगी। आर्थिक लाभ की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसे रुपए आपको मिलेंगे, आपके आर्थिक हालात बेहतर होंगे। संतान पक्ष को लेकर जो आपके मन में, जीवन में चिंताएं चली आ रही थीं, वो चिंताएं भी अब आपकी समाप्त होंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, मन आपका मजबूत होगा, आपकी चिंताएं, आपके तनाव दूर होंगे। सिंह राशि के लोग पैसे इस समय काफी पाएंगे, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है,
पैसा कहाँ इन्वेस्ट

ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या वाले अगर कोशिश करें तो इस समय इनको करियर में सफलता मिलेगी, करियर बेहतर होगा, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे, करियर का मामला हो, पैसे या संपत्ति का मामला हो, इस समय महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। परिवार में अपने शांति बनाए रखिएगा, पारिवारिक मामलों में झगड़े लड़ाई से और क्रोध से बचिएगा, अच्छा समय है इसका ध्यान दीजिए। और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कन्या वाले इस समय अगर चाहें तो अपने रुके हुए काम निपटा सकते हैं और इस एक महीने में करियर में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव नवम स्थान में जाएंगे तो तुला वालों को पहली सलाह यही है कि करियर में कोई जोखिम नहीं लेंगे, करियर में कोई बदलाव, कोई रिस्क, कोई जोखिम तुला वालों को इस समय नहीं लेना है। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, पेट की दिक्कत और खान पान की दिक्कत इस समय आपको हो सकती है, सतर्क रहें। खाने पीने पर और अपनी जीवनचर्या यानी अपनी रूटीन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर अपना खान पान और अपना रूटीन आप ठीक रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि खाने पीने को लेकर रूटीन को लेकर के आप बीमार पड़ सकते हैं और ज़्यादातर पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर खान पान में लापरवाही करेंगे तो पित्त की और पेट की गंभीर समस्या इस एक महीने में आपको परेशान कर सकती है। तुला वालों को मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, इस एक महीने में सेहत उनको परेशान कर सकती है, जिसको लेकर इनको सतर्क रहना चाहिए। तुला राशि के लोग अगले एक महीने तक नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। अपने खान पान के मामले में थोड़ा परहेज, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और ये आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वृश्चिक वालों को करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस समय आपको करियर में दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, एकदम से करियर बिगड़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, क्रोध और

पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह का क्रोध ना करें, वाणी पर कंट्रोल करें, बेवजह के झगड़े लड़ाइयों से बचें, करियर में जरा भी लापरवाही ना करें, ऑफिस में शांति रखें ताकि बेवजह की घटनाएं ना हो, आपके करियर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो करियर में जरा भी लापरवाही इस समय आपको नहीं करनी है, वरना नौकरी जा सकती है या व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। इस एक महीने में दुर्घटनाओं से बचिए और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखिए, चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। वृश्चिक वालों के लिए ये समय कठिन हो सकता है, इसलिए नियमित रूप से सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, सातवें स्थान में सूर्य देव आपके जा रहे हैं, और कुछ करें या ना करें लेकिन बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ा सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं आपको हो सकती हैं। स्त्री पक्ष से, माता से, बहन से, पत्नी से, बेटी से, या कोई ऑफिस में बालिका हो, स्त्री हो, वहां से थोड़ी दिक्कत इस समय आपको हो सकती है। आपके जीवन साथी का, आपके पति या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति बन रही है। धन को लेकर, पैसे रुपए को लेकर एक तरफ आपके खर्चे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ आपको पैसों की कमी, धन की कमी महसूस हो सकती है। तो धनु वालों को महिलाओं से दिक्कत आ सकती है इस समय, संबंध में, रिश्तों में, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कष्ट हो सकता है और धन का, पैसों का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। नियमित रूप से अगर गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं या किसी निर्धन व्यक्ति को नियमित रूप से गुड़ दें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके धन की स्थिति में सुधार होगा, पैसे अगर नहीं आ रहे थे, पैसे अगर कहीं फंसे हुए थे तो इस समय पैसे आएंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। करियर और नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो वहां भी फायदा होगा और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी का तनाव, दबाव, प्रेशर कम होगा। स्वास्थ्य का मामला भी
आपका धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। अगर किसी यात्रा पर जाना है, लंबी यात्रा करनी है, तो यात्राओं में सावधानी आपको बनाए रखनी चाहिए। इस समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके लिए बड़ा अनुकूल समय है। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि, पांचवें स्थान में सूर्य का परिवर्तन है। आप जल्दबाजी में, जोश में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। डाइजेशन, पेट को लेकर के, सरदर्द को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं। शरीर में शिथिलता का, आलस्य का अनुभव होगा और महत्वपूर्ण काम इस समय आपको करने में कठिनाई होगी। संतान को लेकर तनाव हो सकता है, संतान पक्ष की चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक रूप से मजबूत रहने का प्रयास करें, बेवजह की चिंताएं ना करें। नियमित रूप से अगले एक महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं या आटे का अगर दान करेंगे तो सूर्य की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य के लिए समय बहुत निगेटिव है, इसलिए मीन राशि वाले सेहत का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के तनाव ना बढ़ाएं, बेवजह का तनाव ना पालें। इस समय आपका अचानक ट्रांसफर हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। आपकी माता जी की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकते हैं, समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो मुख्यतः मीन वालों के लिए कठिन समय है, पारिवारिक मामलों को लेकर के और अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के मुश्किल होगी और अचानक आपका ट्रांसफर हो सकता है, अचानक आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आर्द्रा का प्रवेश देखा जाता है और आर्द्रा के प्रवेश के हिसाब से आने वाले समय में वर्षा का अनुमान भी लगाया जाता है। और इस बार जो सूर्य देव का आर्द्रा प्रवेश है, वो कह रहा है कि शुरुआत में बारिश कम होगी, शुरुआत में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन आगे चलकर के बारिश काफी ज्यादा होगी और देश के मध्य भाग में और दक्षिणी इलाकों में जल की वजह से, वर्षा की वजह से परेशानी हो सकती है।
अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को अपने लिए अनुकूल नहीं लग रहा है तो नियमित रूप से गुड़ और आटे का दान करने से लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: no.
1: Oh, no.
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
1: Why do these girls forgive him?
3: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo, bloody.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Hey Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोज जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है। वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: सास बहू और बेटियां में आज देखिए कहानी उलझते सुलझते रिश्तों की। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइल्स को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। दिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, इटावा आगरा फिरोजाबाद से लेकर अमरोहा तक तेज आंधी का अलर्ट, लखनऊ में जमकर बरसे बादल। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन। भारतीय सैन्य एकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसर के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सलामी। देश को मिला 3000 से ज्यादा अग्निवीरों का दम, ओडिशा के खोरधा ने INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड, अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल, बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 47 फीट है इसकी ऊंचाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: श्रीनगर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई, डल झील के किनारे सैलानियों ने मौसम का आनंद लिया। श्रीनगर में मेहरबान हुआ मौसम, डल झील के आसपास का माहौल भी खुशनुमा नजर आया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। मौसम सुहाना होने से खुश हुए सैलानी, सुबह सुबह इंडिया गेट पर दिखी पर्यटकों की भीड़। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए गर्मी से राहत वाली न्यूज, मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तर भारत में हफ्ते भर बारिश का अनुमान। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के लोगों को भी मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने कई राज्यों में 16 जून तक आंधी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना, लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जारी किया हाई अलर्ट। लखनऊ और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार इटावा, आगरा, फिरोजाबाद से लेकर अमरोहा तक तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, वहीं लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी से लेकर बरेली तक तेज हवाओं के साथ बारिश। फतेहपुर शेखावटी में तेज आंधी के साथ बारिश, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बही हवा। सीकर शहर में करीब 1 घंटे तक बारिश का दौर चला, बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से निजात मिला। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा गिरने के आसार। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद। शिमला समेत हिमाचल में कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन आधी बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। रुक रुक कर बारिश जारी रहने का अनुमान। ज्यादातर इलाकों में तापमान में कई डिग्री तक आई गिरावट। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कई जगह पर तेज हवाएं चलने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपना पड़ा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने बारिश का लुत्फ लिया। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मसूरी में ठंडा हुआ मौसम, अचानक गिरा तापमान। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से गिरा पारा। तेज आंधी के बीच कई जगह गिरे पेड़, 7 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। बिजनौर में तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगह गिरे पेड़, यातायात पर भी प्रभाव पड़ा। तमिलनाडु के तेनकासी में भारी बारिश के कारण डैम ओवरफ्लो, मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मानसूनी बारिश के बीच प्रशासन मुस्तैद। देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, पहले के मुकाबले मानसून की रफ्तार कुछ धीमी। नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस समारोह के लिए तैयारियां पूरी। मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। 15 जून से शुरू होने वाले मेले के लिए 1500 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। कुमाऊं रेंज की आईजी ने इंतजामों का जायजा लिया। कैंची धाम स्थापना दिवस पर देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के नैनीताल पहुंचने की संभावना। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। स्थापना दिवस पर कैंची धाम में पुलिस, यातायात, खुफी और आपदा प्रबंधन की टीमें रहेंगी तैनात। संवेदनशील जगहों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। बाबा नीम करौली ने 15 जून को ही आश्रम की स्थापना की। स्थापना दिवस पर बाबा की विशेष पूजा और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे महाप्रसाद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: ये देखिए News Pack, राह सच्चाई की, रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
14: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च के नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
2: La Que Buena.
1: ESPN Radio.
3: We know LeBron has to be the best player on the planet to
1: get The Daily.
4: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे

0: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: DRDO को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइल्स को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। दिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, इटावा आगरा फिरोजाबाद से लेकर अमरोहा तक तेज आंधी का अलर्ट, लखनऊ में जमकर बरसे बादल। भारतीय सैन्य एकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसर के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। देश को मिला 3000 से

0: अग्निवीरों का दम। ओडिशा के खोरधा में INS चिलिका पर हुई पासिंग आउट परेड। अग्निवीरों के जोश से भरे कदमताल से गूंजा इलाका। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल, बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 47 फीट है इसकी ऊंचाई।
1: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी और आप देख रहे हैं सास बहू और पेटिया का ये वीकेंड स्पेशल एपिसोड। तो क्या है आपका वीकेंड प्लान? वेल, हमारा प्लान तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। आज तो है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये पार्टी स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए वसुधा को मिलेगी कामयाबी, बजेंगे ढोल नगाड़े।

0: जगधात्री के गालों पर बरसेंगे तमाचे पर तमाचे, शिवाय और माया दोनों ही बनेंगी जगधात्री की ढाल। अनु के सपनों में आ रहा है राजनंदिनी का अतीत। क्या है ये माजरा, क्या है पुनर्जन्म?
1: क्यों दिखता है मुझे उनका चेहरा और इसी जगह पे क्यों दिखती है वो मुझे?
2: आपका कोई हक नहीं था, मेरी कहानी थी ना, मेरा हक है बताने का सब। आप फिर मजाक कर रहे हैं।
0: गलतफहमी की शिकार हुई अपराजिता, उतारा गुस्सा रक्षित पर। तेजस्विनी और गुरु की हल्दी में घनी बावरी हुई रूहानी।
3: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
4: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा।
0: और साथ ही सास बहू और बेटिया संग करेंगे मस्ती, बागा बावरी और नट्टू काका करेंगे बचपन के दिनों को याद, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: इतनी सी हंसी,
5: यहाँ पार्टी का माहौल है अनु और आर्यवर्धन की इस कहानी में। वेल, देखिए, शादी के फंक्शंस हुए हैं अमेजिंग। अब वो अलग बात है कि हर फंक्शन में कोई ना कोई नया ड्रामा, लेकिन ये तो होता ही है हर कहानी में। और देखिए, वैसे भी हमारी रियल लाइफ में शादी में कितना ड्रामा होता है, क्योंकि शादी यूजली होती है क्योटिक, सबके अपने अपने ओपिनियंस, सबकी अपनी अपनी राय। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको तुम से तुम तक के सेट पर।
0: राजनंदिनी का अतीत।
1: इसी जगह पे क्यों दिखती है वो मुझे? ये बंद दरवाजा क्यों मुझे अपनी ओर बुलाता है?
0: अनु के सपनों में पिछड़ी यादें।
1: उस औरत के बीच में कोई रिश्ता है?
6: अनु, तुम्हें इस कमरे के पास आने की इजाजत किसने दी? ये पूरा घर तुम्हारा है, लेकिन इस कमरे से दूर रहो, कमरे से दूर।
0: क्या अनु है राजनंदिनी का पुनर्जन्म? टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में इन दिनों अनु के सपने और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वो बार बार अपनी नजरों के सामने राजनंदिनी को ही देख रही है और उसे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो इससे जुड़ी हुई है। तभी तो देखिए कैसे आज अनु को आ गया है राजनंदिनी का सपना। वो सपना जब राजनंदिनी अपने भाई यश को आर्यवर्धन की तस्वीर दिखाकर ये बोलती है कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, जिस पर यश नाराज है क्योंकि वो आर्यवर्धन को पसंद नहीं करता।
7: यश, मैं शादी करना।
1: क्या शादी? किससे?

0: अपने भाई को कन्विंस कर रही हूँ, बता रही हूँ दैट आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड एंड ही इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. अब वो खुश क्यों नहीं है उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा.
1: इतना ही नहीं, अनु को तो ऐसा भी सपना आ रहा है कि वो यशवर्धन को देख रही है कि कैसे यशवर्धन बचपन में अपनी बहन के साथ रहा करता था. जरा देखिए सपनों की यादों का ये नजारा, जहाँ पर यशवर्धन मंदिर के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है क्योंकि उसने गलती कर दी है. इसी बीच वहाँ पर आ जाती है राजनंदिनी भी.
2: देखो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, बताओ किधर है.
3: पर दीदी मैंने चाबी भगवान जी के पास ही रखी है, तो वो गुस्सा कैसे रहेंगे.
1: अपने भाई की ये समझदारी वाली बात देखकर राजनंदिनी बहुत खुश होती है और वो चाबियों का स्थान मंदिर के दर पर ही ढूंढ लेती है और तय करती है कि चाबियाँ वहीं रहेंगी. कुछ ऐसा ही प्यार है यश और राजनंदिनी का, जो अब अन्नू के सपनों में सता रहा है.
2: अब से ये चाबी यहीं रहेगी. क्यों माँ?
4: तुम्हें इस कमरे के पास आने की इजाजत किसने दी?
1: और अब अन्नू इस बात को लेकर परेशान है कि वो कैसे इस बात का पता लगाएगी कि आखिर यश कौन है. वैसे बता दें कि राजनंदिनी के किरदार से अनिता हसनंदानी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें कुछ अलग करने को मिल रहा है.
0: बहुत ही अच्छा लगता है व्हेन यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल शो. ये शो का बेस ऑलरेडी बन चुका है, पीपल आर लविंग इट. तो बस यही है कि अब और भी ज्यादा इंजॉय करें क्योंकि शो में मेरी एंट्री के साथ साथ बहुत सस्पेंस, यू नो, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा, रेवलेशन होने वाला है. सो या इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग रोल, वेरी के यू नो मिस्टीरियस के चल क्या रहा है, हु इज शी, वेर इज शी कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज दिस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ऑडियंस को धीरे धीरे जो मिलने वाली है. एंड बहुत वक्त के बाद आई एम डूइंग समथिंग पॉजिटिव. सो आई एम एक्साइटेड एंड लाइक यू सेड के आई जस्ट होप के जल्दी ये शो ऑलमोस्ट लाइक नंबर वन पे ही रहा है, बस वहीं टिके रहे एंड इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड डूइंग बेटर विद माई सन एंड ऑल. ज़्यादा तो देखने को नहीं मिला बट जस्ट बिफोर एंटरिंग कुछ फ्यू एपिसोड्स टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री एंड यू नो किसका किसके साथ क्या रैपो एंड रिलेशन है, थोड़ा बहुत मैंने कैचअप किया. एंड मेरा किरदार तो पास्ट है, सो इट्स It doesn't have to be in the present, so it's okay even if I have not seen all the episodes. And like I said, ke dheere dheere bahut revelations hone wale hain show mein and usi ka hissa hoon. And it's going to be fun for the audiences to watch. I think I'm very lucky, touchwood, ke maine jahan par bhi normally kaam kiya hai, I've always again worked with them. Chahe wo Balaji ho, LSD ho and Prateek. So I really love, respect him and I think his vision is, I don't know why, lekin mujhe unme ekta ki jhalak nazar aati hai. And I keep telling him that because he's very enterprising, very hard working and very, you know, clarity jo honi chahiye. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुमन इंदौरी के लिए शूट कर रही थी, दे वर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड तभी मुझे कहा था कि यार आई सी राजनंदिनी इन यू. तो ये इनिशियली उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था ही इज़ गोना आस्क मी एंड थैंकफुली विद जी एवरीथिंग वर्कड आउट. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद देम अगेन एंड दे आर अमेजिंग टू वर्क विद एंड लाइक आई सेड आई एम वेरी लकी.
1: भाई सीरियल में राजनंदिनी का व्यवहार और अंदाज एकदम सादगी भरा है, यानी इस सादगी भरे अंदाज में भी एक ट्विस्ट है जो जल्द ही सामने आएगा.
5: याद है ना तुझे ये फोटो, तू, राजनंदिनी, हर्ष और यश. मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारा यश ही है.
1: फिलहाल तो आर्यवर्धन की माँ को चरण में यश ही दिखाई देता है. अब देखना होगा क्या अनु के सपने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चरण बनकर आया है वही यश है. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
6: जिसे यहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच जाएगा.
7: जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, गुरु और रूहानी की जिंदगी में कुछ भी नहीं है पार्टी जैसा, क्योंकि देखिए जैसे ही आती है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट वैसे ही आ जाता है एक नया ट्विस्ट. फिर वो ट्विस्ट खत्म होता है तो एक नई सिचुएशन आ जाती है, फिर वो खत्म होती है तो एक नया कंफ्यूजन आ जाता है, वो भी खत्म हो जाता है तो हो जाती है एक नई गलतफहमी. तो पता कर आते हैं अब क्या है इस कहानी का मूड। लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर।
1: गुरु और तेजस्वी की हल्दी की रस्म शुरू हुई शादी की रस्में।

0: चौखट ओढ़ पहुँची रूहानी।
1: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूने में जल्द ही गुरु और तेजू शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में शादी की सभी रस्में शुरू हो चुकी है और आज है हल्दी की रस्म। तभी तो देखिए कैसे गुरु तेजू के साथ साथ सभी घर वाले पीले रंग में रंगे हुए हैं और इनकी हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। बारी बारी सभी घर वाले गुरु और तेजू को लगा रहे हैं शगुन वाली हल्दी। भाई इस शादी से बाकी घर वाले तो खुश हैं, लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो वो है कुसुम और गुरु। और ये बात रूहानी को पता है, तभी तो हल्दी की रस्म में ट्विस्ट लाने के लिए रूहानी पहुंच गई है, जहां उसने कर दिया है ये धुआं जिससे सभी घर वाले हो रहे हैं परेशान, खास खास कर वहाँ पर पहुँचती है रूहानी घूंघट ओढ़कर कुसुम को पानी देने के बहाने और कुसुम को अपना चेहरा दिखा देती है कि वो हो गई है हल्दी की रस्म में शामिल इस शादी पर ब्रेक लगाने के लिए। भाई हल्दी से पहले भी घर में तमाशा हुआ था जहां पर कुसुम को शगुन देना था तेजू को, लेकिन वो ऐसा करने को राजी नहीं है, ना ही वो शादी की रस्मों में शामिल होना चाहती है, जिस बात को लेकर घर में बवाल शुरू हो गया है।
2: आपको क्या घर से निमंत्रण देना पड़ेगा?
0: ऐसे में गुरु सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और खुद तेजू को अपने हाथों से शादी का शगुन देता है।
3: तुम क्यों बीच में आके खड़े हो गए?
2: ताकि हमारी मां के सम्मान को ठेस ना पाए और थोड़ी हमारे किसी भी रिश्ते को समझ नहीं सकते, उसे परखने से पहले वक्त लेते, पर हम तो उनसे शादी कर रहे हैं, तुम्हें दिल से अपना स्वीकार है, तुम भी हमारे हाथों से ये सब कुछ स्वीकार।
3: तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी लेने के लिए तैयार। ओके ओके, शादी के बाद।

0: इसी के साथ तेजू का आज असली रूप भी देखने को मिला, जहां मामी उसे कुछ कहने आती है और तेजू भड़क जाती है।
1: भैया ने मुझे कहा था कि दुल्हन के शगों का सामान उसकी सास खुद उसे देती है अपने हाथों से, और अगर सास अपनी दुल्हन को शगन का सामान देने में आनाकानी करे, इसका मतलब उन्होंने अपने दिल से उसे नहीं स्वीकारा। हो सकता है इसलिए क्योंकि मेरी होने वाली सास अभी तक रूहानी को अपने दिल में लेकर है। जोड़ा? कौन सा जोड़ा? मुझे कुछ नहीं मिला।
2: कौन सा जोड़ा है?
3: किशोरी और लाला की ये कहानी जो लेकर आती है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स और देखते हैं क्या यहाँ पर भी हो रही है पार्टी। नहीं नहीं, आई मीन टू से एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। क्या आ रही है शो से हमारे लिए कोई गुड न्यूज, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
0: किशोरी के मायके में लाला बने मेहमान। लाला का पेड़ा लव।
4: तुम्हें कैसे बता कि मैं पेड़ों के सपने देख रहा था।
0: सास दामाद के बीच आया चेन का ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल पति अनाड़ी में लाला पहुंच गए हैं किशोरी के मायके, और देखिए कैसे वहां पर दामाद जी आराम से सो रहे हैं। भाई ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि इन्हें तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। ऐसे में तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। किशोरी के पापा मंदिर से लेकर आ जाते हैं प्रसाद में पेड़ा। बस फिर क्या, ये पेड़ा देखकर किशोरी को आता है आइडिया, और देखिए कैसे वो पेड़ा ले जाकर लाला को सुंघाती है, और पेड़ा सूंघते हुए दामाद जी उठ जाते हैं।
5: कभी भीड़े भीड़े
4: पेड़े। तुम्हें कैसे बता कि मैं पेड़ों के सपने देख रहा था।
5: एक ही थाली के
4: और भी है।
5: अब एक ही थाली के।
0: भाई लाला को तो पेड़े बहुत पसंद है, इसीलिए तो देखिए कैसे वो ससुर जी की ओर खींचे चले गए। इतना ही नहीं, उनकी नज़र तो खिड़की के बाहर भी जाती है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ऐसे में वो खेलने का जिक्र करते हैं। ये देख किशोरी के पापा खुश हो रहे हैं, ये सोचकर कि उनके दामाद कितने भोले हैं।
6: वो लाला को पेड़े बहुत पसंद है, और हमारे स्टार्टिंग के एपिसोड में भी दिखाया था कि वो दूसरों की दुकानों से पेड़े चुरा के भी ले जाते, तो पेड़े जो है वो उनकी वीक पॉइंट है। तो अभी मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आया हूँ जिसमें पेड़े हैं, और दिन काफी हो चुका है और लाला उठ नहीं रहा है, तो लाली जो है उसको पेड़ा सुंघाती और उसकी खुशबू से लाला उठ जाता है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस था कि लाला को पेड़ा बहुत पसंद है, तो लाला को हम लोग पेड़ा खिला के उठाते हैं सुबह में।
0: भाई लाला ने तो तय कर लिया है कि अब वो किशोरी के साथ उसी के घर में रहेगा, लेकिन यहाँ पर किशोरी की माँ ने ड्रामा शुरू कर दिया है क्योंकि घर में राशन नहीं है। ऐसे में देखिए कैसे वो मटके से पानी निकाल कर पीकर ये जाहिर करती है कि अब पानी से ही पेट भरना पड़ेगा। ये सुनकर लाला का दिल पिघल जाता है, और देखिए कैसे वो अपने सोने की चेन लेकर पहुंच जाते हैं अपनी सासू माँ के पास। ये देख किशोरी की माँ बहुत चक्की रह जाती है और उनके मन में लालच आ जाता है। ऐसे में वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाती है चेन लेने के लिए कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं किशोरी के पापा।
6: ये दामाद जी की चेन है और उन्हीं के पास रहेगी। मैं और किशोरी जा रहे हैं ना दिहाड़ी के लिए, राशन आ जाएगा। चेन तो लाला की है, लाला ये बता रहा है कि ये मेरी चेन है, और वो अपनी सास को यानी कि मेरी बीवी को कहता भी है कि आप ये चेन बेच दो, और वो कहती कि नहीं नहीं मैं ये चेन नहीं बेच सकती हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं ये दामाद जी की चेन है, ये तुम बेचने की सोच भी कैसे सकती थी, लेकिन वो चेन गायब हो जाती है। तो वो चेन मेरी बीवी ने बेची है, लाला ने बेचा है, गुम हो गई है, किसी ने छुपा दी है, उस चेन के साथ क्या हुआ है, बहुत सारी चक्री है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसके अंदर।
0: भाई इनकी बातें सुनकर तो लाला हैरान है और उसे कुछ याद भी आ जाता है, इसीलिए देखिए कैसे वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन किशोरी की माँ उनकी नज़र तो सामने रखी चेन पर ही है। ऐसे में किशोरी के पापा ये देख लेते हैं और फिर अपना गुस्सा अपनी बीवी पर उतारते हैं।
7: दामाद जी की चेन बेचने निकली थी।
8: तो उसमें क्या दिक्कत है? वो सामने से दे रहे थे, हम थोड़ी मांगने गए थे। तुमको तो ना हमेशा राजा हरिश्चंद्र बनने की पड़ी जाती।
7: अगर भूखे मरने की नौबत आई ना तो भूखे मर जाएंगे, मगर दामाद जी की चेन नहीं बेचेंगे।
9: अरे वो अमीर लोग यही तो चाहते हैं
7: कि हम टूट जाएं, हम बिक जाएं, मगर नहीं, ऐसा मैं उन्हें नहीं दूंगा।
8: मरो भूखे खुद भी और हमको भी मारो।
7: तो बात ही करना बेकार है।
6: लाला के हाथ से कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसी की वो भरपाई करने जा रहा है। और कुछ एक और इंटरेस्ट जो चेन के पहले का भी जो एक सीक्वेंस है वो भी व्यूअर्स को देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे ये चेन वाला सीन कनेक्टेड है। वहाँ पर लाला के हाथ से कुछ नुकसान हो गया है और हम लोग बहुत परेशान है कि हम लोग का वो नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लाला बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है तो आप लोग ये चेन बेचकर उसकी भरपाई कर दो। लेकिन वो क्या नुकसान हुआ है, किस बात का नुकसान है, नुकसान किसके हाथ से हुआ है और चेन के साथ क्या होता है, लाला के साथ क्या होता है, लाला और लाली दोनों हमारे घर पर हैं, वो यहाँ रहने आए हैं, नहीं रहने आए हैं, वो लोग जाएंगे वापस या नहीं जाएंगे, मंजरी कैसे रिएक्ट करेगी, उसके साथ हम लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये बहुत उलझा दिया गया है स्क्रीन प्ले को और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बने हैं जो आने वाले एपिसोड्स हैं।
0: भाई देखना होगा कि ये चेन का किस्सा क्या है और किस पर अब इल्जाम लगेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: जाएं आप हमारी सास बहू और प्रीतिया की इस पार्टी के लिए रेडी। देखिए ये पार्टी तो कर देगी आपको रिचार्ज और आपकी जो भी टेंशन है ना वो आप भुला देंगी और आपका दिमाग भी हो जाएगा शांत, फिर आप ले पाएंगे अपनी जिंदगी का राइट डिसीजन। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर।
0: कभी जूही पर भड़कती दादी, तो कभी रूहान पर गुस्सा दिखाता नाहर। नाहर के सामने रूहान और दादी की जिद।
10: मैंने कह दिया था हम तुम्हारे साथ चलेंगे तो बस चले।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में दादी केवल रूही से ही नहीं बल्कि जूही से भी नफरत करती है। तभी तो अभी जूही जो नाहर का बिजनेस में साथ दे रही है ये देखकर दादी अपना गुस्सा दिखाने लगती है। इतना ही नहीं वो तो गमला उठाकर नीचे फेंकती भी है और गुस्सा दिखाते हुए जूही को अल्टीमेटम भी देती है। लेकिन यहाँ पर नाहर जूही का साथ देता है।
11: छोटी सी बात का पता मैंने बना दिया आपने काम। अगर जूही मेरी मदद कर ली ऑफिस के काम में तो इसमें हंस क्या है, क्या दिक्कत क्या है? दादी जमाना कहां से कहां पहुंच चुका है लेकिन आप क्यों?
0: भाई दादी ने तो अपनी सोच सामने रखकर नाहर को घुमा दिया और तो और नाहर से एक ब्लैंक चेक साइन भी करवा लिया ये बोलकर कि वो पैसे डोनेट करना चाहती हैं। अब नाहर को क्या पता कि दादी पैसों का क्या घोल घपाला करेंगी। वहीं दूसरी ओर आज नाहर भी भड़क रहा है। असल में नाहर के सामने रूहान ड्राइंग बुक लेकर आ गया है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग कंपटीशन में जाना चाहता है। ऐसे में नाहर अपना गुस्सा दिखा रहा है जमीन पर ड्राइंग बुक फेंक कर।
12: एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, माना कि नाहर थोड़ा उखड़ा उखड़ा है रूहान से, पर अब जब बच्चा खुद पार्टिसिपेट करना चाहता है कंपटीशन में तो मान जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नाहर उल्टा और गुस्सा हो गया।
0: भाई गुस्सा दिखाते हुए नाहर ने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन रूहान जिद करने लगा। ऐसे में नाहर रूहान को अल्टीमेटम दे रहे हैं और उसका ये गुस्सा देखकर दादी भी जिद पर आ गई है।
13: दादी मैं वहाँ काम के सिलसिले से जा रहा
14: हूँ,
13: पिकनिक बनाने नहीं जा रहा मैं दादी।
14: बस मैंने कह दिया ना हम तुम्हारे साथ चले गए तो बस चले, चलो
12: मेरा बच्चा खुश हो जाए और क्या चाहिए। पर दादी को यही चाहिए ना कि उसकी नाती पोती खुश हो जाए, तो रूहान को लेकर अब जिद पकड़ ली क्योंकि नाहर दिल्ली जा रहा है, तो बोल दिया रहा तू कि आप साथ पे ले चलो तो हम जाएंगे दिल्ली।
0: अब दादी ने तो जिद पकड़ ली है, उन्हें क्या पता कि रूही को ड्राइंग करना बहुत पसंद था और नाहर इसी चक्कर में अपना गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रूही भी अपनी बेटी रुचिता के साथ दिल्ली में ही है और आज वो अपनी बेटी के एनुअल फंक्शन में स्कूल गई है जहाँ पर उसकी बेटी परफॉर्मेंस करने वाली है। ऐसे में अचानक रूही को कॉल आता है जिसके चलते वो वहाँ से चली जाती है और रुचिता उसका फंक्शन शुरू भी हो जाता है। इसी बीच डांस करते हुए रुचिता आगे आ जाती है और जो मेन लड़की है उसे गिरा देती है, जिसके चलते स्कूल टीचर रुचिता को डांट लगाती है और वहाँ से ले जाती है प्रिंसिपल के पास शिकायत लगाने के लिए। ऐसे में तभी वहाँ पर वापस रूही आती है और अपनी बेटी को भीड़ में ढूंढ रही है।
15: मैं उसके लिए एक मासी जैसी हूँ कि वो मुझे मतलब मैंने उसको रूही के साथ पाला है, बड़ा किया है, तो मैं उसके लिए बहुत कंसर्न फील करती हूँ। तो मैं उसको एक गलत एडवाइस देती हूँ जो मेरे हिसाब से गलत है, बट मिष्टी को लगता है कि ये सही है और रुचिता को अपना हक लेना चाहिए। वो बोल देती है कि अगर तुम्हें हक नहीं मिलता है तो तुम्हें छीन लेना चाहिए, उसे वापस लेने की कोशिश करना चाहिए। तो वो ऐसे ही कुछ बोलती है तो रुचिता उसकी एडवाइस को मान भी लेती है, और क्योंकि वो एडवाइस तो सही है नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर रुचिता को झेलने पड़ते हैं। और रूही को भी पता नहीं है कि मैंने ऐसी कोई एडवाइस दी है, और जब उसको पता चलता है तो वो कहती है कि ये तो तुमने गलत किया, ऐसे नहीं बताना चाहिए बच्चों को। तो फिर जाके मिष्टी को रियलाइज होता है कि हाँ शायद उसका किसी एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी।
0: भाई मिष्टी तो रुचिता को अपने हक के लिए लड़ना सिखा रही थी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही अलग हो गया। अब देखना होगा आगे कहानी में और क्या नए ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: मन अति सुंदर, अब बताइए ये कहानी हम सबको इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि कहानी भी ना एक पार्टी की तरह है, यहाँ है ढेर सारा एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि हमें भी बेसब्री से रहता है इसके हर नए एपिसोड का इंतजार। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में आज।
0: प्रथम की परेशानी, घर आई नई मुसीबत, घर वालों को राध्या की तलाश, दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में प्रथम बेहद परेशान है और राध्या से मोबाइल पर बातें कर रहा है। असल में राध्या इन दिनों दादी के साथ कुलदेवी की पूजा करने के लिए बाहर गई हुई है। ऐसे में प्रथम को उसका सामान नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपनी अलमारी तितर बितर कर रहा है और तो और राध्या पर अपना गुस्सा भी दिखा रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि उसका सामान कहाँ रखा हुआ है।
16: तो मतलब सर आप कुछ और पहन लीजिए ना प्लीज, हमें ध्यान से पूजा करने दीजिए, हम आधे घंटे में घर आ जाएंगे।
17: हाँ राध्या, तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा?
16: वो तो हमारे बिना कभी आपको रहना पड़ा ना तब पता चलेगा।
0: भाई मियाँ बीवी तो इस तरह एक दूसरे को ताने कसते ही रहते हैं क्योंकि यही तो इनका प्यार है, लेकिन प्रथम उसे भी अब एहसास होने लगा है कि राध्या की गैर मौजूदगी में उसने अपने कमरे को बिखेर रखा है, इसलिए देखिए कैसे वो सारा कमरा फिर से सजाने लगता है।

वहीं दूसरी ओर घर में हो गई है न्यू एंट्री, जो लेकर आई है अपने बच्चे को। असल में इसका नाम मेहर है और ये घर की नौकरानी के तौर पर आई है, लेकिन आते के साथ ही उसकी नज़र घर के हर सामान पर है। लगता है उसका इरादा घर लूटने का है। तभी तो देखिए कैसे जब एकता सामने से गुजरती है वो जाकर छिप जाती है।

0: तो और इसी बीच वहाँ पर रजनी भी आ जाती है, क्योंकि वो तो राध्या को याद कर रही है और राध्या की गैर मौजूदगी में सभी को परेशान देख मेहर को आइडिया आ गया है। बस फिर क्या, सभी के जाते ही मेहर ने अपना फोन निकाला, सिम कार्ड चेंज किया और अपनी टीम को फोन कर अपने इरादे बता दिए। यानी राध्या के लिए नई मुश्किलें आने वाली हैं, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प।
1: प्रक्षत और अपराजिता, आप दोनों चाहते हैं कि असली मजा हमें कब आएगा? जब आप दोनों करेंगे पार्टी, वो भी मैचिंग पार्टी आउटफिट्स में, और जब होगा आपका एक कपल वाला चांस। हाउ रोमांटिक, कितनी प्यारी है ना इन दोनों की ये जोड़ी, ना लगे इसे किसी की भी बुरी नजर। लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
2: आपका कोई हक नहीं था, मेरी कहानी थी ना, मेरा हक है बताने का। आप फिर मजाक कर
0: रहे। एक तरफ रक्षित और अपराजिता के बीच हो रही है नोक झोंक।
3: तेरे बिना ना मेरा घर एकदम जैसे चार दीवारी और छत लग रहा है, तू आ जा।
0: तो दूसरी तरफ ललित ने चली चाल, लेकर आया अपराजिता की सास। एक तरफ रंग ला रहा है दोस्ती का रिश्ता, तो वहीं दूसरी तरफ अपराजिता ने दिया ललित को तलाक।
4: डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग।
0: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता का गुस्सा भड़का हुआ है, इसीलिए देखिए कैसे वो रक्षित के कैबिन में पहुंचकर रक्षित पर भड़क रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि रक्षित ने ऑफिस में सभी को बता दिया है कि अपराजिता के पति ने अपराजिता पर अत्याचार किए हैं, इसीलिए अपराजिता अपना गुस्सा रोक नहीं पा रही।
3: कम से कम इससे पहले मैं एक कॉम्पिटिशन की विनर, छोटी सही बट अपनी एक पहचान बन गई, अब सबके लिए मैं बेचारी बन गई, सबकी नजरों में इज्जत कम और दया ज्यादा मिल रही है। क्यों किया ऐसा पहले मुझे बताइए, मुझे सुनना ही नहीं है ना। आपका कोई हक नहीं था, मेरी कहानी थी ना, मेरा हक है बताने का। सब
5: सुब्राशी
3: क्या आप फिर मजाक कर रहे, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप
5: मिस्टर जी, शी इज अपराजिता शर्मा, शी इज द हेड वीवर ऑफ द कंपनी एंड शी इज आल्सो द क्रिएटिव डिजाइनर।
0: फिलहाल तो विदेशी वीडियो कॉल ने अपराजिता के गुस्से को शांत किया है, लेकिन अपराजिता रक्षित पर अब भी इल्जाम लगा रही है और रक्षित चुपचाप सुन रहा है।
3: मैंने आपको एक प्राइवेट बात बताई थी, आपने जाके उसको पब्लिक कर दी, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और आपने डोमेस्टिक वायलेंस का कैंपेन शुरू कर दिया, मुझे नहीं चाहिए लोगों की नजर अपनी निजी जिंदगी में। दोस्ती में कोई सेफ स्पेस होती है या नहीं? आप एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी दोस्त को कुछ बताओ तो बात आगे नहीं जाएगी। आपने गलत किया।
0: भाई रक्षित की ये बातें सुनकर तो अपराजिता हैरान है, उसे लगा कि रक्षित माफी मांगेगा, लेकिन असल में रक्षित ने अपराजिता की पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि उसने जो बहादुरी का काम किया है वो बात सभी ऑफिस वालों को बताई, इसलिए देखिए कैसे सभी के सामने जब रक्षित अपराजिता को लेकर गया तो सभी लोगों ने अपराजिता के लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया और अपराजिता को अपनी गलती का एहसास हुआ है। खैर, अपराजिता और रक्षित की दोस्ती अब रंग ला रही है, लेकिन अपराजिता को ये नहीं पता कि उसकी जिंदगी में ललित लेकर आएगा नया ट्विस्ट, और ये नया ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि ललित की माँ यानी कि अपराजिता की सासू माँ है, जिसे ललित लेकर आ गया है उसी मोहल्ले में रहने के लिए। और देखिए कैसे अपराजिता को देखते ही ललित की माँ खुश होती है और पहुँच जाती है अपराजिता को लाड़ जताने। इतना ही नहीं, वो तो अपराजिता से जिद करती है कि अपराजिता सब भुला कर वापस अपने घर की ओर चले।
3: मेरा घर एकदम जैसे चार दीवारी और छत लग रहा है, तू आ जा और मेरे सुनने को ना जान दे बस, आ जा। अरे वाह, तेरी किस्मत तो कितनी अच्छी है,
6: अरे पति तो पति, यहाँ तो तेरी सास भी तुझे कितना मानती है।
7: एक बार आप मेरी बात सुनिए, तथा तो
0: भाई अपराजिता पे जो अत्याचार हुए हैं उनके चलते तो अपराजिता ने मोहल्ले वालों की बोलती बंद करा दी और वहाँ से चली गई। और ललित को लगा था कि माँ को लाकर वो अपराजिता को मजबूर कर देगा वापस से उसकी जिंदगी में आने के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अपराजिता ने अपना फैसला ले लिया है। अब देखना होगा कि अपराजिता के इस फैसले पर उसके परिवार वाले ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे।
8: जल्दी से तैयार हो, कुंवर कलेवा की रस्म शुरू होने वाली। ललित जी भी आ रहे हैं,
9: अपनी ललित को भी बुलाएं।
10: और क्या बीवी जी, बड़े जवाई को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुंवर कलेवा की रस्म तो उसका हक होता है। दिल तो तुम मेरा ले चुकी हो, अब ये तोहफा भी ले
9: चुकी। तो आप मेरी ले चुके, अब ये तोहफा भी लीजिए।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग,
8: तो अब मेरी भी तो ये कोर्ट केस वापस लेगी या इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
1: आज तो हमारा एपिसोड ही है पार्टी स्पेशल, और देखिए उसके साथ साथ संभाल कर रखिए हमने आपके लिए स्पेशल स्टोरी। यस यस, ओनली फॉर यू। अब आप ना इसे एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर भी है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी हाँ, यही है सास बहू अद्वेटिया की टीम का काम, लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। लेट्स चेक इट आउट।
0: बागा बावरी और नट्टू काका की ऑफ स्क्रीन मस्ती, इन तीनों का दिल तो बच्चा है जी। प्यार की नई कहानी में किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत? सोनी सब के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावरी की फिर से वापसी हो चुकी है। ऐसे में सास बहू और बेटियां को मौका मिल गया है गोकुलधाम जाकर इनसे बातचीत करने का, और जैसे ही ये तीन की तिकड़ी मिली तो मस्ती इनकी अनलिमिटेड शुरू हो गई। और आज तो सास बहू और बेटियां ने इन्हें दे दिया है खेल का एक टास्क, जो जीतेगा वो करेगा तकिए से सभी की पिटाई।
11: सो आज एक मजेदार अंदाज में भी हम देखने वाले हैं हमारे नट्टू काका बागा और बावरी की इस ट्रिपल क्या कहूंगी ट्रायो को। और आज हम इन्हें बहुत ही अलग अंदाज में भी देखने वाले क्योंकि सास बहू और बेटिया की टीम लेकर आई है एक प्यारा सा गेम इनके लिए। इनके हाथ में है पिलो और हम खेलेंगे स्टोन पेपर और सीजर का गेम और देखेंगे कि किसको आज इस पिलो से मार खाना पड़ेगा। तो क्या रूल्स हैं नवीना से जानते हैं।
12: सो स्टोन इज दिस, सीजर इज दिस एंड पेपर इज दिस। सो अगर सीजर जिसने किया वो पेपर को काट सकता है, सो सीजर हार गया। जिसने स्टोन किया तो पेपर उसको हरा सकता है, और जिसने सीजर किया
13: जिसने पेपर किया
12: स्टोन हरा सकता है, जिसने पेपर किया स्टोन को हरा सकता है।
13: समझो मैंने सीजर किया तो कौन हार गया?
12: सीजर पेपर को हरा सकता है।
13: इन्होंने पेपर किया तो ये हार गया। मैंने स्टोन किया, मैंने स्टोन किया,
12: स्टोन किया तो सीजर हार गया,
13: तो सीजर हार गया। और मैंने पेपर किया,
12: क्रश द सीजर,
13: मैंने पेपर किया तो जिसने सीजर किया वो मुझे मार सकता है, ऐसे ना मतलब।
12: रूल्स
13: आर काइंड ऑफ क्लियर, क्लियर
0: भाई। रूल्स तो क्लियर होंगे ही, हर बार की तरह बावरी अच्छे से बागा को समझाती जो है। खैर रूल्स को फॉलो करते हुए तीनों ने गेम खेलना शुरू किया और इस खेल खेल में तीनों ने की ढेर सारी मस्ती।
14: स्टोन पेपर सीजर,
12: सो बेसिकली उनको मैंने क्रश किया, इन्होंने मुझे।
13: हाँ तो मैं जीत गया, मैं जीता, मैंने इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया। आई एम द विनर।
14: स्टोन पेपर सीजर
12: इनको आ गया था, दोनों इनको मारेंगे।
13: हाँ मारेंगे।
15: 1 2 3 करता ये बुद्धू
14: समन है। स्टोन पेपर सीजर।
13: कैमरे के सामने चीटिंग, इतना डेरिंग है किसमें? ओके चल ना। स्टोन पेपर, ये पहले ही खोल रहे, देखो ये नहीं पेपर नहीं लास्ट में
12: सीजर के बाद।
13: हाँ स्टोन पेपर सीजर।
12: अच्छा मैं
13: कुछ कोशिश
14: लगी देखो
13: सर
14: पे चढ़ा।
13: ये बैलेंस हो गया, तीनों जीते तीनों हारे। सो बेसिकली बागा बावरी के लिए सैक्रिफाइस करता है तो बागा हार गया, बावरी बागा के लिए सैक्रिफाइस करती है तो बावरी हार गई, काका दोनों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं तो वो हार गए। इन शॉर्ट बेसिकली यहाँ पे भी गोकुलधाम सोसाइटी ऐसा हो गया कि सबने एक दूसरे को संभाल लिया। कीप वॉचिंग द स्टोरी ऑफ बागा बावरी एंड डू शेयर द पॉजिटिव कमेंट्स। एंड आपने इतने सालों तक जितना हमें, हमारे शो को और आसित कुमार मोदी जी को सपोर्ट किया है, आने वाले कई सालों तक सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से ही हम अच्छी, बेहतरीन और ग्रेट स्टोरीज आप तक पहुंचा सकते हैं। सो कीप वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एंड थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ लव फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। थैंक यू सो मच
0: भाई। बागा की लव स्टोरी पूरी हो जाए, दर्शक यही मनोकामना करते हैं। और अब जब बावरी वापस आ गई है तो जाहिर सी बात है प्यार की नई कहानी नए सिरे से शुरू होगी। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि बावरी के लिए बावलापन सिर्फ बागा ही नहीं दिखाते, बल्कि बावरी का एक और दीवाना आ गया है, यानी बागा के लिए कॉम्पिटिशन खड़ा हो गया है।
16: आपका नाम क्या है?
17: अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझसे मिलने आना।
12: आई थिंक सगाई को जो टाइम है उसके बाद ये लव स्टोरी जो वापस आ रही है, काफ़ी रिफ्रेशिंग लव स्टोरी है, काफ़ी नई लव नया टॉपिक है, नई स्टोरी है, और उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। बट बागा बावरी की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही नाइव है। मतलब ऐसा है कि आजकल के ज़माने में हमें ऐसा प्यार, इतनी इनोसेंस और इतना एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट है या लॉयल्टी है काफ़ी कम दिखने मिलती है। बट मतलब मैं भी जब ये रोल प्ले करती हूँ ऐसा लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही भोले वाले हैं, कितने इनोसेंट है। सो अगर ये इनोसेंस हम आज के जनरेशन के प्यार में ला पाए तो आई थिंक रिलेशंस बहुत दूर और बहुत लंबे समय तक चलेंगे।
13: क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नवीना ने एकदम ठीक कहा कि आज के ज़माने में इस तरह का प्यार, जहाँ पे हम जेन ज़ी वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप या तो दो दिन रहती है या दो महीने रहती है, फिर अपने अपने रास्ते लोग बिछड़ जाते हैं और वो भी हैप्पीली मूव ऑन कर जाते हैं, तो उस ज़माने में ऐसी स्टोरी लेके आना और इस तरह से उसको पोर्ट्रे करना, लोगों तक लाना, इतनी इनोसेंस इंटैक्ट रखना। हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे शो की सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी इनोसेंस। हर एक कैरेक्टर काफ़ी इनोसेंटली एक दूसरे के साथ बैंटर भी करते हैं तो बहुत इनोसेंटली करते हैं। उसमें ये ट्रैक जो काफ़ी टाइम के बाद आया है, बागा बावरी लव स्टोरी ट्रैक, तो यह लुकिंग फॉरवर्ड के लोगों को भी उसमें इतने ही इनोसेंस दिखे, इतनी ही मज़ा आए। और जैसे कहा कि काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी है, जिसमें ह्यूमर भी है, लव इमोशन भी है, और काफ़ी कुछ लोगों को देखने मिलेगा। एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज़ टू वन एंड ओनली मिस्टर आसित कुमार मोदी, जिन्होंने ये थॉट, ये जर्म उनके दिमाग में आया और फिर राइटर्स से लिखवाया, जीतू परमार से। सो या वी आर वेरी एक्साइटेड टू यू नो लुक फॉरवर्ड के लोगों को इसमें और मज़ा आए और हम बेस्ट ट्राई करें इसमें ह्यूमर के साथ इमोशंस जोड़ के इस पूरी स्टोरी को लोगों तक लाने के लिए।
18: चाचा का भतीजा के लिए जो प्यार है, भतीजा खुश तो चाचा खुश, भतीजा दुखी तो चाचा दुखी, ये लव स्टोरी में मेरा इन्वॉल्वमेंट, काका का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि हर चीज़ में उसके भतीजे के साथ खड़ा हूँ। तो ये जैसे जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ऐसा मेरा कैरेक्टर उसी तरह जाता है।
0: देखना होगा कि कैसे बागा बावरी का दिल जीतेंगे और कैसे फिर से बावरी की जोड़ी जमेगी, वो भी बागा के साथ, और फाइनली क्या बागा को उसकी दुल्हनिया मिल जाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: तो फिर चलिए हमारी इस सैटरडे वाली पार्टी को हम बना देते हैं और भी रंगीन, भर देते हैं इसमें एंटरटेनमेंट के रंग। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि देखिए, देख रहे हैं आप इन्हें? जी हाँ, इन्हीं से की है हमारी टीम सास बहू अद्वैतिया ने खास मुलाकात। जरा गौर से देखिए, पहचानिए कौन है ये, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके पास, क्योंकि यहाँ तो हुई हैं ढेर सारी बातें और हमने भी जाना है इन्हें आप क्लोज एंड पर्सनल। कौन है ये बताइए, बताइए, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास।
19: हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जो पिछले 4 सालों से एक ऐसी कहानी कह रही हैं, एक ऐसी नारी शक्ति की कहानी कह रही है जो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। तो मैं कहता हूं कि कलाकार जो होते हैं कहीं ना कहीं सोशल वर्कर्स होते हैं, जो अपने अभिनय से, अपने पात्रों से लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। और ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि कलाकार इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन का हिस्सा होते हैं, और ऐसा ही एक किरदार है पुष्पा, और मेरे साथ हैं इस किरदार को निभाने वाली करुणा। तो करुणा, वेलकम टू माय शो।
20: थैंक यू सो मच।
19: तो करुणा, जैसे मैंने कहा कि कलाकार जो होते हैं ना सोशल वर्कर्स की तरह होते हैं, कि जो अपने पात्रों से लोगों की जिंदगी में वो होप लेके आते हैं जो शायद जिंदगी में थोड़ी सी कम होती जा रही है, और इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनको मतलब आइडल मानते हैं। तो पुष्पा इम्पॉसिबल पिछले 4 सालों से कहीं ना कहीं एक विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज अपनी कहानी से, अपने ड्रामे से, अपने खुशी और गम की कहानी से दे रहा है।
21: तो क्या कह रहे हैं मम्मी, तू ही से हमारी जिंदगी में लेकर आई थी ना, अब इसे जिंदगी भर की सजा दूंगा मैं।
19: जी, यू थिंक इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी एज एन एक्टर बिकॉज़ यू आर ब्रिंगिंग होप so many people, like especially women.
20: Of course, definitely. It's a very big responsibility. Not only this character, being an actor itself is a big responsibility. क्योंकि मैं उस schooling से आती हूँ जहाँ ये माना जाता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप समाज को क्या दिखा रहे हैं, खुद को कैसे present कर रहे हैं, वो आपसे क्या सीख रहे हैं, because you know आप जानते हैं कि audience बहुत influence होती है हम लोगों से। तो मैं कोशिश करती हूँ as an actor कि ऐसा कोई भी कार्य on screen ना हो जिससे एक ऐसा message जाए जो नहीं जाना चाहिए। You know, एक समाज को बिल्ड करने में मुझे लगता है कि एक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है। फिल्में हमारा और जो सीरियल्स हैं वो हमारा एक अंग रहा है हमेशा से, अभिन्न अंग रहा है हमारे दिनचर्या का। तो लोग बहुत कुछ मतलब मैं कहूँ तो सच मान लेते हैं इन चीज़ों को, और उनसे सीखते हैं और उनको इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कभी कभी वही करने लग जाते हैं जो आपका फेवरेट पात्र स्क्रीन पर कर रहा है। तो आई थिंक यस, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर। या 1, 2, 1, 2, 3, 4
19: तो कलाकार जो होते हैं पानी की तरह होते हैं, जिस गिलास में डाल दो उसमें ढल जाते हैं,
20: होना भी चाहिए।
19: तो आप तो एक ट्रेन एक्ट्रेस हैं, पर ये किरदार जो है गुजराती कैसी रेडी का है, पाटन की, तो वो वेशभूषा, वो मैनरिज्म, वो लैंग्वेज, तो कैसे वर्क किया सिंस यू डोंट हैव एनी कनेक्शन विद गुजरात एज सच, तो हाउ डिड यू वर्क ऑन करुणा से पुष्पा की जर्नी कैसे की?
20: ऐसा था कि वैसे तो पुष्पा का जो पात्र है उसकी कई चीज़ें हैं जिससे मैं एज करुणा काफ़ी ज़्यादा खुद को जोड़ पाती हूँ या रिलेट करती हूँ, जैसे कि पुष्पा की एनर्जी, पुष्पा का पॉजिटिव जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ कि नहीं हो जाएगा यू नो, और आगे बढ़ते रहना, और जो उसका संघर्ष करने की जो उसकी शक्ति है, जो उसको सहन शक्ति मिली है कि वो जीवन में निरंतर संघर्ष करती रहे और फिर भी अपना आपा न खोए। सो दीज थिंग्स यू नो, आई रियली रिलेट टू दीज थिंग्स। बाकी जो आपने कहा कि हाँ वो 9वीं तक पास थी, गुजराती मीडियम से पढ़ी थी, पाटन से आई थी, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे थोड़ा सा वाकिफ होना पड़ा। तो थैंक्स टू द राइटर्स, थैंक्स टू जेडी सर जिन्होंने इतनी हेल्प की, थैंक्स टू द डायरेक्टर जिनके साथ मिलकर, क्योंकि एक टीम वर्क होता है एक पात्र को बनाना, आपके अकेले का काम नहीं। तो पहले दिन ही जो हमारी डायलॉग राइटर है स्नेहा जी, उन्होंने वॉइस नोट रखा हुआ था जिसको देखकर समझ पाई मैं कि हाँ वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस पात्र को लेकर, कितना उन्होंने उसको खोला है या कितना बंद, क्या वो चाह रहे हैं। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया, फिर जेडी सर ने जो भी मुझे उसके बारे में बताया हर दिन यू नो, हमने कैरेक्टर बना है तुरंत नहीं, आप फ्लोर पे आते हैं और बना हुआ पूरा हो जाए ऐसा नहीं होता।
22: पैसे किसने दिए, हर बार ये सवाल टाल रहा है दिलीप,
20: हर दिन कुछ आप उसको नया नया उसमें जोड़ते रहते हैं। तो बस ऐसे ही सबके सहयोग से और खुद की ट्रेनिंग, जो आपने बोला अनुभव होता है एज एन एक्टर, और आपका एक खुद का भी एक हल्का सा टैलेंट होता है जिसको आप ही यू नो, आप में एक ग्रास्पिंग पावर, मेरी टच बोर्ड ईश्वर की कृपा से टोनालिटीज़ की अच्छी है, एक्सेंट्स पकड़ने की अच्छी है। हालांकि इसमें ज़्यादा एक्सेंट देने के लिए मना किया गया था क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एक लोगों के जहन में एक बना हुआ है कि गुजराती यू नो हाउ इट, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमारे सेट पे इतने सारे गुजराती से एंड दे स्पीक वेरी नॉर्मली।
22: पता नहीं अनु नंबर से था, कह रहा था कि दिलीप ने वो पैसे कादंबरी से लिए,
20: तो हमने उसको ही कोशिश की कि हम उसे पकड़े, हल्का सा टच आए और पता भी चल जाए गुजराती है, और पैन इंडिया भी वो कैरेक्टर स्वीकृति उसको मिल जाए। तो बस सबके सहयोग से बन गया, बनते बनते धीरे धीरे समय के साथ।
19: पुष्पा की तरह एक और शो है जिसने लंबी पारी तय करे, अनुपमा, और मिलती जुलती सी कहानी है, इन द सेंस की बेसिक चीज वही है। तो लोग जब
20: आप कह सकते हैं कि महिला जो उस उम्र की है वो प्रोटैगनिस्ट है, इतनी सिमिलैरिटी है,
19: बट लोग कंपेयर करते हैं आपके शो को,
20: क्योंकि इसी कारण से, क्योंकि दोनों जो किरदार हैं वो एक उम्र के ब्रैकेट को जाते हैं, और जैसे अमूमन देखा जाता है कि जितने भी लीड्स होते हैं, जो बीच में एक चलन आया था कि भाई 18-19 साल के, तो उस समय में ऐसी दो औरतें आईं जो उस उम्र में शो को लीड कर रही हैं या उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है. सो आई थिंक दिस इज द रीजन वाई पीपल रिलेट एंड वाई पीपल कंपेयर. बट अगर मैं कहूँ तो ऐसी कोई भी मुझे नहीं लगती कि ना इसका मतलब इस पुष्पा का जो एक संघर्ष है वो अलग है और अनुपमा का संघर्ष अलग है. सो दोनों ही मुख्तलिफ हैं मुझे ऐसा लगता है.
2: अरे पैर थक गए तो बातों से मारूंगी, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी.
19: जब आप दर्शकों से मिलते हैं, आपके फैंस जो होते हैं, किस तरह के उनके भोलेपन के सवाल पूछते हैं, मतलब व्हाट डू दे कम एंड आस्क यू, व्हाट डू दे टेल यू?
20: भोलेपन के सवाल बस यूं ही कि वो कैसी हैं, असली लाइफ में भी आप ऐसी हैं, आप ऐसी करती हैं, यू नो. एंड वो बिलीव कर लेते हैं उस चीज को कि नहीं, पुष्पा है तो ऐसी होगी, उसकी ऊर्जा ऐसी होगी. हालांकि ऑफ कोर्स सिमिलैरिटी कई हद तक होती भी है. आई टोल्ड यू कि जो आप जैसे होते हैं वैसा रोल आपको अट्रैक्ट कर लेता है. लेकिन लोगों के सवाल इस प्रकार के बहुत रहते हैं कि कैसे करती है आप आप गुजराती नहीं है, मतलब वो बिलीव ही कर लिया लोगों ने कि नहीं, चीज़ गुजराती. तो मुझसे आके डायरेक्टली पहले तो वो गुजराती में बड़े प्यार से बात करने लग जाते हैं, और जब वो बहुत लंबा बात करते हैं तो मैं ये समझ नहीं पाती कि मैं जवाब कैसे दूं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन नॉट टॉक इन गुजराती अलॉट, इतना फ्लुएंट नहीं मैं बात कर सकती. सो यू नो वो बहुत ही इनोसेंटली आकर डायरेक्टली मुझसे, और पुष्पा बहन तुम्हें केम छो, ये हुआ वो हुआ, दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी इन गुजराती.
19: और दूसरा, आप पशुओं को लेकर, पेट्स को लेकर बहुत एक्टिव है.
20: वेरी नाइस.
19: आई थिंक वो एक कॉमन फैक्टर आपका और रूपाली गांगुली का भी है.
20: बिल्कुल बिल्कुल, भी और होना भी चाहिए. तो मैं चाहती हूँ ये कॉमन फैक्टर सबका होना चाहिए, क्योंकि जिस जहां से हम आते हैं, मैं रिलीजन की बात नहीं करती क्योंकि वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो जिस सीख से हम आते हैं, जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिन वेदों से हम आते हैं, वहां पशु सेवा, पशुओं का सम्मान, उनकी पूजा कोई बहुत ही नई चीज नहीं है. ये आपके जीवन का हिस्सा है. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कॉमन फैक्टर सब में होना चाहिए. थैंकफुल टू गॉड कि बड़े बड़े लोग, रूपाली जैसे या और जो लोग हैं, वो हैं पशु प्रेमी. तो यस, टू पैशंस आर देयर.
19: डांसिंग के बारे में अभी झलक लिखा था, मैं देखा, बट हाउ आपके रील्स हम देखते रहते हैं, बहुत अच्छे आप रील्स बनाते हैं. सो डांसिंग से कहां से ये शुरू हुआ था? बचपन से ही शौक.
20: बचपन, ये बिल्कुल सही बोला आपने. फिर से वही चीज आ जाएगी.
19: ट्रेनिंग ली थी आपने डांस?
20: ट्रेनिंग क्या, पापा की पोस्टिंग दो दो साल में होती रहती थी ना. कभी जैसे मान लीजिए 2 साल हम मद्रास में रहे, तो 3 साल आगरा में रहे, तो 4 साल उधमपुर में रहे, JNK में. तो जहां जहां रहे वहां वहां वो, मैंने जैसे मद्रास में थे 2 साल तो भरतनाट्यम 2 साल सीखा, फिर वहां से निकल गए क्योंकि बच्चे थे ना छोटे छोटे, तो मम्मी छोड़ सकती थी पीछे. हालांकि कहा गया कि कला क्षेत्र में छोड़ दो, ग्रेजुएशन करके निकलेंगी, लेकिन मम्मी डर गई. आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स शी इज अ मदर, कहां 8 साल के 8वीं क्लास के बच्चे को आप मद्रास छोड़ दो, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, आपको पता नहीं कितना दूर जाना है. 3 दिन तक ट्रेन में लगते थे, यू नो, टू ट्रैवल फ्रॉम हियर एंड देयर. तो मामा वॉज अ लिटिल स्केर्ड. और फिर उसके बाद हम जब पापा की पोस्टिंग लखनऊ हुई, तो मैंने कथक सीखना शुरू किया प्रीति गुप्ता जी से. वो भी मैंने बहुत कम समय के लिए सीखा. फिर भी इस बार पापा पोस्ट आउट हुए लखनऊ से, फिर भी वो मुझे मैम के घर पे छोड़ के गए 3-4 महीने के लिए. तो जो 1 साल में सीखती, वो मैंने उस साल में उतने महीनों में सीखा. लेकिन उतना मेरा रियाज नहीं रहा इसका, कथक का, मैं उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाई. लेकिन हाँ, फिल्मी डांस में हमेशा करती रही. सो यू नो दैट कीड़ा इज ऑलवेज देयर. आई लव डांसिंग, बहुत मुझे उसका शौक है.
19: पुष्पा में भी दिखता रहता है.
20: जी जी, बहुत शौक है. लेकिन पशु सेवा जो है वो मेरा जीवन का एक ही, वो मेरा आधार है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती. तो किसी चीज को बहुत एंजॉय करना, वो आपका पैशन होना, एक अलग बात होती है. किसी चीज में डिविनिटी फील करना, किसी चीज में आपके, आपको जिसको करके शांति मिले जीवन में, आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाए, वो पशु सेवा है. तो वो मैं तो कभी, मेरे जीवन का वो बहुत बड़ा हिस्सा है. जी,
19: तो पुष्पा में अभी आगे क्या ट्रैक आने वाला है? मुझे लगता है कि देश के हर खबरें भी आप काफी टॉपिकल रहते हैं और मुद्दे उठाते हैं.
20: करेक्ट, बिल्कुल.
19: तो आप कौन से मुद्दे पुष्पा उठाने वाली है?
20: ये तो मैं ऑनेस्टली कहूँ आपको, किसी से भी आप सेट में भी पूछेंगे ना, किसी को भी नहीं पता होगा कि कौन से मुद्दे उठने वाले. कसम से बोल रही हूँ मैं, बिकॉज स्टोरी यू कैन नेवर नो नो लाइक, एंड दैट इज नॉट योर एरिया ऑफ कंसर्न ऑल्सो एज एन एक्टर. जो आपके सामने आया, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आप जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा राइटर्स भी नहीं बता पाते, क्योंकि यू नो इट इज अ डेली सोप. कोई 2 घंटे की स्क्रिप्ट नहीं है कि बाइंडेड है और आपको बस यही बिगनिंग मिडल एंड है. इट कीप्स चेंजिंग. हम लोगों के जहन के हिसाब से जाते हैं. ऑडियंस कैसा बिहेव कर रही है, ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ऑडियंस क्या समझ रही है, क्या नहीं समझ पा रही है, तो उस हिसाब से भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है. ऑफकोर्स आप 6-7 साल चलेंगे तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा. सो वो नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे लड़कियों को अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, जो हम शुरू में बोलते थे. पुष्पा हमेशा अपनी बहू को भी समझाती थी कि नहीं, बेटे का पैसा ठीक है, लेकिन इतने निर्भर मत हो जाओ कि उनके बगैर आप कुछ कर ना पाओ। बात लड़का लड़की की नहीं है, लड़के के लिए भी आप किसी पे लड़की पे इतना निर्भर ना हो जाओ कि उसके बिना रोटी ना खा पाओ। करेक्ट है? सो इट्स बोथ द वे। सबको आत्मनिर्भर होना जरूरी है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी के साथ। तो ये हम सिखाते थे। फिर पुष्पा ने पानी के लिए लड़ाई करी, चाय वालों के लिए लड़ाई करी, सच के लिए लड़ी। हर जगह हमने वो टॉपिक, जैसे हमने करंटली हमने हिट एंड रन का केस हमने लिया, उसको हमने ऑफकोर्स हमने उसको इमोशनली वीव किया, बिकॉज इट्स अ टेलीविजन शो, यू हैव टू मेक एवरीथिंग हैज शुड हैव एन इमोशनल अप्रोच। द कैरेक्टर विच वी यूज्ड, वी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द हिट एंड रन, नाउ शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो वैसे करना पड़ता है, बट द टॉपिक वॉज वेयर इट इनिशिएटेड फ्रॉम वॉज लाइक हिट एंड रन। सो दैट वॉज अगेन अ करंट थिंग, यू नो, विच इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो वो हमने किया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने स्कैम पे किया। आई वाज स्कैम्ड वंस इन रियल लाइफ, यस, ऑन द सेट
19: साथ हुआ था ये
20: स्कैम। ऑन माय क्रिएटिव कृष्णा जी इज स्टैंडिंग हियर, सो शी इज लाइक लाफिंग एट मी। आई गॉट स्कैम्ड ऑन द फ्लोर। आई हेल्ड द शूट फॉर सम 5 hours। उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ, आई एम रियली सॉरी टू फॉर दैट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गई जीवन में, तब तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि शूटिंग रुकी है, तब तो वो सोचा ही नहीं मैंने, बोला मैं तो

0: हम लोग सीरियल देखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है वो आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इस कॉन्वर्सेशन में ला सकें।
1: जी।
0: तो उम्मीद करते हैं कि आज 4 साल हुए, 8 साल हो और पुष्पा ऐसे ही पॉसिबल चीजें इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाते रहे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो नियति का हिस्सा है। और आपके लिए भी धन्यवाद, आपकी तबीयत खराब है उसके बाद भी आप यहाँ आए इतनी दूर और आपने ये पॉडकास्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। जाते आते व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि हम आपके शो की अपनी गतिविधि अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं, तो व्हाट डू यू टेल द व्यूअर्स?
1: देखिए ये जो मैं कहूंगी ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कहूंगी, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि जो 4 साल का हमारा सफर रहा है, जो हमारी उपलब्धि है 4 साल पूरे करने की, ये हमारी से ज्यादा आपकी उपलब्धि है। क्योंकि अगर आपने हमें प्यार और सम्मान नहीं दिया होता तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हैप्पी 4 इयर्स टू यू ऑल्सो ऑफ पुष्पा इम्पॉसिबल। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, हमें आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है, आपसे बहुत हमें प्रेरित होते हैं हम नई नई चीजें करने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए। और ये पूरी कोशिश रहती है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ चीजें हम ऐसी कह जाएं जिससे आपके जीवन में वो काम आ सकें और आपका मनोरंजन भी हो जाए साथ साथ। तो बहुत धन्यवाद है आपका ऑडियंस, बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत प्यार हमारी पूरी टीम की ओर से। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और बस हम मिलते रहेंगे सोमवार से शनिवार रात को 9:30 बजे। थैंक यू सो मच। नाउ जस्ट इमेजिन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर वसुधा और देवांश भी साथ मिलकर करें पार्टी और उसमें शामिल हो उनका सारा परिवार, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? ओ माय गॉड, शायद शुरू में तो ये पार्टी होगी एकदम रॉकिंग, लेकिन उसके बाद फिर से आ जाएगा कोई ना कोई नया ड्रामा और फिर हो जाएगी टेंशन और फिर हो जाएगी ये शॉकिंग, है ना? आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं ना? तो चलिए फिर पता करके आते हैं, शो का करंट अपडेट लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के सेट पर।

0: वसुधा के आंगन में बजा ढोल, जश्न दूसरी जीत का। वसुधा और दादी की खुशी में चंद्रिका का गुस्सा, जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज वसुधा की दादी बेहद खुश है। तभी तो देखिए कैसे आंगन में ढोल बजा रही है, और तो और उनके ढोल में बच्चे दिव्या और वसुधा सभी नाच रहे हैं। भाई बात ही खुशी की है, क्योंकि वसुधा ने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। ऐसे में वहाँ पर आ जाती है चंद्रिका भी, जो ये नाच गाना देख कर हैरान है। लेकिन दादी सभी के सामने करती है इस खुशी का ऐलान।
1: यस, बहुत रिफ्रेशिंग होता है यार, जब बहुत सारे जितने भी हमने मोंटाजेस सीन शूट किए हैं, जो आपके सामने आए भी हैं, जिसमें हम अचार बना रहे हैं, अचार काट रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, और पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो हम सबके लिए भी एक चेंज होता है और कुछ अलग हटके आता है। प्लस आम का सीज़न है, तो बहुत सारे आम पके हुए भी आते हैं, जो हम सब पूरी कास्ट आम का मज़ा भी लेती है, खाते भी हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में एक शादी का माहौल नहीं होता है, सब कोई कुछ, कोई आलू उबाल रहा है, कोई आलू छील रहा है, कोई पराठे बना रहा है, तो वैसा माहौल है।
2: हाँ बिल्कुल, जहाँ राजस्थान में तो यही है कि ज़रा सा सेलिब्रेशन हुआ नहीं और घूमर पड़ जाता है, लोग सेलिब्रेशन अपना डांस से ही करते हैं।
0: भाई डांस करके खुशी तो जाहिर कर दी, अब बारी है मुंह मीठा करने की। ऐसे में दादी मिठाई मंगाती है और सभी एक दूसरे का मुंह भी मीठा करते हैं, और दादी वसुधा को गले लगाकर अपनी खुशी भी जाहिर करती है। वैसे यहाँ सभी की नज़र मिठाई और वसुधा पर है, लेकिन दादी उनकी नज़र है चंद्रिका पर। तभी तो देखिए कैसे दादी ने चंद्रिका की चोरी पकड़ ली।
3: सब लोगों ने मिठाई खाई सिवाय एक के।
4: अपनी बहू की जीत की मिठाई ना खावेगी। मुझे सर लाइसेंस आने के लिए जीत का जश्न।
3: अरे जिसने जो मानना वो माने, लेकिन बसुड़ी ने वो कर दिखायो तो किसी ने लगा था कि वो कभी ना कर पाएगी, वो भी अकेले। किसी ने कोशिश भी बड़ी की कि उसके मदद करने वाले को जबरदस्ती दिल्ली भेज दे, किसी के आगे झुकी ना।

0: आगे गिड़गड़ाए ना और कोई गलत काम ना किए, और नतीजो 3 दिन के अंदर देख लेना, फिर के अंदर आ जाने को।
1: हाँ, सेलिब्रेशन ये है कि वसु को अपने अचार बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस चाहिए था जो हमारे पास नहीं था, और उसकी वजह से उसका 100 किलो अचार जब्त हो गया क्योंकि इलीगल बिजनेस हो रहा था। ये हमें पता नहीं था, ना हमें मुझे पता था ना वसु को पता था, वो तो बच्ची है, और शायद देव के दिमाग से भी थोड़ा स्लिप हुआ। तो इस बात को वो करने के लिए, पुख्ता करने के लिए ये चंद्रिका ने सब कुछ किया था कि उनका सामान जब्त करवाया ताकि हम लोग प्रॉपर चैनल से काम शुरू करें। तो इसलिए हम लोग फूड लाइसेंस के लिए गए, वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लाइनों में लगे, लोगों से लड़े, रिश्वत देने की बात हुई तो वो भी थोड़ा फाइट वगैरह हुआ, और अब फाइनली वो पेपर साइन हो गया है जिसमें लाइसेंस बन जाएगा। और वो लाइसेंस पेपर साइन हुआ है, लाइसेंस आया नहीं अभी तक। तो अब लाइसेंस आने की देरी, हम लाइसेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही बड़ी विक्ट्री है कि वहाँ वो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, इस चीज का सेलिब्रेशन है।
2: अब कोई और समझे न समझे, लेकिन दादी चंद्रिका को बखूबी समझती है, इसीलिए उन्हें सब सच पता है, और ये सच उन्होंने सभी के सामने रख भी दिया है। हालांकि वसुधा अब भी अपनी मेहनत पर विश्वास करती है, और आज भी वो चंद्रिका का ही साथ दे रही है, लेकिन दादी कोई कसर नहीं छोड़ रही चंद्रिका को सुनाने में।
0: मैं तो ये कह रही थी कि सुन वसुधा के साथ, जब लिसेंस आ जावेगो तब तो तू मिठाई खावेगी ना। अब मैं रखवा दूंगी थारे लिए मिठाई, तेरे से मैं रखवाऊंगी, क्योंकि मारे को बिल्कुल ना अच्छा लगे कि मारी बहू है ना बासी मिठाई खा के उनको पेट खराब हो जावे, बीमार पड़ जावे। लेकिन तू अपनी बात से मगर मत जाना, और अब तुम थारी वसूली दिन चौगनी और रात 10 पूरी तरक्की करेगी, देख लेना।
2: वही दादी को तो पूरा विश्वास है कि जीत वसुधा की ही होगी, और देखिए कैसे ये विश्वास रंग लाया, और 3 दिन बाद वसुधा को मिल गया उसका फूड लाइसेंस, जिसे देखकर वसुधा बहुत खुश है, और खुशी के साथ साथ वो अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रही है। इतना ही नहीं, उसने तो चंद्रिका के पैर भी छुए, और चंद्रिका ने भी आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद के साथ ताना फ्री में मिल गया। खैर, असली ताने तो दादी मारती है, और साथ ही साथ चंद्रिका का मुंह मीठा करती है, वही मिठाई जो चंद्रिका ने पहले खाने से मना कर दी थी।

0: देव बहुत ग्रेटफुल है, बहुत थैंकफुल है, क्योंकि देव ने देखा है कितनी मेहनत की है, कितने सरकारी ऑफिसर के ऑफिस के चक्कर काटे हैं, और वहाँ पे भी समर ने कोशिश की कि लाइसेंस ना मिले, जो अचार है वो जब्त हो जाए और अचार एक्चुअल कस्टमर्स तक ना पहुँचे। उधर दूसरी तरफ मासा को प्रूव करके दिखाना है कि वसु भी बिजनेस में काम कर सकती है। तो इतने सारी ऑब्स्टिकल्स के बाद फाइनली हमें लाइसेंस भी मिल गया और अचार भी वापस आ गए, तो काफ़ी खुशी है। अब तो आप लोग भी समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है, तो मैं क्या कहूँगा, पर अभी के लिए माहौल थोड़ा अच्छा है, तो जब तक माहौल अच्छा रहे तो हम खुश रहना चाहेंगे। बट यस, अभी तो अड़चने आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अचार अभी आया है, अभी इस अचार को बेचना है, क्योंकि इससे पहले जो भी कस्टमर्स थे वो सब समर के भेजे हुए थे, तो एक्चुअल कस्टमर्स तक पहुँचाना एक चैलेंज होगा, एक टास्क होगा। कैसे पहुँचाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, या फिर डोर टू डोर जाके अचार बेचेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा।
1: अब वसुधा का न सिर्फ फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट आया है, बल्कि फूड लाइसेंस देने वाला भी पहुंच गया है वसुधा का बनाया हुआ अचार का ऑर्डर लेकर, जो उन्होंने जब्त कर लिया था। ऐसे में वसुधा बहुत खुश है अपने ऑर्डर को वापस पाकर। इतना ही नहीं, वसुधा ने अपनी पहली लड़ाई पूरी तरह से जीत ली है और साइन कर अपने इस ऑर्डर को लीगल तरीके से बेचने की शुरुआत कर ली है।

0: अब देखना होगा कि वसुधा की सफलता के इस सफर में और कौन सी मुश्किलें आएंगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कभी सोचा है आपने कि क्या होगा जब जगदात्री और शिवाय साथ मिलकर करेंगे एक सैटरडे वाली पार्टी? वेल, उस पार्टी में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा और उसके साथ साथ होंगे ऐसे डेयर डेविल स्टंट्स, क्योंकि देखिए पार्टी में आ जाएंगे बैड गाइज और ये गुड कॉप्स करेंगे उन बैड गाइज का सफाया। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: जगदात्री के गालों पर थप्पड़ों की बौछार।
2: मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद।
0: शिवाय ने घर में उठाई जगदात्री के लिए आवाज। माया बनी जगदात्री का सहारा। जी टीवी के सीरियल जगदात्री में आज सभी घरवालों के सामने शरद के इस घर में होने का खुलासा हो गया है। ऐसे में आज रुद्र शरद के साथ बदसलूकी कर रहा है और ये बात जगदात्री और शिवाय दोनों को ही पसंद नहीं आती, इसीलिए दोनों रोकने की कोशिश करते हैं और तो और रुद्र पर नाराजगी भी जताते हैं।
3: भास्कर, क्या भास्कर? तू बीच में मत आ शिवाय, समझा ना? साइड हट और उनको बाहर निकलने दे यहां से।
4: रुद्र, तुम्हें जो भी बात करनी है तो मुझसे करो ना। इन्हें यहाँ पर लाने का डिसीजन, सबसे छुपा कर रखने का डिसीजन सिर्फ मेरा था, किसी और का हाथ नहीं है इसमें।
5: पता है किसी और का हाथ है। क्या है कि ऐसी खुराफाती आएगी ना, तेरे दिमाग में आ सकते और किसी के दिमाग में नहीं।
4: ओ, हमको तो पहले से ही पता है ये गलती तेरी है तो सजा भी तुझे ही मिलेगी, बराबर मिलेगी। पर यहाँ नहीं, ये हमारी बेटी का ससुराल है, बहुत तमाशा हो गया इस घर में। तू चल घर, तब तुझे बताते हैं कि क्या सजा मिलेगी।
5: संपदा, माफी मांग के मेरे जुबान थक गई, लेकिन ये नहीं था कि मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा है हमारा सब नीचा करने के लिए।
4: अरे छोड़ेगी भी कैसे,
5: फिर तो अपने मां की ही बेटी ना।
3: बस कीजिए, दर्द हो रहा है उसे।
5: अरे रुको, दर्द हो रहा है इसे, मतलब हमें जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? देखिए दामाद जी, माफी चाहती हूँ, ये जगदात्री और उसके मायके वालों के बीच की बात है, आप बीच में मत पड़िए।
6: ये एक शरद जी को जगदात्री और शिवाय ने ना चुपके से रूम में बंद करके रखा हुआ था, जो हमें पता नहीं था, लेकिन हमें हमारे सूत्रों से इस बात की जानकारी हुई और अब हमें एक मौका मिल गया है इन दोनों को डिमीन करने का, और एक ऐसा मौका मिल गया है जिस तरह हम इनको ह्यूमिलेट करके घर से बाहर निकाल दें, जो मैं, आरती जी और रेखा वैनी चाहती हैं किसी भी कीमत पर तपस्या और रुद्र की जिंदगी से और इस सुख और आराम की जिंदगी से निकालना और जगदात्री को परेशान करना, इसीलिए हम क्रिएट कर रहे हैं। और आज जो थप्पड़ भी है, और संपदा के मन में जगदात्री के लिए एक अजीब सी नफरत है, जो कि उसको लगता है हमेशा वो ब्लेम करती है कि उसकी जिंदगी जो खराब हुई है, उसका हस्बैंड नहीं रहा, उसकी माँ की वजह से, तो वो जो नफरत है वो तो डे वन से है।
0: भाई संपदा को तो जगदात्री फूटी आंख नहीं भाती, वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ती जगदात्री पर जुल्म ढाने की। ऐसे में उन्होंने कोशिश की कि शरद की बेटी को वहाँ से दूर किया जाए ताकि वो अपना गुस्सा उतार सके, लेकिन शरद की बेटी ने जाने से मना कर दिया। ऐसे में रेखा ने जगदात्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन जगदात्री सच बताती है और इसी बात पर आ जाता है संपदा को गुस्सा और वो जगदात्री पर उठा देती है अपना हाथ।
5: क्या गलत है और क्या सही? हाँ, अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, एकदम किस्मत फूट गई, मतलब पूरी जवानी निकल गई इसके माँ के कलंक को धोते हुए, अब पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा इसके कुकर्मों को धोने में। रेडी, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद।
3: क्या बात?
5: क्या करेगा तू? तू क्या करेगा?
4: बोल,
0: वही रेखा को सिर्फ जगधात्री ही नापसंद नहीं बल्कि शिवाय भी उसे फूटी आंख नहीं भाते। और देखिए कैसे एक सांस होते हुए भी वो दामाद की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो शिवाय को ये भी बताती है कि उससे पहले जगधात्री पर रेखा का हक है।
4: बोल के बेटा, बोल कि मैं तेरी आई नहीं, बोल। देखा? नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है। इसका मतलब इसे कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब ये हमारी बेटी है, इस पे हमारा हक है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब कभी भी इसे थप्पड़ मार सकते
3: हैं। नहीं,
4: पर ये मेरा घर है, ये घर माया देशमुख का है।
6: हाँ, मतलब माया का कैरेक्टर ऐसा है कि वो जेन्युइन है, जहाँ पे सही और गलत का उस गलत की उसको पहचान है। तो अभी हम मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, संपदा नहीं बोल रही है, पर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हम तो गलत करते ही हैं। तो माया का जो कैरेक्टर है वो उसके हिसाब से चल रही है कि ये सही नहीं है। हमारे सामने आप किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं, मेरे घर में नहीं कर सकते। पर संपदा का तो वही है, कैरेक्टर ही ऐसा है कि किसी भी कीमत पर अपनी नफरत को यहाँ तक ले जाना, और हमेशा जगधात्री से हेट, बहुत ज्यादा हेट करती है वो।
0: भाई माया ने ना सिर्फ जगधात्री को बचाया बल्कि सभी को लाइन पर खड़ा कर दिया। ऐसे में रुद्र को फिर से आ गया गुस्सा और उसने अपना गुस्सा शरद पे उतारने की कोशिश की, लेकिन आज पहली बार है कि माया रुद्र पर भी गुस्सा दिखा रही है, वो भी अपने पति शरद के लिए।
4: सभी लोग सुन लीजिए, शरद को इस घर में रहने की परमिशन मैंने दी थी। ये भी मत भूलिएगा आप लोग कि अभी तक शरद और मेरा डिवोर्स हुआ नहीं है। शरद अभी भी बेटर, शो हिम सम रिस्पेक्ट।
0: भाई माया की बातें सुनकर तो आज रुद्र को भी झटका लगा है, और जगधात्री उसे इस बात पर यकीन हो गया है कि वो माया और शरद के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर ही देगी। खैर, आज माया को बहुत दुख हुआ है, इसीलिए वो शरद से माफी मांग रही है। लेकिन शरद न सिर्फ उसने माया को माफ किया है बल्कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर जाएगा। ऐसे में माया दुखी है, कोशिश तो करती है कि रुक जाए, लेकिन शरद रुकने वाला नहीं। बस फिर क्या, शिवाय भी कोशिश करता है कि वो शरद की मदद कर सके, लेकिन तभी रेखा वहाँ पर भी टांग अड़ा देती है।
4: बैग छोड़िए, अपना उठाइए, अभी आपको भी निकलना है। जगधात्री और शिवाय कहीं नहीं, जब तक मैं ना हूं कोई भी बाहर जाने के लिए।
0: रेखा को लगा था कि आज उन्हें जीत मिल जाएगी जगधात्री और शिवाय को घर से बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि माया जगधात्री और शिवाय के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, माया ने तो आज रेखा को भी अल्टीमेटम दे दिया है, इनडायरेक्टली ही सही, उन्हें इस घर का मेहमान बता दिया है। अब देखना होगा क्या रेखा और संपदा दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध कर इस घर से बाहर रफा दफा होंगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: एक सैटरडे वाली पार्टी तो होती है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पार्टी का डीजे, पार्टी के मूड को सेट करने वाला हो डल एंड बोरिंग, तो ये तो डेफिनेटली हो जाएगा शॉकिंग। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
7: साला किसी भी मीटिंग से निकलो तो दिमाग का शॉट हो जाता है, कोई हावड़ से कोई हावड़ा से, इनकी डिग्री का क्या अचार डालू? सिंपल सा सवाल पूछो तो रट्टू तोते की तरह किताब में घुस जाते।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए रॉकिंग प्रोमो स्टार प्लस पर आने वाले बिग रियलिटी शो इंडिया के टॉप 1% का, जिसमें अनिल कपूर होस्ट करते हुए नजर आएंगे।
7: क्या सिर्फ डिग्री विग्री नहीं, दिमाग तोड़ेगा, कोई भी दिमाग वाला बन सकता है इंडिया का टॉप 1%।
8: 1% क्या है?
7: देश के टॉप दिमाग वाले लोग।
8: आएगा कहाँ पर?
7: लोगों के दिलों का नंबर 1 चैनल स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। दौड़े जिसके दिमाग के घोड़े, वो इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आगे बढ़े।

0: सीरियल मंगल लक्ष्मी के फैंस के लिए है शॉकिंग न्यूज। कलर्स का सीरियल मंगल लक्ष्मी जल्द ही अपने दर्शकों से अलविदा कहने वाला है, क्योंकि इसकी जगह अब आएगा कलर्स का नया सीरियल जुई मुई, जिसमें मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आएंगी ईशा सिंह।
1: एक्सप्लेन,
2: शर्मा जी का घर सेफ जोन में।
3: पुराना नक्शा खाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
4: जीनियस है लड़की, ये देखिए कमाल कर दिया, वाह जीनियस है ये, जीनियस।
5: कोर्ट में सिर्फ दिमाग ही नहीं, जबान भी चलानी पड़ती है। दो दिन नहीं टिकोगी,
6: शायद समझ ना आएगी पर याद रह जाएगी।
0: वैसे बता दे कि इसकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कोरियन ड्रामा अटर्नी वो की। इसी के साथ इस सीरियल में विजेंद्र कुमेरिया और संजय सूरी भी साथ में नजर आएंगे।
7: आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी
0: 370 बिरयानी विवाद पर प्रणीत मोरे ने दर्शकों से मांगी है माफी। असल में इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आलोचना हो रही थी और तो और बहस भी छिड़ गई थी, क्योंकि प्रणीत मोरे ने 370 बिरयानी के कमेंट पर हंसी के ठहाके जो लगाए थे। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रणीत मोरे सामने आए हैं और माफी मांगते हुए उन्होंने अपनी सफाई व्यक्त की है।
7: जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटी।
0: एकता कपूर जल्द ही नेटफ्लिक्स पर लेकर आ रही हैं अपना रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2। खबरों की माने तो लॉकअप सीजन 2 में हर्षा चोपड़ा को अप्रोच किया गया है, हालांकि हर्षा चोपड़ा ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। इनके अलावा शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी, इनके नाम कन्फर्म है, यानी ये लॉकअप सीजन 2 में नजर आएंगे। वेब सीरीज संगमरमर में नजर आने वाली स्वाति तरार जल्द ही नजर आएंगी कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में। भाई सीरियल मन्नत में एक साल का लीप आ गया है और एक साल बाद स्वाति तरार कौन सा ट्विस्ट लेकर आएंगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

दंगल टीवी पर जल्द ही आने वाला है एक नया सीरियल, जिसे लेकर आ रहे हैं वेदराज स्टोरी स्क्वायर प्रोडक्शन। वैसे बता दें कि इस सीरियल में नजर आ सकती हैं ख्याति केसवानी मुख्य किरदार के रूप में।

सन न्यू के सीरियल सत्यासाची में जल्दी पीयूषा रॉय एंट्री करने जा रही हैं और इनके किरदार का नाम होगा पायल, यानी ये सत्य और साची की जिंदगी में आकर ट्विस्ट लगाएंगी।

0: सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा।
1: जी टीवी पर जल्द ही आने वाला है नया सीरियल तू ही रे दिल में। देख लीजिए इस सीरियल का नया प्रोमो जहां पर वृंदा और संजय दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे, वो भी ट्विस्ट के साथ।
2: अरे कोई तो कुछ बोलो ने,
0: मारी वृंदा और तेरे भतीजे की उम्र में जमीन आसमान का फर्क छे धन को।
3: लग्न पत्रिका में दूल्हे का फोटो देखा ने सबने, अब दूल्हा ही भाग गया उसमें मेरी क्या गलती। सौतेली माँ हूँ फिर भी नाजायज बच्ची की जिंदगी बचा रही हूँ मैं।
4: सबके जीजू और मेरा प्यार।
5: मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरी माँ की हद की तरह ना टेस्टी खाना बना सके।
1: देख लीजिए बरेली के बच्चन का ये प्रोमो जहाँ पर कैसे कृष्णा देगा संगम का साथ और कैसे बनेगी इनकी जोड़ी।
5: मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरी माँ की हद की तरह ना टेस्टी खाना बना सके।
6: उसे बच्चे संभालने आने चाहिए।
7: शादी कैसे चलेगी ना वो मैं डिसाइड करूंगा। गॉट इट?
8: खाटू बाबा बहुत गलत हो रहा है हमारी बरेली की बर्फी के साथ।
9: क्या करे कैसे बताएं, वो विक्की अच्छा इंसान नहीं है, नहीं करनी उससे शादी।
10: आपको नहीं करनी ना कचहरी वाली शादी तो नहीं होगी, वादा है हमारा।
1: सीरियल हस्तिनापुर के वीर के सेट से सांची कौर ने शेयर किए हैं कुछ बीटीएस नजारे अपने फैंस के लिए। डाल लीजिए इन पर एक नजर।

0: दीपिका कक्कर ने अपने फैंस को दिया है अपना हेल्थ अपडेट। इन दिनों वो कैंसर से लड़ रही हैं। इसी बीच उनके पापा भी अच्छी रिकवरी कर रहे हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने अपने फैंस को दी है। स्टार प्लस पर हाल ही में आया है एक नया प्रोमो जो कि नए सीरियल ये फितूर तेरा का है। इसमें बताया जा रहा है कि कहानी क्या होगी। वैसे बता दें कि इस सीरियल में मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे ईशान धवन और देव चंद्रिमा रॉय। साथ ही खबरें आ रही हैं कि इन दोनों के साथ ज्वाइन करेंगे मोहित दुसेजा भी। यानी कि ये फितूर तेरा होगा एक लव ट्राइंगल स्टोरी।
1: तो कैसा रहा हमारा ये वीकेंड स्पेशल एपिसोड? आज तो घर बैठे बैठे हमने करवा दी ना आपको सैटरडे वाली पार्टी। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां रिलैक्स करेंगे आपके साथ बैठकर संडे लंच पर, और लेकर आएंगे एक बार फिर आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। अब तो वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। आप रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: DRDO को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया सम्मानित, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए इसमें शामिल, आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। दिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, इटावा आगरा फिरोजाबाद से लेकर अमरोहा तक तेज आंधी का अलर्ट, लखनऊ में जमकर बरसे बादल। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा है आकर्षित।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: श्रीनगर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई, डल झील के किनारे सैलानियों ने मौसम का आनंद लिया। श्रीनगर में मेहरबान हुआ मौसम, डल झील के आसपास का माहौल भी खुशनुमा नजर आया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। मौसम सुहाना होने से खुश हुए सैलानी, सुबह सुबह इंडिया गेट पर दिखी पर्यटकों की भीड़। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए गर्मी से राहत वाली न्यूज, मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तर भारत में हफ्ते भर बारिश का अनुमान। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के लोगों को भी मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने कई राज्यों में 16 जून तक आंधी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना, लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जारी किया हाई अलर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह मौसम ने ली करवट, 1 घंटे की झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। ठंडी हवाओं और तेज बारिश ने शहर का मौसम बना दिया सुहाना, उमस और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। मौसम बदलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, पार्कों और सड़कों पर लोगों को बारिश का लुत्फ उठाते देखा गया। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश ने प्रयागराज वासियों को बड़ी राहत दी, कई लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
5: From the New York Times, I'm Michael Barro. This is The Daily.
4: Smartless.
5: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
4: Marketplace.
6: The big three on the program today, or, you know, the big three of the
4: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने पचा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र।
ये गंधपुरा पत्थर में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक,

0: जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
1: खबरें तो आ रहा है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी

0: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: DRDO को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। राजस्थान CM भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया सम्मानित, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए इसमें शामिल, आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विवाह में देरी का कारण आपके ग्रह होते हैं। माना जाता है कि किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो तो इसके पीछे कमजोर बृहस्पति हो सकता है, तो वहीं लड़कों के जीवन में विवाह की देरी को कमजोर शुक्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको विवाह में विलंब के चार योगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके होने पर विवाह में समस्या आती है, लेकिन ज्योतिष में इसका समाधान भी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि विवाह में विलंब वाले इन योगों को कैसे दूर किया जाए।

0: क्या आपके विवाह में हो रही है देरी? मांगलिक दोषों से हो रहे हैं आप हैरान? कुंडली का शुक्र और बृहस्पति कर रहा है परेशान? तो आज हम आपको बताएंगे समस्या का समाधान। विवाह की उम्र होने पर भी कई बार विवाह नहीं हो पाता। करियर में सफलता और रुतबा होने पर भी शादी में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। तो इसके पीछे ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। कुंडली के शुक्र और बृहस्पति की विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी विवाह में कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपकी विवाह होने की शुभ स्थितियों को प्रतिकूल बना देते हैं।
1: किसी भी पुरुष या स्त्री के विवाह में विलंब अलग अलग कारणों से होते हैं, पर मुख्यतया दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह सप्तम भाव जिस व्यक्ति का पीड़ित हो जाएगा, वो व्यक्ति के विवाह में अड़चन आने लगती है। अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बाधा डालते हैं।
0: आज हम जानेंगे विवाह में देरी का कारण माने जा रहे चार योगों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि कुंडली में इन योगों के होने पर विवाह में यकीनन देरी होती है। चलिए आपको विवाह की बाधा से जुड़ा पहला योग बताते हैं जिसके कारण शादी में आती है रुकावट। साथ ही जानेंगे ज्योतिषी हाथ पीले होने में आने वाली अड़चन को दूर करने का कौन सा महा उपाय बताते हैं। शनि चंद्र का विष योग अक्सर विवाह में विलंब कराता है। इस योग के कारण व्यक्ति पहले विवाह करना नहीं चाहता, बाद में काफी विलंब हो जाने पर विवाह हो पाता है। ये योग विवाह हो जाने के बाद भी अक्सर अकेलेपन का कारण बनता है। इस योग के होने पर शिवजी की उपासना उत्तम होती है, साथ ही सात्विकता से लाभ होता है।
1: देखिए, शनि विवाह को लेट कराता है। दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ने से जब प्रेम भाव रहता है तो बहुत अच्छा, और जब विघ्न पड़ जाता है तो जब झगड़ा होता है तो भी वो बहुत भीषण रूप से दोनों के बीच में रहता है। सबसे पहले अच्छे ब्राह्मण से कुंडली का अवलोकन कराएं। अगर किसी प्रकार से कुंडली में मंगल आदि या शनि आदि का योग पड़ा हुआ, जैसे चंद्र शनि का विष योग हो जाए, तो उसका उपाय करें। विशेष तौर पे अगर दाम्पत्य जीवन का घर सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है तो कुंभ विवाह या घट विवाह करा लेने से लाभ होगा। विशेष तौर पर मंगली का नॉन मंगली से भी घट विवाह करके आनंद से विवाह चल जाता है। साथ में चंद्रमा से अगर कोई पीड़ा आ रही है तो पितृ दोष का पूजन अवश्य कराएं, उसके पश्चात विवाह कराएं। कुंभ विवाह बीच में उसमें और सोने पे सुहागा जैसा लाभ देने लगता है।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। ज्योतिष में विवाह के लिए जन्म कुंडली में सातवां भाव मुख्य माना गया है, जिनके चलते शादी में देरी या बार बार बनते रिश्तों का टूटना सहना पड़ता है। जानकार मानते हैं कि कुंडली का सातवां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। कई बार शादी के बाद भी संबंध खराब हो जाते हैं, इसके कारण तलाक तक की नौबत आ जाती है। माना जाता है ये सब ग्रहों की अशुभ दृष्टि और ग्रहों की निर्बलता के कारण होता है। चलिए अब आपको बताते हैं विवाह में देरी का दूसरा कष्टकारी योग कौन सा है और इसके ज्योतिषीय समाधान कौन से हैं। विवाह में विलंब का दूसरा कारण बनता है सप्तम भाव में बृहस्पति। ये महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है, अक्सर यह विवाह नहीं होने देता। अगर विवाह होता भी है तो तालमेल की समस्या रहती है या पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। इस योग के होने पर गुरु रूप में शिवजी की उपासना करें, साथ ही नियमित रूप से दान करते रहें।
1: किसी व्यक्ति को जीवन में, देखिए बृहस्पति विवाह का कारक भी है, किसी भी पुरुष के जीवन में बृहस्पति का अच्छा होना उसके वैवाहिक जीवन और विवाह शुरू होने का कारक ग्रह होता है। तो दाम्पत्य जीवन के उसमें बैठने से विवाह में विलंब करना और विवाह में अड़चन डालना कई बार हमने अनुभव किया या एक से अधिक विवाह होना इस बृहस्पति के कारण संभव है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुखराज धारण करने के बाद विवाह होने के बाद भी विवाह में विघ्न पड़ जाता है।
0: ज्योतिष शास्त्र मानता है कि मांगलिक होना भी विवाह की एक बड़ी समस्या है। माना जाता है अगर जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में मंगल स्थित हो तब जन्म कुंडली में मांगलिक योग बनता है। इसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा स्थित हो तब विवाह के बाद समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में अगर सातवें भाव में बृहस्पति ग्रह स्थिति हो तब भी विवाह में विलंब होता है। साथ ही जन्म कुंडली में सातवें भाव में स्थित शुक्र के कारण भी वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मंगल ग्रह का सप्तम भाव से संबंध विवाह में देरी या बाधा डालता है। सप्तम भाव पर शनि, राहु, केतु या मंगल की स्थितियां विपरीत होने पर शनि का सप्तम भाव या उसके स्वामी से जुड़ाव विलंब का कारण बनता है। शुक्र और बृहस्पति का कमजोर होना विवाह में देरी का कारण बनता है। सप्तम भाव का कमजोर होना या उसमें अशुभ ग्रहों का होना भी देरी करवाता है।
1: अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होगा तो विवाह निश्चित बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छी कन्या मिलेगी उसको, उसका जीवन साथी सदैव उसको सहयोग करने वाला होगा। परंतु इसमें एक ये है कि शुक्र अच्छा पड़े और बृहस्पति की दृष्टि भी उस पर पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। परंतु किसी भी व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए शुक्रवार के दिन उपवास रखना, शुक्रवार के दिन स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना या सफेद वस्त्र पहनना, खुशबू लगाना और देवी के दर्शन करके सफेद मिठाई या सफेद वस्तुएं देवी के मंदिर में चढ़ाने से शुक्र ठीक होने लगता है और उस व्यक्ति को लाभ होता है।
0: सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार को शुभ मुहूर्त और कुंडली मिलान के साथ करने की परंपरा रही है। माना जाता है वर और वधु के 36 में से ज्यादातर गुण मिल रहे हों तब विवाह के लिए परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं। लेकिन कुंडली के अशुभ योग शहनाई बजने में विघ्न डाल सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कुंडली के तीसरे और चौथे योग के बारे में जिनके होने से हो सकता है विवाह में विलंब। साथ ही जानेंगे इन योगों से बचने की ज्योतिषीय कार। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि महिलाओं को बलवान बृहस्पति से वैवाहिक सुख मिलता है तो वहीं शुक्र के कारण प्रेम और सौंदर्य कायम रहता है, तो वहीं पुरुषों में मजबूत शुक्र होने से विवाह में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। तो चलिए आपको विवाह में विलंब का कारण माने जा रहे तीसरे और चौथे योग के बारे में बताते हैं, साथ ही जानते हैं इसका ज्योतिषीय समाधान।

0: ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसका विवाह कब होगा, ये व्यक्ति की कुंडली की चाल पर निर्भर करता है। विवाह में देरी के कई ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। विवाह में देरी का एक कारण ये भी माना जाता है कि लग्न या सप्तम भाव में शनि की खराब स्थिति से विवाह में देरी होती है। साथ ही मंगल दोष के कारण भी विवाह में रुकावटें आती हैं। अगर किसी तरह विवाह हो भी जाता है तो विवाह हो जाने पर भी जीवन साथी के साथ अनबन बनी रह सकती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सप्तम भाव या शुक्र पर राहु केतु का प्रभाव होने पर भी विवाह नहीं हो पाता है, या फिर विवाह हो जाने पर भी सही जीवन साथी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी विवाह ना होने के कई कारण हो सकते हैं। ये तो ज्योतिष के जानकार ही बता सकते हैं कि विवाह ना हो पाने का सही कारण कौन सा है। आज हम आपको बता रहे हैं विवाह में विलंब के चार योग के बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं विवाह में विलंब का तीसरा योग कौन सा है और इस बाधा का समाधान कौन से देव और रत्नों से हो सकता है। विवाह में विलंब का तीसरा योग है शुक्र चंद्र की युति। ये वैसे तो ज्योतिष का बड़ा राजयोग है, परंतु विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस योग के होने पर विवाह हो पाना काफी कठिन होता है। अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं रहता। इस योग के होने पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करें, साथ ही सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करें।
1: जब दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह अपने घर में शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, नाम बड़ा सुंदर लक्ष्मी योग कह बैठते हैं इसको, परंतु चंद्रमा पितृ दोष कारक है, स्त्री माता के समान अर्थात आयु में बड़ी महिला के समान व्यवहार करने लगती है या जीवन में आती ही महिला बड़ी आयु की है। ऐसे में अनुभव हमारा ये है कि व्यक्ति को पितृ दोष लग जाता है और स्त्री का दोष लग जाता है, जिस कारण से विवाह में या तो होता ही नहीं, होता है तो विलंब से या बड़ी आयु की महिला से होता है। सेवा करने से कभी भी उनका अपमान ना करें, ऐसे व्यक्ति को फिर सुंदर संयोग बनने लगता है, उनके विवाह में उत्तम उस समय आने लगता है।
0: ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि कुंडली में कमजोर शुक्र की स्थिति भी विवाह नहीं होने देती, क्योंकि बलवान शुक्र प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का कारक माना जाता है। इसकी कमी से वर और वधु का विवाह नहीं हो पाता। साथ ही माना जाता है कि सप्तम भाव में चंद्रमा पर सूर्य या मंगल का प्रभाव भी विवाह में अड़चन पैदा करता है। ये तो हमने आपको ज्योतिष में बताए गए वो व्यवधान बताए हैं जो विवाह में देरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विवाह में विलंब का चौथा योग कौन सा है और किस देव की उपासना में इसका समाधान छिपा है। विवाह में विलंब की चौथी स्थिति है शुक्र की अशुभ स्थिति। शुक्र विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका अशुभ होना विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। नवांश में शुक्र की कमजोर स्थिति विवाह के लिए सबसे अशुभ है। यह विवाह और वैवाहिक जीवन पर खराब असर डाल देता है। इस स्थिति के होने पर माता लक्ष्मी की उपासना करें, सलाह लेकर एक ओपल धारण करें।
1: शुक्र सबसे अधिक पीड़ित होता है मंगल से, शनि से, शनि की दृष्टि पड़ने, शनि के साथ बैठने से नहीं, शनि की दृष्टि पड़ने से, या उसके ऊपर मंगल और शनि के अतिरिक्त सूर्य का उसका प्रभाव आ जाए, युति में आ जाए या संयोग हो जाए उनका दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में हमेशा अड़चन आती है या वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बना रहता है या धर्म पत्नी लगातार बीमार बनी रहती है और स्त्री के केस में उसका पुरुष बीमार बना रहता है लगातार।
0: हम सभी अपने घरों में विवाह योग्य हो चुके लड़के या लड़कियों के लिए सुयोग्य वर या वधु की तलाश में रहते हैं। सही आयु में वर और वधु का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कई बार करियर में सभी योग्यताओं के बावजूद कुंडली की दशाएं विवाह में देरी करवाती हैं। तो आपने अभी तक जाना कैसे हम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए महाप्रयोग करके अपने घर में शहनाइयां बजवा सकते हैं।
2: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
2: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
2: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। DRDO को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 26/11 के रियल हीरोज। नर्सिंग स्टाफ को किया सम्मानित, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाई हवाई करतब। श्रीनगर में डल झील के शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा आकर्षित।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। कहते हैं कि आग सबको जला देती है, और जब आग सबको जलाती है तो उसके बाद जो बचता है वो केवल सच बचता है, और वो होता है राख। आज हमारे साथ वो टीम मौजूद है जो एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सीरीज लेकर आई है जिसका नाम है राख। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अली हमारे साथ है। अली, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही साथ आपको हम इस किरदार में, एसआई जयप्रकाश के किरदार में देखने के लिए काफी ज्यादा हम उत्साहित भी हैं। हम देखना चाहेंगे क्योंकि ऐसा किरदार आपको देखा नहीं है हमने पहले प्ले करते हुए। प्रोसित हमारे साथ हैं जो कि क्रिएटर्स में से, आपको बता दें 3 क्रिएटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर्स राइटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोसित हैं, संदीप हैं, अनुषा है हमारे साथ, और इन सब से हम बात करेंगे क्योंकि ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है सभी की। मुझे जहां तक पता चला है, संदीप और अनुषा, विशेष करके आप लोगों से जानना चाहूंगी, लगभग 3 से 4 साल तक आप लोगों ने इस प्लॉट, इस कहानी को लेकर के काफी समय भी लगाया, काफी इन्वेस्टिगेट किया, काफी सोचा समझा, और तब जाकर ये कहानी आप दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। कितना मुश्किल था, या फिर इंतजार इतना लंबा क्यों, क्या ढूंढ रहे थे संदीप?
1: ढूंढ तो हम कहानी ही रहे थे कि इन लोगों की कहानी जो है, हमें मालूम है लोग कौन है, उन लोगों की कहानी कैसे बोली जाए, उन लोगों की कहानी उस वक्त में कैसे बोली जाए, उसमें वक्त लगा। और वो कैसे, उन किरदारों को कैसे ढूंढा जाए इस दुनिया में, उस वर्ल्ड को कैसे बनाया जाए, दुनिया में लोगों को कैसे बनाया जाए, उसमें टाइम लगा। एंड प्लस ऑल्सो स्ट्रक्चरिंग ऑफ द, लाइक यू नो, द शो, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। सो हम लोग उसमें लगे।
2: मतलब एक सीरीज का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही वास्ट वर्ल्ड है, और उसको क्रिएट करने में तो टाइम लगता ही है, बिकॉज आप हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी, लाइफ सब इमेजिन करते हो, उसी से मोटिवेशंस आते हैं कि वो क्या करेंगे इस स्टोरी में जाके। तो स्टोरी बिल्ड करने में टाइम तो लगता है, एंड वी वॉन्टेड टू टेक दिस टाइम। हम रस लेके कहानी बताना चाह रहे थे, तो हमें भी अच्छा लगा कि
0: वैसे भी आप दोनों ऑथर्स हैं, वही कहानीकार जो होते हैं उनको थोड़ा वक्त लगता है सोच कर, विचार कर, उसके बाद करते हैं। ये तो हम बाद में पूछेंगे कि भाई कहाँ बैठ के आप लोगों को ये थॉट आया और आपने इसकी शुरुआत की। लेकिन प्रसिद्ध, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये बताइए कि खास करके हम राख के बारे में जितना अभी तक अवेलेबल है वेब पर, जितना हमने पढ़ा है और जाना है, 1978 में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था, 2 बच्चों की किडनैपिंग होती है, भाई बहन, और उसके बाद हालांकि रंगा बिल्ला केस उससे जुड़ा हुआ है वो, तो क्या मैं अगर सीधे तौर पे पूछूं कि उस केस को ही इसमें दिखाया गया है या फिर उससे ये सीरीज अलग है?
3: उससे ऑफ कोर्स कोई भी क्राइम शो अगर आप लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो सच्चाई होता ही है उसमें। तो एक इंस्पिरेशन है ये कहानी, जो कि जो हमारे, हमने जो भी पढ़ा है, जो भी ऑल द रिसर्च मटेरियल्स जो भी है, वो इंस्पिरेशन है। पर वहाँ से लेके आप थोड़ा आगे जाते हैं कहानी को लेके, आप इनके किरदारों के कहानियों में घुसते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नहीं है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें और भी चीज़ों से इंस्पायर्ड है। तो देर आर मेनी इंस्पिरेशंस फॉर दिस स्टोरी, नॉट वन।
0: एसआई जयप्रकाश 78 में नहीं है
3: बिल्कुल,
0: लेकिन यहाँ है। तो जयप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी मैं, हाँ मतलब ये लाइक प्रोसेस वाज सेइंग, ये इंस्पायर्ड है और काफ़ी अलग अलग लोगों को लेके कुछ किरदार बनाए गए हैं, बिकॉज ये कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जहाँ आपको ड्रामेटाइज करना पड़ता है, लेकिन ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड है, यू नो, एंड फॉर मेनी अदर रीजंस आई एम श्योर, यू नो, वी कांट रियली गो डीप इनटू दैट एंड क्लेम इट, क्योंकि उसके काफ़ी अलग अलग आई एम श्योर वर्जन हैं। बट हाँ, वर्दी पहन के तो एक अलग ही फीलिंग थी, एक अलग कैरेक्टर निभाया मैंने।
0: अली, आपने ना कई कैरेक्टर्स, जो लेयर्ड कैरेक्टर्स हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, आपने लेयर्ड कैरेक्टर्स बहुत निभाए हैं, मिर्ज़ापुर से लेकर तमाम तरह, फुकरे में आपको देखा हमने, इंटरनेशनली आपने कई काम किया है, लेकिन खास करके अगर एसआई जयप्रकाश की हम बात करें, इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए क्या महसूस आपको हुआ, और ये कितना डिफरेंट है आपके बाकी कैरेक्टर्स से?
4: डिफरेंट तो है, मतलब मैंने ऐसा कभी प्ले नहीं किया है। वर्दी में आप जब किसी एक्टर को देखते हैं जिसने, मैंने कभी, ये पहली दफ़ा मैं एक पुलिस का रोल कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी विजुअली एक अलग वो दिखता है, लेकिन ये एक आम आदमी की कहानी है, वर्दी में है लेकिन एक बहुत ही आम आदमी है। और
0: अभी भी पढ़ाई कर रहा है.
4: हाँ,
0: पिताजी परेशान है लेकिन पढ़ाई चालू है.
4: वो करनी पड़ती है आपको, यू नो, हर चीज के लिए एक उसकी एक जद्दोजहद है, उसी में एक फाइट है, हर मुकाम पे एक फाइट है. और वाइल फाइटिंग दोस फाइट्स ही हैज टू यू नो सॉल्व दिस, बिकम पार्ट ऑफ दिस बिगर फाइट.
0: संदीप, ये जो कहानी है ना, जितना हम समझते हैं और एज अ जर्नलिस्ट, चूंकि पूरे केस को हम समझते हैं, 78 का जो केस था, रेफरेंस आप लोगों ने शायद वहां से लिया, लेकिन कहानी फिर आप लोगों ने बुनी है, अलग कहानी बुनी है. तो इसमें जो कैरेक्टर्स आपने डाले हैं वो लोगों को कितने रियल लगेंगे, या लोग उसको कितना रिलेट कर पाएंगे उससे, उन कैरेक्टर्स से?
1: सी, आइडेंटिफाई करना उनको आसान रहेगा बिकॉज रियलिटी पे बेस्ड है ऑफकोर्स, बट ये रियल नहीं है. हमें जो क्रिमिनल्स हैं, जो कॉप्स हैं, जो पेरेंट्स, हमें क्लिनिकल लाइफ बारे में कुछ भी हमें नहीं पता है. सो वी हैव ऑल इमेजिन एवरीथिंग. सो एवरीथिंग इज एन इमेजिन पर्सन. एवरी पर्सन इज इमेजिन देयर वर्ल्ड, देयर व्हाट दे लिव इन, वेयर दे लिव इन, हाउ द क्राइम इज कमिटेड, एवरीथिंग इज इमेजिन, यू नो. एंड रिलेटेबिलिटी, आई थिंक सबसे बड़ा जो पीपल वुड बी एबल टू रिलेट वुड बी जेपी, बिकॉज जेपी एंड द पेरेंट्स, बिकॉज दे आर द इमोशनल एंकरिंग of the show, you know, that is where the emotional anchoring of the show comes along. What they feel, the sense of loss for him also, sense of loss for parents also, that they feel. This is where, like, you know, we want people to feel that. And with the villains, we also want to people to see them, ki how evil is born, how evil can manipulate a world, how they can change a world, like, you know, very perfectly perfect world, how they can change
0: it. शुरू से कोई evil नहीं होता है, मतलब हम कहते हैं ना कि कोई पैदाइशी इविल नहीं होता है, वो कैसे बनता है, तो क्या वो भी है या उसके बाद की कहानी है?
2: एक्चुअली दोनों चीजें हैं, क्योंकि हमने काफी क्रिमिनल माइंड्स पे रिसर्च किया है और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो ऑलमोस्ट अनमोटिवेटेड ही हैं क्राइम में, मतलब. एंड ऑफ कोर्स हम क्लेम नहीं कर सकते वो पैदाइशी इविल है, बट बहुत यंग एज से उनमें वो क्रिमिनलिटी के स्ट्रीक्स और टेंडेंसी है. तो हम अलग अलग तरीके के क्रिमिनल माइंड्स एक्सप्लोर करना चाह रहे थे इसमें.
0: प्रसिद्ध, आप ऑलरेडी आप परी कर चुके हैं और भी आप इस तरह की सीरीज कर चुके हैं, जो आपकी लास्ट जो कि थे पाताल लोक 2 सीजन 1 आपने किया था. तो उसके बाद जहां तक राख जब आपके सामने आई थी, मैंने सुना कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे फिर से इन्वेस्टिगेटिव समथिंग, कुछ इस तरह का ड्रामा सीरीज करने का, बट आखिर वो कौन सी चीज थी उस प्लॉट में, क्या प्लॉट इतना दमदार था, कैरेक्टर्स इतने दमदार थे कि आप उसको प्ले अप कर सकते थे, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको खींचा और आपको लगा कि नहीं मुझे ये तो करना ही करना है?
3: I think always. I think the storytelling part of it, क्योंकि ये जो ये linear narrative तो है नहीं, ये कहानी दोनों अलग timeline से जाता है और वो जो timeline का जो खेल है वो मुझे काफी पसंद है. पाताल लोक भी मैंने एक episode में मैंने वो try किया था, episode 3 में. तो वो करने के बाद वंस यू गेट सक्सेसफुल तो आपको और भी उसको आगे, वो एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जाने का एक वो यू नीड, यू वांट टू डू दैट. एंड देन इवेंचुअली जब ये स्क्रिप्ट आया एंड आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऐसे ही लिखा था, एंड आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई थॉट दैट यू नो ये एक नई चीज़ है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्योंकि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट टिल अबाउट एपिसोड 6 ये नॉन लीनियर है. तो एक लंबा समय तक ये नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग था, वो जो एक एस्पेक्ट है.
0: अली, एक बड़ी वजह रही. अली, ये बताइए कि आप आपके ख्यालात इस पर क्या हैं कि और भी काम है जमाने में खाली?
4: नहीं है, नहीं होने चाहिए, उसी पे पूरा पूरा खेल उसी का चल रहा है.
1: हमारे सेट में तो अली का कोई भी ऐसा कुछ भी ख्यालात ऐसे नहीं, वो कोई गम नहीं था खाने के अलावा, सिर्फ खाना ही.
0: तो क्या ये रियल लाइफ में भी फैज साहब से इंस्पायर्ड है या फिर क्या है?
4: Aren't we all in real life? लेकिन नहीं, यहाँ खाने के शौकीन है, लखनऊ में बड़े हुए हैं, दिल्ली में तो यहाँ आके.
0: तो ये बताइए, अभी तो आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में ऐसा कौन सी चीज है दिल्ली की जो आप विदाउट मिस आप खाना चाहते हैं बॉम्बे जाने से पहले?
4: मतलब हजारों बहुत चीजें, चांदनी चौक में कहीं भी किसी कहीं भी छोड़ दीजिए.
0: फिर तो ये डायलॉग बिल्कुल सूट नहीं करता आप पे कि और भी काम है जमाने में खाने के.
4: मेरे लिए खाना सब चीज है. साथ में बैठ के अगर अपने दोस्तों यारों के साथ खाना खा लें और साथ साथ कुछ अच्छा बना लें, अच्छा काम कर लें, आई थिंक
2: दैट वाज द टफेस्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर अली कि खाना ना खाए, क्योंकि जेपी खाना नहीं खाता है पूरे सीरीज में.
0: अच्छा,
1: पूरे सीरीज में कहीं नहीं, अगर आपने देखा है पूरे सीरीज
0: हमेशा वो डब्बा खुलता है खाने का एंड देन ही हैज टू गो.
1: दैट इज आल्सो हिज थिंग कि ही इज नेवर एबल टू ईट. दैट इज,
0: तो उन्होंने सेट्स पे पूरा कर लिया होगा पहले पेट पूजा एंड देन फिर काम, राइट?
4: या इट्स इंपॉर्टेंट.
0: नहीं तो मैं तो आसपास जितने लोगों को देख रही हूँ, यू ऑल हैव अ कोलकाता बैकग्राउंड और समथिंग, राइट? तो माछेर झोल सेट पे आता होगा? नहीं आता था,
2: सब कुछ आता था,
4: कहीं से तो कुछ तो आया,
1: कुछ तो आया था बीच में. हाँ,
4: ये लोग थे एक्सपेरिमेंटल, जाके पूरी रेकी करते थे.
0: अच्छा,
4: कुछ आइटम आता था, फिर टेस्टिंग होती थी, फिर हम लोग उसको बल्क में मंगवा लेते थे.
1: मैं आपको प्रोसेस बता होता क्या था कि हम लोग लेकिन हम लोग ने भी कपल एपिसोड डायरेक्ट करे हैं. सो होता क्या था कि एक लोकेशन पे है प्रोसेस के सीन है और हमारे सीन है. तो हमारे सीन कभी जल्दी हो गए हैं, प्रोसेस अगर तुम कहे अभी तुम काम करो हम घूम के आते हैं. सो देन वी यूज्ड टू टेक ऑन लाइक यू नो चांदनी चौक में रिक्शा लेके निकल के घूमा फिरा एंड आते हुए लेके आए लोगों
0: को.
3: मेरे लिए तो काफी इजी हो गया था कि कभी अली खाना लेके आ रहे हैं, कभी ये लोग खाना लेके आ रहे हैं, तो मैं तो बड़े मजे में मैंने शूट किया.
0: लेकिन कमिंग टू द सीरियस नोट, अली ये बताइए कि इस रोल को, क्योंकि अगर जब आप पढ़ते भी है ना, जब आप पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स उसके बाद आपने एक्ट किया होगा, जब मैं इससे गो थ्रू कर रही थी चीजों को, मुझे ये लगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी को प्ले करना और खास करके जो इसमें दिखाया गया है जिस तरह से आप एसआई हैं, साथ ही साथ एक इंसान हैं, आप जा रहे हैं, आपको पता चलता है कि किडनैपिंग हो गई है, पेरेंट्स के अपने इमोशंस हैं, आप एज अ ह्यूमन अपने इमोशंस हैं, वहां पर अपने इमोशंस को भी हावी नहीं होने देना, लेकिन उनके इमोशंस भी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ये कैमरे पर प्ले करना कितना मुश्किल होता है इस तरह का किरदार?
4: मुझे लगता है हम आम जिंदगी में लोग ऐसे ही प्ले करते हैं, वी आर व्हाट वी हाइड एसेंशियली. हर रोज आदमी निकलता है अपने काम पे और वो कितनी चीजें छुपाता है, तो जो हम प्रोजेक्ट करते हैं वो कुछ और ही होता है. और वर्दी हो गई तो फिर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स 10 times more, क्योंकि आप अपने वजूद के लिए वहाँ नहीं हैं, आप किसी और की प्रॉब्लम्स हैं, किसी और का केस चल रहा है और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक स्टेटस है और आपका एक लक्ष्य है, वो आपको पूरा करना है किसी भी हाल में. तो उस वक्त ऑफकोर्स एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो यू फील दोज थिंग्स, एज एन एक्टर यू फील दोज थिंग्स, लेकिन maybe that was helping.
0: क्या इस character के लिए आपको अलग से अपने आप को prepare करना पड़ा mentally या फिर?
4: जी मेरे ख्याल से तो वो जरूरी है, अलग से ही करना पड़ेगा हर character के लिए, लेकिन इसमें हाँ मैंने इन लोग की बहुत help ली. I think वो जो हमारी initial readings थी, हम साथ में बैठे थे office में, वहाँ हमने really हर परत को उसको मतलब समझा, चीज़ें निकाल निकाल के उसकी tonality कैसी होगी, उसका लहजा कैसा होगा, उसके बात करने का ढंग, एक पहले एक और दिशा में जा रहे थे, फिर हमने सोचा नहीं इसको और थोड़ा सा ह्यूमनाइज और थोड़ा मतलब जो क्विंटेसेंशियल कॉप पुलिस हमने देखा है वो नहीं, वो ये नहीं है यू नो कि वो
0: तो ये क्या है?
4: धाकड़ बिल्कुल निकल के फट के निकले और
0: ये अपने इमोशंस पे दिखाएगा.
4: हाँ यू नो और अपनी इंस्टिंक्ट and I think that is something that really plays he plays with. His instincts are very strong and he keeps going with it, fighting for that.
0: Raag ka zyadatar hissa kahan shoot hua?
2: Delhi mein
1: bahut sara Delhi mein shoot hua hai,
4: on locations.
1: So we were very conscious from the beginning actually about ki hum log ko लोकेशन पे ही शूट करना है, तो नन ऑफ देयर इज नॉट अ सिंगल सेट ऑन द इन द शो. सारे लोकेशन प्रोसेस हम लोगों ने, प्रोडक्शन डिजाइनर हम लोगों ने लोकेशन एक गली गली छानी है, दिल्ली की, आगरा की, हापुड़ की,
3: मुंबई
1: में भी
3: सेक्शन है. हम लोगों ने कोशिश किया जितना हो सके एक्चुअल लोकेशन
0: पे अलग से सेट ना बनाना
3: पड़े,
0: मतलब ज्यादा से ज्यादा रियल. आप थ्रू आउट मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे?
4: नहीं, आई एम वेरी हैप्पी.
0: भूख लगी है
4: अभी ठूस के आए इसलिए खुश हूं मैं. नहीं बट या वी वुड आई थिंक वी ऑल वांट पीपल टू वॉच इट फॉर एज मेनी रीजंस एंड या वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड.
0: पता नहीं आपके साथ खाने की चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं. उसमें एक और जब जहां तक मैंने देखा, मैं देख पाई, उसमें ये भी था कि भाई अगर पेट भरा ना हो तो इंसान
2: जुर्म के रास्ते पे चल
1: पड़ता
0: है, ऐसा होता है.
1: अभी तो मौका नहीं है, अभी तो मौका नहीं है, अभी तो
3: इसीलिए हम लोग
0: आसपास नाइफ नहीं होना चाहिए, मतलब इनका पेट भरा अगर नहीं है तो फिर चुन के रास्ते पे जा सकते हैं।
3: ये हम लोग सब यू नो
2: कभी भूखे नहीं रहते,
3: शौकीन है।
1: आपको क्या लगता है हम रिक्शे में जो जाके चांदनी चौक आगरा में घूम के आते थे खाने लेके आते क्यों आते थे?
0: अली के लिए। लेकिन अभी तक आपने अली अपना फेवरेट फूड नहीं बताया दिल्ली का, दिल्ली में होके आपको बताना चाहिए बटर चिकन।
4: या पंडारा रोड पे वही खाते थे, मतलब बहुत खाया है, नॉट लाइक दैट्स नाउ माय फेवरेट एंड गो टू फूड एनीमोर। कबाब वबाब ज्यादा चलता है कभी कभी। अच्छा। या फिर घर का ज्यादा खाता हूँ, बाहर खाना थोड़ा कम हो गया।
0: अच्छा, और घर में आप बनाना क्या पसंद करते हैं?
4: बनाता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन खाता हूँ आजकल सलाद पत्ते खा रहा हूँ।
0: जैसे कि हमारे समाज में कई परतें होती हैं जिसको अक्सर हम शायद आप मनोविज्ञान से जोड़ लें, आप विज्ञान से जोड़ लें, या फिर हमारे जो रिश्तों का ताना बाना है, जो बनावट है, उससे आप जोड़ लें। और भी कई ऐसी परतें होती हैं जो अक्सर समाज में हम देखना नहीं चाहते, उन परतों को खोलने का काम शायद राख करे। अली,
4: आपकी जबान बहुत साफ है, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा
0: हूं। शुक्रिया।
4: शुरुआत से नहीं, आइए देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है टू ट्राई एंड फाइंड व्हाई समबडी किल्ड समबडी, और या इसमें और भी बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई थिंक
0: अली को एक बिल्कुल अलग अवतार में लोग देखेंगे, नेवर बिफोर, नेवर सीन बिफोर।
4: या
0: बिल्कुल, चलिए संदीप,
1: वॉच इट फॉर अली इन अ न्यू अवतार, एंड आल्सो लाइक यू नो फॉर द वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड, इट्स समथिंग।
2: Yeah, I would say that I think we have a great cast, to be honest, and we hope we can entertain you, but not in the traditional sense. So please come for that.
0: नहीं नहीं बिल्कुल, लोग आएंगे, जरूर देखेंगे। अली ने और तमाम बाकी जो दूसरे एक्टर्स हैं, सोनाली बेंद्रे, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और खास करके इन तीन क्रिएटर्स ने, प्रोसेस संदीप और अनुषा, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज है राख, ये आपको जरूर पसंद आएगी, तो जरूर आप देखें, बिंज वॉच भी करें, मजा आएगा। क्यों?
1: बिल्कुल,
0: बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच,
2: थैंक्स
0: अ लॉट फॉर टॉकिंग।
2: थैंक यू।
5: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
0: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Today, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: सरकार के नए आर्मी चीफ के नाम का किया गया ऐलान, जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार।

0: दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक के एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया गया सम्मानित, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल, आसमान में सेना ने दिखाई हवाई करतब। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा है आकर्षित।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस समारोह के लिए तैयारियां हुई पूरी, मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। 15 जून से शुरू होने वाले मेले के लिए 1500 से ज्यादा जवान होंगे तैनात, कुमाऊं रेंज की आईजी ने इंतजामों का लिया जायजा, 3 सेक्टर में बांटा गया पूरा मेला क्षेत्र। कैंची धाम स्थापना दिवस पर देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं की नैनीताल पहुंचने की संभावना, श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए तैयारियों में जुटाए प्रशासन। स्थापना दिवस पर कैंची धाम में पुलिस, यातायात, खुफिया और आपदा प्रबंधन की टीमें रहेंगी तैनात, संवेदनशील जगहों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। बाबा नीम करौली ने 15 जून को ही ली थी आश्रम की स्थापना की थी, स्थापना दिवस पर बाबा की विशेष पूजा और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे महाप्रसाद। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर तिरुचेंदूर की दानपेटी में 4,20,00,000 की रिकॉर्ड धनराशि प्राप्त हुई, कुछ समय पहले भी 4 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ था संग्रह। इस नकद राशि के अलावा भक्तों ने भारी मात्रा में सोना चांदी भी चढ़ाया, 1 किलो 62 ग्राम सोना और 26 किलो चांदी शामिल। मंदिर की दान पेटी से देश विदेश के भक्तों द्वारा अर्पित किए गए 963 विदेशी नोट, लगातार बढ़ रही है विदेशी भक्तों की आस्था। दान करने वाले भक्तों ने भगवान को चांदी का पालना किया अर्पित, सैकड़ों वॉलंटियर महिलाओं ने नोटों की गिनती की। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भक्तों की सुविधाओं के लिए नया प्रशासनिक भवन बनाया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन, पशुओं के लिए तैयार किए गए करीब 15 क्विंटल लड्डू। कार्यक्रम में योगदान देकर पशुओं की सेवा के जरिए वरुण देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं लोग, पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किए गए पौष्टिक लड्डू। इस अनूठे कार्यक्रम में 250 से 300 महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल, 1200 किलो आटा, 300 किलो गुड़, 300 किलो तेल से बनाए गए हैं लड्डू। लगातार 23वें साल किया जा रहा है इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम के जरिए बरसात से पहले पशु सेवा माध्यम से वरुण देव को प्रसन्न करने की कोशिश। जामनगर शहर के अलग अलग इलाकों के साथ आसपास के गांवों में गायों, श्वानों और दूसरे पशुओं को खिलाए जाएंगे लड्डू। उज्जैन में शिव चतुर्दशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार विधि विधान से की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्तों यहां पर दर्शन जारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम, मॉल रोड समेत प्रमुख मार्गों पर ई ऑटो का सफल ट्रायल किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की मौजूदगी में ई ऑटो ने मसूरी की कठिन चढ़ाई वाले रास्तों पर संतोषजनक प्रदर्शन किया, प्रशासन ने शुरुआती परीक्षण को सफल और सुरक्षित माना। तीर्थयात्रियों को सामान सहित ले जाने में सक्षम ई ऑटो जल्द बन सकते हैं मसूरी की नई पहचान, प्रशासन साइकिल रिक्शा चालकों को भी नई व्यवस्था में शामिल करने की कर रहा तैयारी। भारतीय सैन्य अकेडमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, 9 महिला सैन्य अफसरों के साथ भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी। महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक भक्त ने श्री महालक्ष्मी अंबाबाई देवी मंदिर को दी अनोखी भेंट, दान किया 1.5 किलो सोने का कलश। मंदिर को दान किए गए सोने के कलश की कीमत करीब 2.5 किलो। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के परिवार ने किया है अर्पण। मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया है सोने का कलश। क्रेन की मदद से करीब 12 घंटे की मेहनत के बाद स्थापित हुआ है ये कलश। प्रयागराज के झूंसी में 1.25 लाख तंदूल शिवलिंग महायज्ञ का आयोजन, तो वहीं श्रद्धालुओं ने मिट्टी और चावल से शिवलिंग बनाकर किया रुद्राभिषेक। तपोवन आश्रम में आचार्य हरि कृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में हुआ महायज्ञ। महायज्ञ में शामिल श्रद्धालुओं ने देश की शांति, प्रगति और राष्ट्र एकता के लिए प्रार्थना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नियोते पर आज फ्रांस रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे। कल पीएम मोदी और मैक्रों की अगुवाई में भारत और फ्रांस के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। बैठक में दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी की समीक्षा की भी करेंगे दोनों नेता। नीस में कल भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और मैक्रों। समिट में भारत, फ्रांस समेत दुनिया भर के इनोवेशन स्टार्टअप होंगे शामिल। नीस शहर में 14 से 16 जून तक चलेगा भारत इनोवेट्स 2026 समिट। नीस शहर में चलने वाले ट्राम पर लगाए गए भारत इनोवेट्स 2026 के संदेश। भारत इनोवेट्स 2026 में 120 भारतीय इनोवेटर, 500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ ग्लोबल सीईओ और इंडस्ट्री लीडर होंगे शामिल। फ्रांस स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 14 से 16 जून तक पीएम के स्लोवाकिया के दौरे पर दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों पर होगी बात। स्लोवाकिया के दौरे के बाद फिर फ्रांस पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के एवियन में 16 से 17 जून को G7 समिट में होंगे शामिल। हैदराबाद के डूंडीगल वायुसेना अकेडमी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने वायुसेना अकेडमी में अफसरों और कैडेट्स की मुलाकात। रक्षा मंत्री ने कई अफसरों को सम्मानित भी किया।

0: रक्षा मंत्री आज अकेडमी के 217वें कोर्स के संयुक्त दीक्षांत परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लाइट कैडेट्स को कमीशन भी प्रदान करेंगे। देश को मिली 3011 नए अग्निवीरों की शक्ति। ओडिशा के खोरदा में हुई पासिंग आउट परेड, जोश में भरे अग्निवीरों के कदम ताल से गूंजा INS चिलिका। पासिंग आउट परेड में शामिल अग्निवीरों में 116 महिला अग्निवीर भी शामिल। पासिंग आउट परेड से कोस्ट गार्ड को मिले 265 नाविक। भारतीय सेना ने लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती गांवों के स्कूली बच्चों को बटालिक में सिंधु व्यू पॉइंट का कराया दौरा। तो वहीं कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजन। इस दौरे के दौरान बच्चों को सीमावर्ती इलाकों में जीवन, सैनिकों की चुनौतियां और सशस्त्र बलों के साहस बलिदान को करीब से जानने समझने का मौका दिया गया। बेंगलुरु में 13 से 14 जून को राइज कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। 100 से ज्यादा स्टार्टअप अपनी तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर लद्दाख के टंगसे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सेना बाल श्रम के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। टांगसे के सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों और शिक्षा पर दिया गया जोर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में अब आसानी से और बेहद कम समय में पहुंचेगा डाक पार्सल। मंडी में ड्रोन से डाक पहुंचाने की हुई शुरुआत। ड्रोन के जरिए मंडी में द्रंग क्षेत्र के रेडहथार ब्रांच भेजी गई पहली डाक। 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित ब्रांच में सिर्फ 6 मिनट में पहुंचा पार्सल। झारखंड के हजारीबाग में आम और आम से बने हुए उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। 100 से ज्यादा तरह के आम, किसानों की आमदनी बढ़ाना है मकसद। ओडिशा में सीएम अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन मांझी हुए शामिल। 5 दिवसीय शिमला समर फेस्टिवल का समापन हुआ। समारोह के आखिरी दिन गीत संगीत के साथ स्थानीय कला संस्कृति के दिखे रंग। थिएटर, सिनेमा, रेडियो और टीवी कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी को मिला पद्मश्री सम्मान। डॉक्टर रस्तोगी ने 100 नाटकों में 75 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। ओडिशा के सीमांचल यात्रा को मिलेगी पद्मश्री सम्मान। तो वहीं अनोखी संगीतमय और मुखौटा आधारित लोक नाट्य परंपरा के विकास और संरक्षण में निभाई है अहम भूमिका। इसी महीने शादी के बंधन में बंधेंगे तेज गेंदबाज आकाशदीप। होने वाली पत्नी अक्षता के साथ 24 जून को वाराणसी में शादी करेंगे आकाशदीप। श्रीनगर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई। डल झील के किनारे सैलानियों ने मौसम का आनंद लिया। श्रीनगर में मेहरबान हुआ मौसम। डल झील के आसपास का माहौल भी खुशनुमा नजर आया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में आई गिरावट। मौसम सुहाना होने से खुश हुए सैलानी। सुबह सुबह इंडिया गेट पर दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह मौसम ने करवट ली। 1 घंटे की झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। ठंडी हवाओं और तेज बारिश ने शहर का मौसम बना दिया है सुहाना। उमस और भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम बदलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। पार्कों और सड़कों पर लोगों को बारिश का लुत्फ उठाते आए नजर। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश ने प्रयागराज वासियों को बड़ी राहत दी। कई लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान, बारिश का सिलसिला अगले दो दिनों तक जारी रह सकता है, तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद। लखनऊ और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश, बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक इटावा, आगरा, फिरोजाबाद से लेकर अमरोहा तक तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी से लेकर बरेली तक तेज हवाओं के साथ बारिश। फतेहपुर शेखावटी में तेज आंधी के साथ बारिश, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बही हवा। सीकर शहर में करीब एक घंटे तक बारिश का दौर चला, बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से निजात। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा गिरने के आसार, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा आकर्षित। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटक कर रहे हैं डल झील का रुख, शिकारा राइड का लुत्फ उठाते पर्यटकों से डल झील में बढ़ गई है रौनक। डीआरडीओ को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण किया, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। जयपुर में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता की सोशल स्पेशल स्क्रीनिंग देखी, इस मौके पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना। बोस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल बनाई गई, इस फुटबॉल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। फुटबॉल की ऊंचाई 47 फीट और वजन 2200 पाउंड 2013 में बने पुराने रिकॉर्ड में बढ़ी है। बोस्टन शहर के लिए गर्व का पल, बोस्टन के लोग इस रिकॉर्ड उपलब्धि से बेहद खुश। पहले सबसे बड़ी फुटबॉल का रिकॉर्ड दोहा के नाम था, यहां 39 फीट ऊंची फुटबॉल बनाई गई। ২০২৬ फीफा वर्ल्ड कप के तहत बोस्टन से में 7 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मैच स्कॉटलैंड और हैती के बीच 13 जून को होगा। जर्मनी के पहले वर्ल्ड कप मैच से पहले कोलोन चिड़ियाघर के हाथी तारक ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की, जर्मनी वाली गेंद को चुना। 4.5 टन वजनी तारक ने गेंद को इतना दबाया कि वे वहां धमाके के साथ फट गई, इसे जर्मनी की मजबूत जीत का संकेत माना जा रहा है। हाथी की देखभाल करने वाली इंग्रिड वॉलनर ने कहा कि तारक का फैसला बिल्कुल साफ था, उनके मुताबिक जर्मनी जीत के साथ शुरुआत कर सकता है। डॉर्टमुंड के ओरंगुटान वॉल्टर ने भी मैच का नतीजा बताने की कोशिश की, हालांकि उसका चुनाव तारक जितना स्पष्ट नहीं रहा। अब सभी की नजर जर्मनी और कुराकाओ के मुकाबले पर, जर्मन फैंस जानवरों की भविष्यवाणी के सच होने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सिट बैक एंड रिलैक्स विद द स्मूथेस्ट हिट्स विद कॉफी हाउस स्टेशन ऑन ट्यून इन, अ केयरफुली ब्रूड मिक्स ऑफ सॉफ्ट अकूस्टिक ट्रैक्स मेड फॉर स्लो मोमेंट्स एंड क्वाइट फोकस, फीचरिंग आर्टिस्ट लाइक जेम्स बे, नोरा जोन्स एंड डैनियल सीजर, plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर। अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाले दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया सम्मानित, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल, आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा आकर्षित।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।

सुकोई 30 MKI, मैग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवेनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलरी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की ज़रूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run,
6: that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

भारत और रूस के संबंध अब केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संबंध इससे ऊपर उठ गए हैं। दोनों संयुक्त रूप से नए नए हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, फिर चाहे वो T-90 टैंक हो या फिर Su-30 फाइटर जेट्स की बात हो। हाल फिलहाल में इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत ने लाइसेंस के तहत अपने आयन के अपग्रेडेशन का काम भी शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश मिलकर अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। 1960 के दशक से भारत रूस के रक्षा संबंध चले आ रहे हैं। आज भी भारत की सेना में जो हथियार, टैंक, मिसाइलें या फिर लड़ाकू विमान हैं, उनमें से करीब आधे रूस से आए हैं। बीते 6 दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम और मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में मॉडर्न हथियारों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से रूस के साथ वेपन एक्सपोर्ट में कमी आई है। साल 2011 से 2015 में भारत के कुल रक्षा आयात में रूस की साझेदारी 70% थी। साल 2016 से 20 में ये हिस्सेदारी घटकर 51% रह गई। साल 2021 से 2025 के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये घटकर 40% रह गई है। इस गिरावट के बावजूद रूस के कुल वैश्विक हथियार निर्याता का 48% हिस्सा अकेले भारत को जाता है। भारत रूस से आमतौर पर इसलिए हथियार खरीदता है क्योंकि रूस भारत को अत्याधुनिक और बेहद जरूरी हथियार जैसे सबमरीन, मिसाइल बोट 1960 के दशक से ही दे रहा है। वहीं पश्चिमी देश तब इसे भारत को देने के इच्छुक नहीं थे, वो भी तब जब हिंद महासागर दुनिया के जहाजों के लिए एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इतना ही नहीं, साल 1987 में सोवियत संघ ने भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइलों से लैस सबमरीन K-43 को लीज पर भी दिया था। रूस ने भारत को 3 अकुला क्लास पनडुब्बियां लीज पर दी थी। हालांकि लीज पूरी होने के बाद रूस ने इसे वापस ले लिया। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसे रूस ने अपनी पनडुब्बी दी थी। रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस ने भारत को जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ी मदद की। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दी, जिसे अब बड़े पैमाने पर तीनों ही सेनाओं में शामिल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस में जमकर तबाही मचाई। यही नहीं, रूस ने भारत को उन

0: क्षेत्रों में तकनीक देने का ऑफर दिया है जिसे कोई भी देश देने के लिए तैयार नहीं होता। भारत और रूस दोनों मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2 पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके बन जाने के बाद चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल ये सीधे चीन की DF-17 के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्रह्मोस 2 के बाद भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट्स हैं। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी फिलहाल चल रहा है, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द काम शुरू करने वाले हैं। सोचिए जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर उसका हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बन जाए तो क्या होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व निदेशक अतुल राणे ने रूसी एजेंसी RT को एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और रूस दोनों मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं और इसकी नींव रखी जा चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि दोनों अब इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और ये यकीनन न सिर्फ इन दोनों की दोस्ती के लिए एक नया आयाम होगा बल्कि भारत की ताकत में भी इजाफा करने वाला है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ थिंक टैंक का मानना है कि ब्रह्मोस 2 की स्पीड Mach 5 से Mach 8 तक होने वाली है। इसकी रेंज भी करीब 1500 किलोमीटर तक होगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसके वजन को भी घटाकर करीब 1.3 टन रखा जा सकता है ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस से भी दागा जा सके।
1: ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है ये एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 1 का। ब्रह्मोस 1 ने अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया हुआ है। उसकी जो मारक क्षमता थी, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। अब जब ब्रह्मोस 2 है इसमें देखिए एक स्पेशल फीचर डाला गया है, वो एक इसकी जो मैक स्पीड जो है वो 6, 7 और 8 तकरीबन 8 मैक स्पीड पे जा सकते हैं, यानी सुपरसोनिक मिसाइल बनेगा। और इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, वो डीप जो बंकर है जो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर है उसमें वो डीप पेनिट्रेशन कर सकता है और उसको स्ट्राइक कर सकता है। लिहाजा ये एक एडवांस सिस्टम है। तमाम तरीके के देश जो अपना दुश्मन की एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च लैब बनाते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाते हैं, उनको ये टारगेट करने में सक्षम है।
0: भारत के साथ दशकों से रूस दमदार दोस्त बनकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। भारत और रूस की दोस्ती का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत रूस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा। भारत को आजादी मिले 4 महीने ही गुजरे थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त तब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947 रविवार का दिन सोवियत संघ का एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उनका नाम था किरिल नोविको। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट की। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टो ने गाय की रस्सी नेहरू के हाथ में थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई और देश हमारे प्रधानमंत्री को गाय गिफ्ट करे मतलब कि दोस्ती को गाढ़ा करने का एक भी मौका न छोड़ना। बाईस जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। दरअसल रक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर आयरलैंड ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन किया अमेरिका, ब्रिटेन, चिली, वेनेजुएला, फ्रांस जैसे देशों ने, जिसमें आयरलैंड भी शामिल था। ये वो दौर था जब पश्चिमी देश भारत के खिलाफ थे और इसके पीछे सीधे तौर पर मकसद ये था कि कश्मीर को भारत से छीन कर पाकिस्तान को दे दिया जाए। और ऐसे समय में एक देश जो भारत के साथ खड़ा था, जिसने भारत का साथ निभाया, दोस्ती निभाई, वो था रूस। भारत के विकास का आधार रखने में रूस का अहम योगदान माना जाता है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब स्टील लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा, उसने फौरन खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। साल 1971, पूर्वी पाकिस्तान जो इस वक्त बांग्लादेश है, वहां पर लगातार बंगालियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें अमेरिका लगातार दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने ये युद्ध थोपा है। ऐसे में आधे से ज्यादा देश, जिसमें फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, यूए भी था, ये तमाम देश अमेरिका का साथ दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय में भी रूस भारत के साथ ही खड़ा रहा। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिए। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेना न पहुंचे, इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने का आदेश देकर उसे रवाना कर दिया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी थी। उन्होंने अपनी सेना को कहा था कि भारत के बेस पर हमला किया जाए, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा था। अमेरिकी सेना के पास खुली छूट थी कि वो भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में रूस ने एक ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका उसके साथ क्या करने वाला है। भारत ने भी जवाब में कहा कि हमारे वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार हैं। तब रूस ने खतरनाक चाल चली। सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोर्शकॉफ ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने के लिए कहा ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीरें खींच सके। रूस की नौसेना की SSGN यानी क्रूज मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया। हुआ भी वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीरें ली। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है, उसके होश उड़ गए। अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई। अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो रूसी पनडुब्बी उनका करियर डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं चाहता था। मजबूरी में यूएसएस एंटरप्राइज को नए निर्देश दिए गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने दिशा बदली और वो श्रीलंका चला गया। वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाया। भारत ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, जो कि रूस की मदद से तैयार किया गया था। फिर आया साल 1984, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा रूसी शटल से अंतरिक्ष गए और ये वो दौर था जब भारत का कोई पहला विंग कमांडर अंतरिक्ष में यात्रा के लिए गया था। यहां से भी भारत और रूस की दोस्ती और गहरी होती चली गई। भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई, उस वक्त काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही भारत निर्भर था। और अब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का इस्तेमाल कर इस भरोसे को कायम रखा। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात की जाए तो 41% से ज्यादा उपकरण रूसी निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। वर्षों से भारत और रूस के बीच बायर सेलर रिलेशनशिप, ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबादत लिखी गई है। भारत और रूस मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं रूस से अधिग्रहण लाइसेंस की मंजूरी मिलने के बाद देश में ही T-90 टैंक का अपग्रेडेशन हो रहा है।
1: हिंदुस्तान की जो डिफेंस नीति है, पहले तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कंट्री अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है और जिसके जो डिफेंस के प्रोडक्शन आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट है, तो हम उससे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के तहत हमने जर्मनी से पनडुब्बी, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से जी के जो तेजस 2 के इंजन की डील की बातें आगे बढ़ी है। देखिए वो कहां तक मेटलाइज होती है, क्या आगे प्रोग्रेस होता है, ये देखने वाली बात है। हमने अपना जो एक्विजिशन जो डिफेंस एक्विजिशन है वो ओपन रखा है। रशियन इक्विपमेंट भी हम लेते हैं, नेटो के भी इक्विपमेंट लेते हैं, जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जो हमारे पाकिस्तान या चाइना एडवर्सरी को हर लेवल पे चेक करता है और काउंटर करने के लिए तैयार रहता है, और जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना GSQR खुद सेट करते हैं। फिर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में कहां किस कंट्री पे कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोक्योर करते हैं।
0: मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या फिर उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में हुई। मौजूदा दौर में भले ही भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती काफी गहरी हुई हो, रूस से हालांकि भारत काफी कुछ रक्षा संसाधन खरीदता है, सामान खरीदता है, लेकिन अब भारत की डील अमेरिका के साथ भी हो रही है। बावजूद इसके रूस और भारत की दोस्ती अभी भी कायम है, यानी दोनों के रिश्ते अभी भी कायम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस भारत का सच्चा दोस्त है। भारत का विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, कई गाइडेड मिसाइलें, विध्वंसक और नया नया खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के साथ भारत के रक्षा सहयोग को दिखाता है। '91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 साल में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत के साथ अपना साथ कभी नहीं छोड़ा और भारत ने भी रूस से सच्ची दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत रहे। दोनों देशों में सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं बदला। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरी है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
4: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
3: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
5: Williams keeps it. First down. Touchdown.
3: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
8: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
2: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है। वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
2: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। DRDO को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाले दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया सम्मानित। ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा आकर्षित।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: होते हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माई कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture में पली बढ़ी star kid का खुद के बारे में flare up हुई इतनी बड़ी controversy को लेकर इतना mature reaction आपको हैरानी में डाल सकता है। दरअसल बोनी कपूर जैसे बड़े फिल्म निर्माता और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छी अम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी, इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जाती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। I think it makes me feel like maybe like I don't know, she's traveling somewhere and she'll come back.
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था इत्तेफाक से, जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया है क्या लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज़ वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरी थिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwahish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों कि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was, we've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखे तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, देर वॉजेंट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैड पास्ड, वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जानवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जानवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जानवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जानवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जानवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जानवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जानवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में आज आपने जानवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
5: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Want to hear something?

0: something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: Good news today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

0: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को

0: छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान, जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। DRDO को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाली इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल, आसमान में सेना ने दिखाई हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा, होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह, 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
5: बद्रीनाथ 10,70,000 श्रद्धालुओं से अब गुलजार, तो वहीं अब तक दर्शन किए गए, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्त भगवान विष्णु के जय घोष से गूंज रहा पूरा धाम, पुरुषोत्तम मास होने के कारण इस साल मई और जून में भी भक्तों की भारी भीड़। गंगोत्री यमुनोत्री में भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भक्तों के दर्शनों का आंकड़ा, अब तक करीब 11.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 5,88,862 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में 5,61,124 श्रद्धालु कर चुके हैं मां यमुना के दर्शन। पर्वतीय क्षेत्रों में प्री मॉनसून की बौछारों की दस्तक के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं, पल पल बदलते मौसम के बीच भी लगातार धामों की ओर पहुंच रहे हैं यात्री। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन, पशुओं के लिए तैयार किए गए करीब 15 क्विंटल लड्डू। कार्यक्रम में योगदान देकर पशुओं की सेवा के जरिए वरुण देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं लोग, पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किए गए हैं पौष्टिक लड्डू। इस अनूठे कार्यक्रम में 250 से 300 महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल, 1200 किलो आटा, 300 किलो गुड़, 300 किलो तेल से बनाए गए लड्डू। लगातार 23वें साल किया जा रहा इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम के जरिए बरसात से पहले पशु सेवा माध्यम से वरुण देव को प्रसन्न करने की कोशिश। जामनगर शहर के अलग अलग इलाकों के साथ आसपास गांवों में गायों, श्वानों और दूसरे मूंगे पशुओं को खिलाए जाएंगे लड्डू। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में तिरुचेंदूर की दान पेटी से 4,20,00,000 की रिकॉर्ड धनराशि प्राप्त की गई। कुछ समय पहले भी 4 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ था संग्रह। इस नकद राशि के अलावा भक्तों ने भारी मात्रा में सोना चांदी भी चढ़ाया, जिसमें 1 किलो 62 ग्राम सोना और 26 किलो चांदी शामिल। मंदिर की दान पेटी से देश विदेश के भक्तों द्वारा अर्पित किए गए 963 विदेशी नोट। लगातार बढ़ रही है विदेशी भक्तों की आस्था। दान करने वाले भक्तों ने भगवान को चांदी का पालना किया अर्पित। सैकड़ों वॉलंटियर महिलाओं ने की नोटों की गिनती। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भक्तों की सुविधाओं के लिए नया प्रशासनिक भवन बनाया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस समारोह के लिए तैयारियां हुई पूरी। मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज से 16 जून तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट। 15 जून से शुरू होने वाले मेले के लिए 1500 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। कुमाऊं रेंज की आईजी ने इंतजामों का लिया जायजा। 3 सेक्टर में बांटा गया पूरा मेला क्षेत्र। कैंची धाम स्थापना दिवस पर देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के नैनीताल पहुंचने की संभावना। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए तैयारियों में जुटा है प्रशासन। स्थापना दिवस पर कैंची धाम में पुलिस यातायात खुफिया और आपदा प्रबंधन की टीमें रहेंगी तैनात। संवेदनशील जगहों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। बाबा नीम करौली ने 15 जून को ही की थी आश्रम की स्थापना। स्थापना दिवस पर बाबा की विशेष पूजा और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे महाप्रसाद। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुए पहाड़। शिमला समेत सभी पर्यटक स्थल पर सैलानियों की भारी भीड़। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और एडवेंचर स्पोर्ट्स का ले रहे हैं मजा। सैलानियों के साथ ही वाहनों की लगी लंबी कतारें। बीते 24 घंटों में शिमला में करीब 35,000 गाड़ियों की हुई एंट्री। 12 जून तक 2.5 लाख वाहनों का आवागमन। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। मैदानी इलाकों के गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। जून का आधा महीना बीत जाने के बावजूद डलहौजी में ठंड का एहसास। सुहावने मौसम का जमकर आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन सतर्क। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा है आकर्षित। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटक कर रहे हैं डल झील का रुख। शिकारा राइड का लुत्फ उठाते पर्यटकों से झील में बढ़ गई है रौनक। वीकेंड पर पर्यटकों के भीड़ के बीच बारिश से ट्रैफिक हुआ जाम। हालांकि तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल्लू हाईवे पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जाम खुलवाने में जुटाए प्रशासन। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। होटल में 80-85% की बुकिंग से होटल मालिक खुश। वीकेंड पर हरिद्वार में चारधाम यात्रियों और सैलानियों की भीड़ दिखी। वाहनों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के कारण आया भूस्खलन। पुंछ और जम्मू के बीच सड़क संपर्क बाधित। नेशनल हाईवे 144A पर गिरा पहाड़ों का मलबा। रास्ता साफ कर ट्रैफिक बहाल करने में जुटा है प्रशासन। वाराणसी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी से ढका आसमान। हालांकि गर्मी और उमस से मिली निजात। देश भर में मानसून के और आगे बढ़ने की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में और बारिश और आंधी तूफान की संभावना। महाराष्ट्र में लू चलने के आसार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन, देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता। 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया गया सम्मानित, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को किया सम्मानित। सभी ने मालवीय नगर और सैदुल्ला साहब की दुखद घटनाओं में लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस का दिया था परिचय। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की मौजूदगी में ई ऑटो ने मसूरी के कठिन चढ़ाई करने वाले रास्तों पर संतोषजनक प्रदर्शन किया। प्रशासन ने शुरुआती परीक्षण को सफल और सुरक्षित माना। एनटीए ने परीक्षा कर्मयोगी परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया लॉन्च। एनटीए परीक्षाओं के लिए सुपरविजन और इन्विजिलेशन को बेहतर बनाना है मकसद। आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 955 करोड़ की 39 परियोजनाओं को किया लोकार्पण और शिलान्यास। इस दौरान सीएम ने हस्तशिल्प मेले में भी शिरकत की, क्षेत्र की हस्तशिल्प और संस्कृति की समृद्ध विरासत का जायजा लिया। मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं को किया गया सम्मानित, तो वहीं बच्चों का भी दुलार करते हुए नजर आए सीएम। विश्व बल श्रम निषेध दिवस के मौके पर लद्दाख के तांगसे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सेना बाल श्रम के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। तांगसे के सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों और शिक्षा पर दिया गया जोर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। देश को मिली 3011 नए अग्निवीरों की शक्ति। ओडिशा के खोरदा में हुई पासिंग आउट परेड, जोश में भरे अग्निवीर, कदम ताल से गूंजा आईएनएस चिलिका। पासिंग आउट परेड में शामिल अग्निवीरों में 116 महिला अग्निवीर भी शामिल। पासिंग आउट परेड से कोस्ट गार्ड को मिले 265 नाविक। भारतीय सेना ने लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती गांवों के स्कूली बच्चों को बटालिक में सिंधु व्यू पॉइंट पर कराया दौरा। करगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजन। इस दौरे के दौरान बच्चों को सीमावर्ती इलाकों में जीवन, सैनिकों की चुनौतियों और सशस्त्र बलों के साहस बलिदान को करीब से जानने समझने का मिला मौका। बेंगलुरु में 13 से 14 जून को राइज कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। 100 से ज्यादा स्टार्टअप अपनी तकनीक का करेंगे प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कल पीएम मोदी और मैक्रों की अगुवाई में भारत और फ्रांस के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। बैठक में दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे दोनों नेता। नीस में कल भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और मैक्रों। समिट में भारत फ्रांस समेत दुनिया भर के इनोवेशन स्टार्टअप होंगे शामिल। नीस शहर में 14 से 16 जून तक चलेगा भारत इनोवेट 2026 समिट। नीस शहर में चलने वाली ट्रेन पर लगाए गए भारत इनोवेट 2026 के संदेश। भारत इनोवेट 2026 में 120 भारतीय इनोवेटर, 500 से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ ग्लोबल सीईओ और इंडस्ट्री लीडर होंगे शामिल। सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। दिल्ली में बिजली हुई महंगी, 1% से 3.5% तक बढ़े दाम। DERC ने मासिक PPAC चार्ज को मंजूरी दी। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों पर बढ़ेगा बिल, तो वहीं जून से उपभोक्ताओं पर दिखेगा असर। 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत, सब्सिडी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर। ओडिशा में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन मांझी हुए शामिल। पांच दिवसीय शिमला समर फेस्टिवल का हुआ समापन समारोह के आखिरी दिन गीत संगीत के साथ स्थानीय कला संस्कृति के दिखे रंग, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। थिएटर, सिनेमा, रेडियो और टीवी कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। डॉक्टर रस्तोगी ने 100 नाटकों, 75 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। ओडिशा के सीमांचल पात्रा को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। अनोखी संगीतमय और मुखौटा आधारित लोक नाट्य परंपरा के विकास और संरक्षण में निभाई है अहम भूमिका। इसी महीने शादी के बंधन में बंधेंगे तेज गेंदबाज आकाशदीप। होने वाली पत्नी अक्षता के साथ 24 जून को वाराणसी में शादी करेंगे आकाशदीप। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई भट्ट कैंप की हॉरर मूवी हॉन्टेड 3D। वहीं एकोज ऑफ द पास्ट 2.5 करोड़ रहा देश में नेट कलेक्शन। इम्तियाज अली की फिल्म में वापस आऊंगा को क्रिटिक्स से मिला अच्छा रिस्पॉन्स। ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रही फिल्म की नेट कमाई। भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन की बायोपिक की शूटिंग साल के अंत में होगी शुरू। तो वहीं निर्देशक नीरज पांडे करेंगे डायरेक्ट। धमाल 4 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 10 जुलाई को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। ओटीटी पर सनी देओल और अक्षय खन्ना होंगे आमने सामने, 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी इक्का। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में कल भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, दोनों टीमों के बीच एस्बेस्टन में खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से ही भारत करेगा महिला T20 वर्ल्ड कप के सफर का आगाज। हरमनप्रीत की कप्तानी में जीतने के लिए टीम का जोश हाई। T20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा, भारत ने 16 मैचों में से 13 मैच में हासिल की जीत। T20 वर्ल्ड कप में भी 6 बार भिड़ी हैं भारत और पाकिस्तान की टीमें, जिसमें से 4 बार टीम इंडिया ने ही मारी है बाजी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What about me, Jack? What about me?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: Well played, Jack. Well played.
6: Jack FM, playing what we want.
2: इसके साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ।
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम को किया ऐलान, जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की मिली जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। DRDO को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर की रेंज वाली दुश्मनी मिसाइलों को नष्ट करने वाली इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल, आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा, होटल और होम स्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह, 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: कौन खींचेगा कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय राणा की भद्दी कॉमेडी का मामला सभी के जहन में ताजा होगा, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया है और इसमें महिलाओं को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो सभ्य समाज में जायज ही नहीं ठहराई जा सकती, और इसी वजह से महंगी पड़ रही है कॉमेडी की बिरयानी। हंसने हंसाने की आड़ में लांघी सीमा, मजाक मजाक में महिलाओं का मजाक क्यों, आखिर कौन खींचेगा कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ कॉमेडियन, समाज सेवी, साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद रहेंगे।

0: तो नया कॉमेडी विवाद उभर आया है। अब क्या है ये नया कॉमेडी विवाद, चलिए सबसे पहले हम आपको विस्तार से इसी के बारे में बता देते हैं पूरा मामला। दरअसल कॉमेडियन के स्टैंड अप शो में एक वीडियो से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। क्या, चलिए समझाते हैं। ऑडियंस में बैठे गुरुग्राम के एक शख्स ने भद्दी टिप्पणी कर दी, इसी के बाद महिलाओं के प्रति सोच को लेकर बहस छिड़ गई। एक कॉमेडियन और एक दर्शक को लेकर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। ऑडियंस के बीच बैठे इस दर्शक ने शो में बातचीत करते हुए अपनी डेट के बारे में बताया और महिला दोस्त के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा की। इस दर्शक ने हंसते हुए बताया कि उसने डेट पर चिकन बिरयानी के लिए 370 रुपए खर्च किए। आरोपी दर्शक ने डेट पर खर्च इन्हीं पैसों का जिक्र किया और हिसाब करने वाले के लिए वसूली शब्द का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी दर्शक और कॉमेडियन दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब आरोपी युवक को उसकी कंपनी ने नौकरी से हटा दिया है। महिलाओं पर टिप्पणी के बाद कार्रवाई की मांग उठ रही है। दर्शक की टिप्पणी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और वीडियो देखने के बाद आरोपी युवक की कंपनी ने कार्रवाई की है। कहा यह जा रहा है कि आरोपी की कंपनी को कुछ लोगों ने बहुत सारे ईमेल्स किए, कॉल किए और इसके बाद आरोपी युवक की कंपनी ने कहा कि वीडियो में दिखाई गई बातें कंपनी के मूल्यों के खिलाफ हैं। हालांकि कंपनी का दावा है कि सहकर्मियों ने आरोपी को पेशेवर और मेहनती कर्मचारी बताया, लेकिन कंपनी ने कहा कि अब विवाद व्यक्तिगत दायरे से निकलकर कंपनी को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा कार्रवाई जरूरी हो गई थी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कॉमेडी के नाम पर कब तक भद्दी बातें जायज हैं, आखिर कैसे रुकेंगे महिलाओं पर ये हमले। तो इसी पर आज हम आगे बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। सुनील पाल कॉमेडियन हमारे साथ हैं, सीमा समृद्धि जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं हमारे साथ, बरखा रोहन मेन राइट एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो चलिए सुनील जी आप ही से शुरू करते हैं, आप एक देश के जाने माने कॉमेडियन भी हैं, हर कोई आपको देखता है, फॉलो करता है, सुनता है, बहुत लोगों को आप हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कॉमेडी की भी कोई लक्ष्मण रेखा होती है, क्या आप ये बात मानते हैं?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा सब लोगों को और दुख जताना चाहूंगा कि गुड न्यूज टुडे पर हमें ये बैड न्यूज सुनानी पड़ रही है, कि इसलिए मैं इन सब सारे गाली गलौज वाले कॉमेडियंस को कॉमेडियन शब्द भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि कई बार मैंने इनको समाज के आतंकवादी कहा है। ये समाज के लोगों को, हमारे जेंजिस को, जो इनको सुनने आता है उनको गालियां देते, गालियां देना सिखाते हैं, भद्दी भाषा में बात करते हैं, माता पिता पर गंदी टिप्पणियां करते हैं, कुछ लिमिट नहीं है। और दुख की बात यह है कि हमारा 90% मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया भी इन्हें ही हाईलाइट करता है। केबीसी में इनको बुलाया जाता है, बिग बॉस में इनको बुलाया जाता है, टीवी के रियलिटी शो में इनको बुलाया जाता है एज ए सेलिब्रिटी और इनको बढ़ावा मिलता है। तो आने वाली जेंजी और आने वाले जो कलाकार है वो ये सोचते हैं शायद इसी तरह का परफॉर्मेंस या इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा सकता है और वो ऐसा शॉर्टकट चुनते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो लोग माइक पकड़ के जो भी अभद्र भाषा में जिसको ये कॉमेडी कहते हैं, ये इन्होंने शॉर्टकट चुन के ही अपना नाम बनाया है। ये कोई मेहनत से नहीं आया, किसी आर्ट फॉर्म से नहीं आया, ये हमेशा गाली गलौज से
0: सुनील जी
1: या कूटे गए या जेल में डाले गए या किसी देश पे या किसी धर्म पे या किसी लड़की पे, मतलब अपना स्तर गिराते गिराते गिराते ये आते हैं और फिर मीडिया वाले इनको पता नहीं क्यों हाईलाइट कर देते हैं।
0: सुनील जी, गुड न्यूज टुडे पर इस मुद्दे को उठाने का मकसद यही है कि जब कोई और इस ओर ध्यान नहीं देता तो ये हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है एक न्यूज चैनल होने के नाते कि हम इस तरह की बातों को रखें। आजादी का, शब्दों की आजादी का मतलब, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत सर आपसे इसी लाइन से की कि कॉमेडी की भी कोई सीमा रेखा होती है। आप लोगों को हमने देखा है, आप लोगों ने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी, आप खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत कॉमेडीज भी किया, आपके साथ ही कलाकार भी बहुत है, लेकिन वहां पर एक लक्ष्मण रेखा थी, वहां पर एक सीमा थी कि इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते और वो तमाम बड़े चैनल्स में भी आया। लेकिन आज की तारीख में जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, सोशल मीडिया पर क्या इसका अभिव्यक्ति की आजादी के गलत मायने निकाल लिए जाते हैं, इसको गलत तरीके से लिया जाता है, या ठीक है हम आजाद हैं, हम अब आपने जेंजी की बात की, यहाँ सारे यहाँ जितने ऑडियंस बैठी होती है ज्यादातर जेंजी होते हैं जो ठहाके लगाते हैं इसको लेकर।
1: हमारे जेंजी 80% बहुत अच्छे हैं, कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 20-25% जेंजी जो एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास जाते हैं, कहीं किसी वजह से अपना टाइम पास करने के लिए ग्रुप के साथ में इनके पास जाते हैं, तो वो इनके साथ में इस तरह से भाषा में बात करके उनकी भाषा को बिगाड़ते हैं। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं बहुत, और इस वजह से काफी सारे इस टाइप के कलाकारों को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं, तो ये कहीं कहीं मिसगाइड हो रहा है समाज। कहीं ऐसा लग रहा है कि भैया मेहनत मत करो, आप कुछ मेहनत करके कुछ मिलना नहीं, बस गाली गलौज कर दो माइक पकड़ के, या किसी किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, उल्टा सीधा बोल दो, और पुलिस तुम्हें पकड़ के लिए, अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हारा दिया, तो तुम रातों रात न्यूज में आ जाओगे। और एक बार तुम न्यूज में आ गए तो आप जितने लोग ये न्यूज में आए हैं, आज ये लखपति हैं, करोड़पति हैं, इनके बड़े बड़े शोज होते हैं।
0: ये भी सुनील जी, ये भी एक आप सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि किस तरीके से कॉमेडी को किस एंगल के साथ परोसा जाता है। बरखा जी, ठीक है हंसने हंसाने की आड़ में क्या आपको लग रहा है कि सीमाएं लांघी जा रही हैं? शोज होते हैं, बहुत सारे शोज होते हैं, जेंजी लोग वहां पर पहुंचते हैं, बहुत उम्र दराज लोग भी पहुंचते हैं। हम जो भी कोई वहां पर इस तरह के शोज को अटेंड करने के लिए जाता है वो एक रिलैक्सिंग टाइम लेकर जाता है, लेकिन क्या इसकी आड़ में तमाम सीमाओं को लांघा जाता है?
2: देखिए ये तो बहुत पुराना विषय है और बहुत बार हमने इस पे चर्चा करी है कि सीमा एक तय होनी चाहिए और एक रेगुलेटरी सरकार की तरफ से आनी चाहिए। उसके लिए मेरे को लगता है 10 साल हो गए इस पे बात करते करते, कुछ हुआ नहीं है। और एक के बाद एक कंटेंट क्रिएटर्स जो भी आ रहे हैं इस तरीके की अपनी बात रखते हैं कॉमेडी में, डार्क कॉमेडी ही आजकल जेंजीज की अगर आपने बात करी है तो जेंजीज डार्क कॉमेडी देखना बहुत पसंद करते हैं और वही कंटेंट बनाया जा रहा है, वही कंटेंट बिक रहा है। अब जो बिक रहा है, जो बनाया जा रहा है उसमें हंसने के लिए उनको हम रोक नहीं सकते, उस पे सुधार होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ होनी चाहिए। लेकिन अभी अगर हम स्पेसिफिकली इस केस के बारे में अगर बात करें तो मेरा संगठन या मैं किसी भी ऐसे फूहड़ या असंवेदनशील टिप्पणियों का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन जो उस लड़के के साथ हुआ कि सोशल मीडिया पे जो बातें चली तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया, मतलब आप सोचिए कि किसी को नौकरी से निकाल देना या उसकी लाइफ राइट टू लिव वो भी हमने उससे छीन लिया है, ये गलत है। आफ्टर ऑल उन्होंने अपॉलॉजी कर ली और हर इंसान से गलती होती है, क्या पहले से
0: नहीं? बरखा जी, आज मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगी, मैं चाहूंगी कि आज आप बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कीजिए। मुझे पता है आप मैन राइट एक्टिविस्ट हैं, हमेशा पुरुषों के अधिकारों के लिए खड़ी हैं, लेकिन बरखा जी सीधे तौर पर साफ शब्दों में ये बताइए, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हम तो टेलीविजन पर, मैं तो यहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते, हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते, वसूली तक की शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको वो सही लगता है? क्या माफी से? अभी देखिए सुनील जी का दर्द सुनिए आप, सुनील जी ने क्या कहा कि इस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता है। अब यहां पर अगर अभी आप कह रही थी कि इस पर कानून होना चाहिए, अगर कंपनी एक्शन ले रही है तो क्या ये एक मिसाल नहीं बन रही है? आपको अपनी मर्यादा में नहीं रहना चाहिए
2: ना? कंपनी को बिल्कुल एक्शन नहीं लेना चाहिए, कंपनी को इंटरनल कमिटी से जांच करानी चाहिए। अगर जो वहां को वर्कर्स हैं अगर वो उसकी शिकायत करते हैं तब मनता है निकालना, अभी कोई मतलब नहीं है।
0: उनके पास शिकायत पहुंची ना,
2: उन्होंने जो टिप्पणी करी,
0: शिकायत पहुंची उनके पास।
2: मैं पूरे दमखम से इस बात को कह रही हूँ, कितनी सारी महिलाएं हैं जो इस डार्क कॉमेडी को करती हैं और इससे भी बदतर वर्ड्स
0: नहीं, ये भी गलत है,
2: अपने चैनल पे बोल भी नहीं सकते,
0: ये भी गलत है बरखा जी,
2: भी दी है उन्होंने।
0: ठीक है, चलिए हम जरा इसका कानूनी पहलू समझ लेते हैं। बरखा जी सही कह रही है, कानूनी पहलू समझ लेते हैं। मैं लौटती हूँ, एक सेकंड सीमा जी को जोड़ लेते हैं साथ में। सीमा जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखती हैं? दोनों बातें आपने सुनी, एक देश के जाने माने कॉमेडियन हैं, एक मैन राइट एक्टिविस्ट हैं, इसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं, कंपनी ऑलरेडी उनको निकाल चुकी है, आप इस पूरे मामले को कानून की नजर से किस तरीके से देखती हैं?
3: सबसे बड़ी बात नवजोत जी की जो सुनील पाल सर ने बोला वो बिल्कुल मैं टोटली उनकी बात से एग्री करती हूँ। वो खुद इतने बड़े कॉमेडियन हैं और उनको पता है कि कॉमेडी कैसे करना चाहिए और लोग वो यहाँ तक कैसे पहुंचे कि पूरा देश उनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उनकी ओपिनियन मैटर करती है। अगर मैं आऊं आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 19 जो आपको राइट देता है एक्सप्रेस एंड स्पीच का कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है कि आपकी लिमिट है, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करोगे तो ठीक है, अगर इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो वो बनने की भी जरूरत है, लेकिन उसके अलावा हमारा संविधान ही आर्टिकल 51A जो कहता है कि जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। नवजोत जी, अभी तक हम अपने फंडामेंटल राइट की तो बात करते रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हमारे देश के लोगों के प्रति क्या होनी चाहिए, हमारी क्या देश के प्रति ड्यूटी होनी चाहिए, उसको भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बात क्लियर कट मेंशन की गई है एक पैरा में कि देश के हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो स्त्रियों का सम्मान करेगा। इसको वो सही समय है इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन जो भी शो होते हैं, कॉमेडियंस शो करते हैं, उसमें देखती हूं मैं कि आए दिन इस तरीके के बल्गर भद्दे कमेंट होते हैं। समय रैना का जो शो था वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के मैटर पहुंचा। हाँ। आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो मैटर क्यों गया? और देखिए नवजोत जी
0: एक सेकंड बरखा जी, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हम तीन ही लोग हैं, बहुत समय हम तीनों आराम से बातचीत कर सकते हैं।
3: देखिए सुनिए, अपनी अपनी ओपिनियन है, इसी की तो मैं बात कर रही हूँ ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। आपने अपनी बात रखी, आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि दूसरा पैनलिस्ट अगर बात रख रहा है तो उसकी बात आप सुने ध्यान से। दूसरी चीज नवजोत जी, जब तक मैं तो कहती हूँ कंपनी को अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, ऐसे लोगों का समाज में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये जेंडर बाइज्ड है, अगर कोई फीमेल करती है तो डेफिनेटली उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इस वजह से कि किसी फीमेल पे एक्शन नहीं लिया गया तो इस लड़के पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल कमेंट नहीं हो सकता है। और शुरुआत किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी। आप देखिए 370 की बात कर रहा है। हाँ। मैं कहती हूँ 370 क्या, अगर कोई करोड़ों रुपए की भी बात करे कि हमें करोड़ों रुपए भी वसूल ले तब भी एक फीमेल की डिग्निटी का ये सवाल है, नहीं बोल सकता वो। और इस पर स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन मैं अगेन कहूंगी कि आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है। अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो हर किसी को अपनी लिमिटेशंस पता होंगी और समाज में देखिए हमारे जो जेन जी हैं वो इंटेलिजेंट है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक भीड़ का हिस्सा बन करके वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने ऐसा कमेंट किया, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम भी बोल सकते हैं, तो गलत मैसेज आता है।
0: बिल्कुल बरखा जी, अब देखिए आप अपनी बात रखिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सवाल भी है। साथ ही साथ देखिए, ये जो पूरा एपिसोड हुआ ये पूरे सोशल मीडिया पर था। हम और आप, पहली बात तो हम किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। आप सोचिए कि जब वो ओपनली सबके सामने आया, उस महिला की क्या इज्जत रही और उस पुरुष की क्या इज्जत रही? क्या ये उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की, फंडामेंटल ड्यूटी, क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? क्या हम किसी भी महिला को, इनफैक्ट जो हमारी नोन भी है, क्या उसके साथ भी हम इस तरह की बातचीत कर सकते हैं? क्या ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना चाहिए एक शख्स को?
2: मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमें इस तरीके की अभद्र टिप्पणी का मैं कहीं पे भी समर्थन नहीं करती। रही बात, मैं जो कहना चाह रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि समय रैना को क्या हुआ था सारा देश जानता है, रणवीर अलाहाबादिया के साथ क्या हुआ था, क्या एपिसोड चला था डार्क कॉमेडी का सारा देश जानता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला पहुंचने के बाद क्या वो स्टार नहीं रहे या हमने उनको बड़े से बड़े मंच नहीं दिए? तो अगर हम सिलेक्टिव अप्रोच को करते हैं, ये बेचारे की जिंदगी अभी स्टार्ट हो रही है, गलती हुई है, उसने माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है, लेकिन एक एक सोशल मीडिया के प्रेशर, मीडिया प्रेशर में आकर के एक लड़के की जिंदगी, करियर बर्बाद कर दे, उसको राइट
0: क्या इग्नोर कर दे इन चीजों को?
2: जैसे मैं आपको
0: इग्नोर कर देना चाहिए, सोशल मीडिया पर सारी दुनिया ने देखा, क्या इसको इग्नोर कर दे?
2: नवजोत जी, लेट मी कंप्लीट विद दिस एग्जांपल। सर्वजीत जो एक लड़का था, रेड लाइट पे खड़ा था, उसको जब लड़की ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन चार्जेस लगाए तो वो बेचारा दिल्ली का दरिंदा बन गया था। आज वो दिल्ली छोड़ के चला गया क्योंकि वो दिल्ली में रहने लायक नहीं रह गया। वो कहीं भी ट्रैवल करता था, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो दिल्ली का दरिंदा बन गया। तो क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं? आप उसकी बात करिए, सादत अली जिसे 22 थप्पड़ पड़े लखनऊ की रेड लाइट पे और गंदे गंदे अभद्र गालियां पड़ी, उसका क्या कसूर था? वो तो कैब ड्राइवर था। जोमैटो वाला लड़का, उसका क्या कसूर था? उसे तो
0: ये सारे मामले बरखा जी उठे हैं,
2: ये सोशल मीडिया का ही मामला है मैडम, सोशल मीडिया
0: हाँ,
2: का
0: ये सारे मामले उठे हैं, हर जगह उठे हैं
2: जी। हितेशा चंद्रानी ने उन्हें कहा कि इन्होंने हमारे साथ नाक फोड़ दिया और एक वीडियो बनाया, उनकी नौकरी चली गई। तो ऐसे कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? ये डेली
0: पर बरखा जी, हम इनके टिप्पणी को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते क्या? देखिए ये सब करके क्या आप उस टिप्पणी को जस्टिफाई करना चाह रही हैं?
2: मैं तो ये कह रही हूँ मूव ऑन, जी है ऑलरेडी ऑपोजिट,
0: ये मूव ऑन करते करते मामले यहाँ तक पहुँचे बरखा जी।
2: उनको मौका दीजिए, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। क्या हमें हक है किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद करने का? क्या हमें हक है?
0: सुनील जी, मूव ऑन शब्द, मूव ऑन ये बरखा जी कह रही हैं, लेकिन आजकल की जेंजी में मूव ऑन शब्द बहुत कॉमन है, बहुत चलता है। अरे बोल दिया तो क्या हुआ, चलिए छोड़िए, मामला खत्म कीजिए। ऐसा नहीं लगता कि अगर मामले को पहले दिन ही समेट लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती? आज ऐसे बहुत है, क्योंकि ये एक केस सर हम उठा रहे हैं, ये एक केस है। ऐसे जाने कितने केसेस अभी हैं जो शायद मीडिया में, सोशल मीडिया में या पब्लिक में आए ही नहीं है। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है
1: जी, इसका हमारे कॉमेडी समाज को बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर उन लोगों को जो पारिवारिक कॉमेडी करते, जिनका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होता है, जो स्टेज को सरस्वती का मंच मानते हैं, पूजा करके जाते हैं और ऑडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ऑडियंस भी उन पे उनके भरोसे अपना परिवार लेके आती है हंसने के लिए, चाहे वो पुराने जमाने के जितने भी आप कॉमेडियन बड़े उठाकर देख लीजिए, सबने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब ये इस तरह से अगर एग्जाम्पल सेट करेंगे कि भैया गाली दे दो, अभद्र भाषा बात करो, तो अब जैसे अभी चर्चा आपका विषय बन गया। अब आप देखिए, वो बंदा जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, आज वो पूरी दुनिया में बदनाम ही सही, लेकिन उसका नाम लोग लेने लगे। तो ये लोगों ने शॉर्टकट पकड़ लिया कि कुछ भी ऐसा उठ पटांग करो या कुछ भी ऐसा कर दो, क्योंकि टैलेंट तो इनके अंदर है नहीं। इनके सारे कलाकार जो माइक पकड़ के करते हैं, ये टैलेंटेड तो है नहीं। कुछ भी गाली करना या जिस टाइप की चीजें करना करके जो है वो रात रात निगाह में आ जाते हैं किसी तरह से।
0: कहावत भी है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिल्कुल सुनील जी, एक सेकंड जरा, सीमा जी कुछ कहना चाह रही थी, निशा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी अपनी बात रख लीजिए, फिर निशा जी के पास जाऊंगी।
3: देखिए नवजोत जी, मैं बरखा जी की इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि मूव ऑन करने वाली बात। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई बात समाज के अंदर, हम सभी पैनलिस्ट यहाँ पर, सभी लोग बुद्धिस्ट बैठे हुए हैं, सभी लोग जानते हैं कि इस समाज के अंदर फीमेल को लेकर के गालियां बनी हुई हैं, और वो गालियां हमारे परिवार, समाज, इंस्टीट्यूशन से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर हम आसानी से सुनते हैं। लेकिन जब एक दो एग्जांपल हम किसी मेल पर्सन के देते हैं कि उसके साथ ये हो गया था, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कहकर के ये जस्टिफाई करना, अभी तो एटलीस्ट ये हुआ कि धीरे धीरे अब जाकर के वो गालियां देना थोड़ा कम हुआ। लेकिन एक और चीज, फीमेल ने उस मेल को, वो पैट्रियार्की को जो गालियां देती थी, फीमेल ने गालियां देना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में शुरू कर दिया। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए फीमेल को भी उन चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हम अगर गाली देकर के बात करेंगे तो डूड ऑल दैट सब कुछ, एक दूसरे को हाथ मार करके, जैन जी की भी मैं बात कर रही हूँ, 90% जैन जी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमें किन चीजों को अडॉप्ट करना है, डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और बरखा जी, कॉमन इश्यूज पर हमेशा लॉ मेकिंग होना चाहिए, एक्सेप्शन पर नहीं। इसीलिए हमारे जितने कानून बने उनमें एक्सेप्शन भी नीचे दिया गया कि अगर ये सिचुएशन आई तो क्या होगा इसका। मैं यस,
0: निशा जी को हमारे साथ, निशा जी इस वक्त जुड़ चुकी है। निशा जी देखिए, आज का टॉपिक बहुत अहम है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब चर्चा इस तरीके से चल रही है कि महिला को लेकर टिप्पणी कर दी, लेकिन निशा जी आपसे सवाल ये है, ये किस तरह की साइकोलॉजी है? कूल दिखने के लिए हम कुछ भी बोल दें, हमें कूल दिखना है उसके लिए मजाक मजाक में हम किसी का भी मजाक उड़ा दें, चाहे कोई महिला है, बुजुर्ग है, चाहे कोई पुरुष है, किसी का भी, सिर्फ कूल दिखने के लिए, ये सोच क्या है? देखिए एक चीज तो मैं आपको बोल दूं, इस तरह की चीफ कॉमेडी, आईक्यू तो बहुत अच्छा है, दिमाग तो बहुत अच्छा है, पर उस दिमाग को आप किस तरफ यूज कर रहे हैं। जैसा कि अभी सुनील जी ने बोला कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी बिक रहा है। मेरे को कॉन्फिडेंस है तो मैं कुछ भी बोलूंगा, और वही नाम चाहिए मुझे बदनामी होने से, वो नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ जैसे कि अभी बरखा जी ने बोला कि मूव ऑन, तो देखिए गलतियां करेंगे तो मूव ऑन, चाहे वो रणबीर अलाबादिया हो या समय रहना हो, गलतियां कर दी तो सॉरी मांग ली और मूव ऑन हो गए। देखिए कुछ शिष्टों की एक हम समाज में रहते हैं और इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर आप स्टेज पर भी कॉमेडी कर रहे हैं तो आप अगर या तो उसको बोलिए हम एडल्ट कॉमेडी कर रहे हैं, एडल्ट कॉमेडी के लिए बैठे अगर आप, क्योंकि आप एक लेवल पर है, लोगों की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आप उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको फॉलो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उन्होंने एक स्तर पर रखा है, और आपको एक स्तर पर रखा है तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। और रही बात बोलने की, ये कहीं ना कहीं आदत आपके घर में बचपन में बड़ों से आती है, आपके इन्वायरमेंट से आती है, और शायद उस वक्त बचपन में जब आपके बॉर्न एंड ब्रॉट अप में कहीं ना कहीं कोई लिमिट के लिए आपको रोका नहीं गया है किसी भी चीज पर, आपको ये नहीं कहा गया है या कि मेरी मर्जी है, स्पेशली मैम जैसे बात कर रही थी यूथ, मेरी लाइफ है मेरी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है। आप हर एक चीज को एक दायरे में करते हैं, उस दायरे से अगर आप बाहर करेंगे तो मुझे लगता है वो एक्शन आना जरूरी है। यहाँ जैसे इस लड़के के ऊपर कंपनी ने भी स्टैंड लिया और उसे जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर हमें समाज को बना के रखना है तो कहां पर कोई अगर क्रॉस कर रहा है बाउंड्री को तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करना पड़ेगा। और वुमन एक प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको किसी भी नाम पर किसी भी चीज के नाम पर परोस कर आगे बोल दिया जाए। तो मुझे लग रहा है लैंग्वेज का प्रयोग सोच समझ कर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एक पैदल पर बैठे हैं।
4: ठीक
0: जैसे
4: है।
0: आपको याद हो एक हमारे तो किसी पॉलिटिशियन ने बोल दिया था, इवन वो एक अनुरीदाचार्य है वो भी कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम फेमस कैसे बनाते हैं।
4: पर निशा जी देखिए, हाँ निशा जी एक सेकेंड, बरखा जी 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज आप पुरुषों के राइट्स के लिए खड़ी हैं, एक महिला पुरुषों के राइट्स के लिए खड़ी है, लेकिन आज की तारीख में भी चाहे वो कॉमेडी हो या कोई भी गाली गलौज हो, टारगेट पर महिला ही है आज भी।
2: देखिए फिर मैं यही कहूंगी, इस मुद्दे को हम महिला पुरुष में ना बांटे। यहाँ पर पहले भी एक पैनलिस्ट बोल चुकी है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं कतई इन सब चीजों से अलग बात रखती हूँ, रिस्पेक्ट इज ऑन, कभी भी हम ये नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर डिजिटल लिंचिंग बंद होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप ये देखिए कितने प्रेशर में, अभी थोड़े दिन पहले दीपक यू जो कि बस में ट्रेवल कर रहा था, एक लड़की ने मजाक मजाक में एक वीडियो बना के वायरल कर दिया, वो बच्चा मर गया, बच्चा तो नहीं था 30-35 साल का युवा था, मर गया। तो सोचिए अब ये भी मर जाए, क्या चाहते हैं हम, इतना ज्यादा इसको फूल देने की जरूरत नहीं है। लड़के ने माफी मांग ली है, उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, उसे सुधरने का मौका तो देखिए, और आप सिलेक्टिव आउटरीच क्यों करते हैं, आप क्या कर पाए उसका, समय रहना का क्या भी कर पाए, समय रहना और दमखम से, अब तो उसके करोड़ों व्यूवर्स हैं और एक घंटे में उसका कितना वायरल हुआ था, तो वो तो बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स भी है। इन सब आप उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले पाए, रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ आपने क्या एक्शन ले लिया, और लाखों इस देश में लड़कियां हैं जो का वर्ड यूज करती हैं और भद्दी भद्दी गालियां देती हैं स्टेज पर, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले पाए।
4: नहीं वो तो देखिए बरखा जी सीमा जी बार बार इस बात को, और इस मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हम चारों, अब हम पांचों लोग इस बात से अग्री करेंगे कि इसमें चाहे कोई महिला है या पुरुष है, अगर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो अपने क्लोज मित्र के साथ भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसको नागवार गुजर रही है, तो मेरे ख्याल से आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुनील पाल जी आपके पास आती हूँ, सर आप बॉलीवुड से इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, सर देखिए जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है कि फिल्म किस वर्ग के लोगों को देखनी है या इस फिल्म में ये क्या क्या हो सकता है, एक सेंसरशिप बना हुआ है, उस पर एक सेंसर सर्टिफिकेट भी लगा होता है, क्या अब

0: रहा है, उसका काम बंद हो गया है, लोग अब कॉमेडियन से डर रहे हैं, कॉमेडियन को बुलाना नहीं चाह रहे हैं। और यही वजह है कि अब फिल्मों में भी, जैसा आपने कहा, फिल्में भी अब ज्यादा कॉमेडी फिल्में नहीं बनती, या कॉमेडी फिल्मों को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी फिल्म ने गंदी कॉमेडी कर दी या डबल मीनिंग कॉमेडी कर दी,
1: बिल्कुल
0: तो सारी सारी कैटेगरी उसमें आ जाती है।
1: ठीक
0: और
1: है
0: जो लोग सही काम कर रहे हैं, भाई इनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, जैसे मैडम ने कहा, ये जो दो चार कंपनी का नाम लिया इन्होंने, उनका तो उल्टा लाखों का फायदा हो रहा है, करोड़ों का फायदा हो रहा है,
1: ठीक है।
0: क्योंकि उनके तो ना
1: लेकिन
0: उनका तो
1: सवाल
0: पांच लाख
1: सर
0: की
1: यही
0: जमीन
1: है
0: है।
1: कि आखिर इस पर सेंसरशिप कौन लगाएगा, कैसे रुकेंगे ये तमाम मामले, इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत लौट है।
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: कीजिएगा, कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा इसी को लेकर आज चर्चा हो रही है क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर लोग कुछ भी परोस दे रहे हैं और हाल फिलहाल का मामला जिसको लेकर अब काफी सुर्खियां हैं कि एक शख्स को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। अब सीमा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तमाम कानून है, कुछ कानूनों का जिक्र आपने भी किया है। हम जब कोई फिल्म देखने जाते हैं, मैं वापस उसी बात पे आऊंगी क्योंकि यहां पर सवाल यह है कि कौन खींचेगा लक्ष्मण रेखा, किस तरीके से डिसाइड होगा। नॉर्मली सोशल मीडिया पर बहुत कंटेंट मौजूद है और कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट कॉमेडी देखने के लिए भी हम परिवार के साथ बैठते हैं। वही सवाल कि क्या इसको लेकर कोई सेंसरशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि किस तरह की कॉमेडी परोसी जा रही है। शुरू में 2-3 लाइनें 5 मिनट हमें अच्छा लगता है परिवार के साथ बैठे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है कि आप परिवार के साथ उन्हें देख भी नहीं पाते हैं।
1: देखिए नवजोत जी, क्या है कि अभी तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी कंटेंट क्रिएट बनाया जाता है, जो भी वीडियोस वायरल होते हैं, उस पर इमीडिएटली एक्शन ले लिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है या वो म्यूट कर दिया जाता है, नहीं दिखता है। लेकिन सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट इंडिया में पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका रेगुलेशन, क्योंकि हम एक तरफ तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड करवा दिया, चाहे वो इंस्टा हो, एक्स हो, ट्विटर हो या फेसबुक वगैरह हो, सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनके रेगुलेशन के लिए टाइम टू टाइम बात उठती रही है। आईटी एक्ट पास हुआ लेकिन उस आईटी एक्ट में भी 1-2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, अदरवाइज एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं बना, जिसके लिए मुझे लगता है नवजोत जी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस लेवल का कंटेंट आप डाल सकते हो, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, एज पर द जो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कि अगर आपको एक्सप्रेस एंड स्पीच की आजादी है तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां तक होने चाहिए, इसका रेगुलेशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो नए हमें ऐसे कानूनों की रिक्वायरमेंट है आना जो कि बहुत जरूरी है। हालांकि मेटा है वो भी फेसबुक का ही है, लेकिन इसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, जिससे अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो ये जो लड़का है हिमांशु, शायद इसको भी इमीडिएटली नहीं कंपनी से फायर किया जाता, एक इंक्वायरी बैठती या कंप्लेन की जाती, वो अपनी बात रखता तो उसको भी अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका मिलता। लेकिन ये भी सच है कि जो वो कंटिन्यूअसली चीजों को बोल रहा है वो पूरी सोशल मीडिया पर है, तो ऐसे लोग भी डरेंगे। दूसरी चीज समय रहना कि जो शो की बात थी, इसमें आप देखेंगे अचानक से सोशल मीडिया पे उसके अंगेंस्ट में इतना नैरेटिव बना था कि अब शायद वो फ्यूचर में कभी भी वो लैंग्वेज, कभी उस तरीके का कंटेंट नहीं बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग होती है, तो कभी कभी जरूरी नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। ये जो वार्निंग होती है समाज की तरफ से, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। ये इसीलिए आज हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा रेगुलेशन रेगुलेट किया जाना बहुत ज्यादा
0: बहुत जरूरी है। अब समय आ भी गया। सुनील जी वापस आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपकी कॉमेडी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। राजू जी हुआ करते थे, आप सब लोग जो एक पूरी टीम हुआ करती थी, कुछ कुछ आप लोगों के कैरेक्टर्स बहुत हिट हो गए थे और वो इतने हिट थे कि आज की तारीख में वो कैरेक्टर्स अगर दिख जाते हैं शायद युवा कॉमेडियंस भी उन कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की डेट में सर कंटेंट क्रिएशन के नाम पर कुछ भी परोस दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कमी कहां पर रह गई है? फॉलोअर्स तो आपके भी उतने थे, फैंस तो आपके भी उतने ही हैं और यहां पर अगर देखा जाए उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन फिर भी लोग उसको देख रहे हैं।
2: मैं ये समझता हूं कि ये जो एक तक तबका जो है, जो YouTube का और OTT का जो तबका है जिन्हें गालियां ज्यादा पसंद है, उनको इतना बड़ा और इतना समझदार और इतना समृद्ध बताया जा रहा है, इतना समझदार बताया जा रहा है कि उसके प्रेशर में बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि यही लोग अच्छे आर्टिस्ट है, यही लोग अच्छे दर्शक है, जबकि देश और दुनिया में हमारे ऐसे ऐसे दर्शक है जो आज भी अच्छी चीज को बहुत दिल से पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस चीज के प्रभाव में आकर ये OTT वगैरह जो 190 देशों में देखा जाता है, इसके प्रभाव में आकर, गाली गलौज में आकर, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को क्लैमराइज किया गया है इस चीज को, कि भैया अगर आप OTT को देखोगे, इस टाइप की चीजों को, कंटेंट को देखोगे, हाँ, तो लड़के लड़कियां आपको
0: पर कूल माना जाएगा। OTT पे तो बहुत अच्छा कंटेंट भी आता है, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छी सीरीज भी आती हैं।
2: हाँ, लेकिन ज्यादातर उसमें ये भी ऐसा भी आता है। तो मैं कह रहा हूं कि इस टाइप की चीजों को देखना आजकल कूल माना जाता है, मतलब एक फैशन में आ गया। ये
0: एक बार वो
2: बहुत
0: मानसिकता को
2: दुखद।
0: समझने के लिए निशा जी के पास चलेंगे। निशा जी, क्या इसमें सोशल मीडिया जिम्मेदार है? आप इसमें किसको जिम्मेदार मानती है? देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, सुनील पाल जी सामने बैठे, वो कैरेक्टर्स आज भी गजोदर भैया हो गया, ये तमाम कैरेक्टर्स आज भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे लेकिन देखेंगे भी इन्हीं को।
2: नहीं,
0: बरखा जी, आती हूँ एक
1: देखिए
0: सेकंड, जरा
1: ऐसा
0: आप
1: है,
0: निशा जी से बात करूँ।
1: देखिए ऐसा है, ये मैं मानती हूँ कि अभी हाईलाइट हुआ है, पर ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपके फैमिली ग्रुप्स में भी आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं डबल मीनिंग बातें कर रहा होगा। कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी में, हम लोग ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने ही इनको पसंद करके इस प्लेटफॉर्म पर पहनाया है। कहीं ना कहीं इनके कंटेंट में पहले भी छोटे लेवल पर ये ऐसी चीजों का प्रयोग होता होगा, और ये लोग पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही कमेंट करते होंगे। ये आप इस बात को नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि जिस तरह, अगर आप रणबीर अराबादिया का केस देखिए, जब वो स्टेज पर हंस रहा था अपने पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ के कमेंट को लेकर, वो कितना कंफर्टेबल था। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर, चाहे आप पर्टिकुलर एक ग्रुप के लोग हैं, आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बैच में, चाहे वो बैक बेंचर्स हो या नॉटी बच्चों का ग्रुप हो, वो कई सदियों से ऐसे हैं, बट आज की डेट में उनको शायद एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम वही कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोस
0: निशा
1: सकते
0: जी,
1: हैं।
0: सोच
1: तो
0: बदली
1: वही
0: है,
1: प्लेटफॉर्म की वजह से
0: सोच
1: सोशल
0: बदली है।
1: मीडिया से हाइलाइट करें।
0: नहीं,
1: नहीं,
0: समय के
1: देखिए,
0: साथ
1: सोच
0: साथ
1: पहले
0: सोशल
1: भी
0: मीडिया के
1: रही।
0: आने से लिबर्टी ज्यादा मिल गई, सोच ज्यादा बदल गई, कूल दिखने के चक्कर में ये सब हो रहा है। निशा जी,
1: नहीं, ये कहीं ना कहीं आप देखिए, वे सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं आपके फैमिली के बॉर्न एंड ब्रॉटअप का रोल है। बचपन में आप कुछ भी मुंह से बोलते आए हैं या कुछ भी कह रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं बॉर्न एंड ब्रॉटअप में आपको डिसिप्लिन में नहीं रखा गया है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर आप इन लोगों की हिस्ट्री आके निकाल कर देखेंगे, ये अपने कॉलेज टाइम पर, स्कूल टाइम पर ये ऐसी हरकतें कर चुके होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आज की डेट में है। हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के दौर पे है, एक छोटी सी भी गलती को भी करते हैं तो आज हम नजरों में आ जाते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि आज के दौर में है, पहले शायद ये अंडरकवर चीजें होती थी, हाईलाइट नहीं होती थी। और जैसे कि मैम कह रही थी बरखा जी कि सॉरी मांग ली तो मूव ऑन हो जाए, सॉरी के बाद अगर वो ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग दोबारा ना करे तो उसका फायदा है। उस सॉरी का कोई फायदा नहीं जो मुंह से चार शब्द सॉरी बोल दिए और आपके एक्शन में कोई चेंज नहीं आया, अकाउंटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। 6 महीनों के लिए रणबीर अलाहाबादिया, चाहे समय रैना को भी कुछ समय के लिए नीचे होकर चलना पड़ा, झुककर चलना पड़ा, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर पटवार नहीं लगेगी तो वो दोबारा इस गलती को करेगी।
0: ठीक है, ठीक है, बरखा जी अब अपनी बात रखिए।
3: देखिए, रेगुलेशंस की बात मैंने स्टार्ट में ही कही थी, मैंने ही कही थी, और सरकार से हमने कई बार इस बारे में बात भी करी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो वाकई बदलाव तो सरकार द्वारा आना है। दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, समय रहना हो या इलाहाबादिया हो या रैबिट करके, और बहुत सारी लड़कियां भी हैं इसमें शामिल जो इस तरीके की डार्क कॉमेडी करती है, आपने क्या एक्शन लिया? आप चार लोग मुझे बता दीजिए क्या एक्शन हुआ था। आप ये सब तो पुरानी बातें हो गई, एक एक दो दो साल पुरानी बातें हैं, और वैसे ऐसे रोज कंटेंट ऐसा बन रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया था? आप कभी ना तो कोई एक कोई सीमा रेखा बना पाए, ना कभी कोई एक्शन ले पाए। तो इस लड़के की भी अपॉलोजी कर ली, और हम कैसे मान ले कि उसकी अपॉलोजी में दम नहीं है? और कैसे हमने कानून हाथ में ले लिया? कानून अपना काम करेगा, ये देश संविधान से चलता है।
0: लेकिन कानून इतना सख्त नहीं है ना, सीमा जी वही समझा रही थी, उतना सख्त नहीं है ना इसको लेकर, खास तौर पे सोशल मीडिया को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। क्या आप ये मानती हैं?
1: नवजोत जी,
0: एक सेकंड बरखा जी अपनी बात पूरी कर ले। सीमा जी, एक सेकंड। हाँ बरखा जी,
3: तो मैं यही कह रही हूँ कि तो ना तो कोई कानून है, तो जब कानून नहीं है तो डिजिटल लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने एक ट्वीट किया था 11:10 पे, उसमें मैंने लिखा था, हिमांशु जांगड़ा टर्मिनेटेड, should a person lose their livelihood because of a viral social media controversy involving their personal life? Is the corporate action justified? 90% लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो हूं नहीं उन 90% लोगों में से, आप लोग देख सकते हैं।
0: हो सकता है ये वही कूल जेनरेशन हो जिसकी बात अभी बहुत अच्छे से निशा जी समझा रही थी, जिसको लेकर 90%। चले, मैं आपके इस आपके ट्वीट को लेकर जो आपने पोल किया, मैं उसी पर आऊंगी। ये कौन सी जेनरेशन है निशा जी जो सपोर्ट करती है? मेरे ख्याल से परिवार में भी शायद कोई इस तरह की टिप्पणी को सपोर्ट नहीं करेगा शायद।
4: मैम मैं आपको बता दूं, ग्रुपों से आपको निकाल दिया जाता है अगर आप ऐसी कूल की तरह की बिहेव नहीं करेंगे। और मेल और फीमेल दोनों ही तरह के लोग ऐसे बिहेवियर को आगे प्रमोट करते हैं। कल्चरल ग्रुप्स इस तरह के हैं कि जिसमें मर्द और औरत बात करते हैं, उनकी शुरुआत ही बिलो बेल्ट बातों से होती है एंड दे फील प्राउड ऑफ। और आपके मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, इवन पॉलिटिशियंस के, आई एम सॉरी टू से, पॉलिटिशियंस के स्पोक्स पर्सन करके ऐसे लोग आते हैं। ये कहीं ना कहीं हमने सोसाइटी में
0: क्षेत्र में सीमित नहीं रखते,
4: आप जैसे लोगों ने ही बनाई रखी है। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रही हूँ मैं, वही कह रही हूँ ना। तो ये अगर हम ये कहें कि यहाँ पर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमने सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है।
0: Exactly, एक्सेप्ट करते जाएंगे, सॉरी बोलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। सीमा जी अपनी बात रखिए और साथ ही साथ इस पे लगाम लगेगी कैसे?
1: देखिए भारत के संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है नवजोत जी, हम सभी लोग समझते हैं इस चीज को। जब भारत का संविधान कहता है कि हमारी ये ड्यूटी है कि महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए जाते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में, क्यों बना रही है हमारी सरकार, जो पार्लियामेंट में बैठे लोग लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है वो क्यों बना रहा है फीमेल के फेवर में? क्योंकि यहाँ पर फीमेल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर इसी कॉमेडियन शो में से ये जो लड़का था हिमांशु, अगर एक कोई फीमेल उठ करके अपोज कर देती तो ये लड़का आज वायरल नहीं होता, वो बेटी वायरल हो रही होती, वो लड़की। तो हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस हम डेवलप कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि लाखों करोड़ों लोग वो स्टेप ना उठाएं। अगर एक आप फ्लैग बेयरर तो बन सकते हैं ना, आप तो अपोज करना चाहिए। ऐसे शो में आप बैठे सोचते हैं इट्स ओके, लोग तो हंस रहे हैं तो हम भी हंस लेते हैं। नहीं, ये हम सबकी ड्यूटी है कि अगर कोई गलत चीज है हम इतना तो डिफरेंस कर ही ले सकते हैं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। अगर ये स्टेप उठाया जाएगा तो डेफिनेटली ऐसे लड़के ये कहीं वायरल होने वाले नहीं है, ना कोई ये हीरो बनने वाले हैं। हीरो वो पर्सन बनेगा जो सच में सही और गलत में डिफरेंशिएट करना जानता होगा। और बाकी मैं निशा खन्ना जी की बात से बिल्कुल तरीके से
0: ठीक है। लास्ट एक आखिरी कमेंट सुनील जी, आपसे क्या कॉमेडी की सीमा तय करने का समय आ गया है सुनील जी?
2: बिल्कुल आ गया है, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर हम कॉमेडियन के जीवन पर पड़ रहा है, कला काम पे पड़ रहा है। हमारे कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने जिनके काम बहुत सारे बंद हो गए हैं, जिनको बुलावा बंद हो गया है, क्योंकि कॉमेडी के नाम पे पूरा समाज डर गया है। इन लोगों ने डरा दिया है, ये गाली गलौज वाले कॉमेडियन ने, और लोग कॉमेडी को अब ये समझ रहे हैं कि शायद हर कॉमेडियन अब इसी तरह की कॉमेडी करेगा जिससे हम जैसे लोगों को काफी प्रभाव पड़ा।
0: आपका आपका दर्द भी अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका असर समाज पर भी पड़ रहा है, विपरीत पड़ रहा है। तो समय आ गया है कि इसको लेकर भी अब एक सीमा तय की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
11: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है। वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
8: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल रुपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार।

डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाली इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट।

0: हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा। होटल और होम स्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अच्छी खबर सच्ची खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कैंची धाम की, जहां इन दिनों उत्सव का माहौल है। लाखों की तादाद में भक्त कैंची धाम का रुख कर रहे हैं। महाप्रसाद बनाने की तैयारियां भी जारी हैं, क्योंकि 15 जून को बाबा नीम करौली महाराज के इस भव्य धाम का स्थापना दिवस है। और ऐसे में आस्था का महाकुंभ जुटना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ऐसे में सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मेले को सुरक्षित बनाने के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, और इसके अलावा रूट डायवर्जन प्लान भी तैयार है।

0: उत्तराखंड की वादियों में बसा कैची धाम जहां हर पत्थर हर पेड़ और हवा के हर झोंके में बाबा नीब करौरी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है नैनीताल की हसीन वादियों के दरमियान ये सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि ये वो स्थान है जहां दिलों की पीड़ा शांत हो जाती है जहां आत्मा को दिशा मिलती है शायद यही वजह है कि हर साल बाबा नीब करौरी के आश्रम में 15 जून को भक्तों का सैलाब उमड़ता है ये तस्वीरें नैनीताल के कैंची धाम की है जहां स्थापना दिवस के मौके पर दिव्य आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है 15 जून के इस महापर्व पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है शुक्रवार को खुद आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने पुलिस बल के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की उन्होंने साफ किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुगम यातायात और भीड़ नियंत्रण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है
1: ये आज कैंची धाम का जो मेला लग रहा है उसके संदर्भ में एक ब्रीफिंग एसएसपी नैनीताल द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी इसमें जो हमारा जगह जगह से फोर्स आया हुआ है उनको टोपोग्राफी के बारे में ब्रीफ करना और साथ ही लोकल क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से हम लोगों ने अपना ट्रैफिक प्लान लागू किया है उसके बारे में उनको बताया गया है कि कब से जो है जीरो जोन हो जाएगा कहां कौन सा बैरियर है जहां तक शटल मूव करेगी कहां से जो है पैदल श्रद्धालुओं को जाना होगा और किस तरीके से जो अल्मोड़ा रानीखेत पिथौरा जाने वाले लोग हैं उनको बाइफकेट करके उनको आइडेंटिफाई करके जो है आगे भेजा जाएगा ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो
0: इस बार कैची मेले की सुरक्षा को अभेद्य किला बना दिया गया है 1500 से अधिक पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है पूरे मेला क्षेत्र को 3 बड़े सेक्टरों में बांटा गया है प्रशासन ने 13 जून से 16 जून तक के लिए विशेष सुरक्षा प्लान लागू कर दिया है ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए रूट डायवर्जन के साथ ही खुफिया विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें भी 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी
1: मंदिर समिति से कहकर और जिला प्रशासन से कहकर मेडिकल की दो टीम्स जो हैं डिप्यूट की हुई हैं वो एम्बुलेंसेज वहीं पर हैं इन केस एन इमरजेंसी अराइजेज तो उन एम्बुलेंस को और ये ब्रीफिंग में भी आपने सुना होगा कि सभी को ये बताया गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी
0: आस्था के इस महापर्व में बाबा के भक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए खाकी और प्रशासन पूरी तरह तैयार है अब इंतजार है तो बस 15 जून की उस पावन सुबह का जब कैंची धाम बाबा के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा लीला सिंह बिष्ट नैनीताल गुड न्यूज टुडे
2: एक तरफ कैंची धाम में रौनक है तो वहीं दूसरी तरफ मां भारती की सेवा के लिए नई जेंटलमैन कैडेट्स अब भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं भारतीय सेना और वायुसेना को आज नए लड़ाकों की एक नई खेप मिल गई है एक तरफ जहां देहरादून के आईएमए में इतिहास रचते हुए पहली बार 9 महिला कैडेट्स सेना का हिस्सा बनी तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के डूंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी की 217वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड ने आसमान में भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का लोहा मनवाया उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज पूरा देश सेवा के इस अनूठे जज्बे का गवाह बना है

0: बुलंद हौसले, चेहरों पर देश सेवा का जज्बा और कदम ताल की गूंज की आवाज, ये तस्वीरें हैं देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड की। इस परेड के बाद भारतीय सेना को अब 500 से ज्यादा नए फौजी अफसर मिल गए हैं, जो हर मोर्चे पर देश की रक्षा करेंगे, हर सरहद पर अपना पराक्रम दिखाएंगे। युद्ध हो या शांति, हर परिस्थिति में अपने कौशल से सेना का गौरव बढ़ाएंगे और देश ही नहीं दुनिया में परचम लहराएंगे। लेकिन इस बार की पासिंग आउट परेड ने इतिहास के पन्नों में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। 198वीं पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी शामिल हुई थी, जिन्होंने न सिर्फ पुरुष कैडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल किया, बल्कि इस अकादमी से बेहद कठिन और कठोर मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर इतिहास रच दिया। तपती धूप, हाड़ कपा देने वाली ठंड और हर शारीरिक मानसिक चुनौती को पार करते हुए इन महिला कैडेट्स ने जैसे ही अंतिम पग पर अपना कदम रखा, पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद देश की महामहिम राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने इन नए सैन्य अधिकारियों की हौसला अफजाई की। अब ये जावाज बेटियां भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बनकर देश की रक्षा करेंगी। महिला कैडेट्स और उनके जावाज अफसरों के सेना में शामिल होने से भारत की सैन्य शक्ति को एक नई धार मिली है। आज का भारत रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि उसकी सेनाएं आधुनिक और हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से इस बार देश विदेश के कुल 515 अधिकारी कैडेट पास आउट हुए हैं। इनमें 481 भारतीय अधिकारी कैडेट हैं और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट भी शामिल हैं। देहरादून के आईएमए में जहां पहली बार 9 महिला कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अंतिम पग पार किया, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के डुंडीगल में मौजूद एयरफोर्स अकादमी में देश के नए स्काई वॉरियर्स का दीक्षांत समारोह भी सम्पन्न हुआ। नीली वर्दी में सजे इन जावाज कैडेट्स की आंखों में आसमान छूने का सपना और दिल में भारत माता की रक्षा का संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। बेहद कड़ी फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन जावाज अधिकारियों के कंधों पर जब फ्लाइंग विंग सजे तो पूरी अकादमी जैसे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इस गौरवमयी परेड की सलामी लेने खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने पास आउट होने वाले कुल 231 फ्लाइट कैडेट्स को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया, जिसमें 194 पुरुष और 37 महिला अधिकारी शामिल हैं। इस बार एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होने वाले इस बैच में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से पास आउट होने वाली महिला कैडेट्स का पहला बैच भी शामिल था, जिन्होंने यहां अपनी एडवांस ट्रेनिंग पूरी कर इतिहास रच दिया। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर नारी शक्ति की जमकर तारीफ की।
1: मैं इंडियन एयरफोर्स समेत इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम के ट्रेनीज को भी विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने आज कोवेटेड विंग्स अर्जित की है। साथ ही मैं सभी एवार्डीज को भी उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय के इन वार सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज को भी भली भांत समझें। साथियों, आपको इन्हें अडॉप्ट करना है और जरूरत पड़ने पर अमेंड भी करना है। मैं विशेष रूप से महिला पायलट को भी बधाई देता हूं, जो आज इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हो रही हैं। नारी शक्ति की बढ़ती संख्या से हमारी एयरफोर्स और भी मजबूत, बैलेंस्ड और रोबस्ट हो रही है। यह हमारी इंक्लूसिव फोर्स की ताकत को दर्शाता है।
0: कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का असली रोमांच तब देखने को मिला जब आसमान में भारत की हवाई ताकत की नुमाइश शुरू हुई। सुखोई 30 एमकेआई के हैरत अंगेज करतबों, सारंग हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के शानदार परफॉर्मेंस ने वहां मौजूद दर्शकों की सांसें थाम दी। वहीं जमीन पर महिलाओं की शक्ति, एयर वॉरियर ड्रिल टीम की राइफलों की खनक ने समा बांध दिया। देहरादून और हैदराबाद की ये दो तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि भारत की सैन्य शक्ति अब और अधिक आधुनिक, समावेशी और अचूक हो चुकी है। आईएमए की थल सेना की जावाज बेटियां जहां देश की सरहदों पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार हैं, वहीं एयरफोर्स एकेडमी के ये नए फ्लाइंग ऑफिसर्स पलक झपकते ही आसमान से दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारतीय सेना से जुड़ी एक और गुड न्यूज सामने आई है। डीआरडीओ ने लगातार 3 सफल परीक्षण कर भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का लोहा मनवाया है। इन सफल परीक्षणों के माध्यम से भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर्ड डिफेंस और समुद्र में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। इन तीनों परीक्षणों के साथ ही भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM को हवा में नष्ट करने की तकनीक मौजूद है। इसके साथ ही भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज NASAMR का भी सफल पहला परीक्षण किया है जो देश की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पिंक सिटी जयपुर में की गई है जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई हैं। स्क्रीनिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्क्रीनिंग के दौरान 2611 के असली हीरोज यानी कि नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित भी किया गया है। कंगना रनौत यहां पर पहुंची हुई हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पर मौजूद रहे और पूरी स्टार कास्ट की मौजूदगी के साथ ही यहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद थी। तो वहीं नर्सिंग हीरोज को सम्मानित किया गया। यहां पर पूरी फिल्म के स्टार्स मौजूद थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान यहां पर कई लोगों को स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया था और बताया जा रहा है कि फिल्म को अच्छा रिस्पांस भी मिला है।
3: सो सबसे पहले तो हम उप मुख्यमंत्री मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये फिल्म जो है पूरी देखी और साथ में जो बहनों के लिए और कर्मचारियों के लिए ये फिल्म बनाई गई है उसके लिए हमने इनसे ये विनती की है कि फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जैसे हेल्थ वर्कर्स और इस फील्ड से इस लाइन से जुड़े हुए के लिए तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक मैम कहेंगे इनको कैसी लगी, हम तो खैर बोलते ही आ रहे हैं। हमें जयपुर के लोगों को जो कहते हैं अदृश्य हीरोज जो जयपुर के हैं उनको आज सम्मानित किया गया तो हमें बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि जो कर्तव्य की जो ये भाव है हम भी अपने कर्मचारियों से सीखें कि कैसे देश के लिए बिना किसी क्रेडिट के और बिना किसी सराहना के कई बार दिन ब दिन हर दिन कंसिस्टेंटली सालों तक दशकों तक वो अपनी पूरी जो है सर्विस देश को देते हैं। जब मैंने कहानी सुनी थी तो सबसे ज्यादा मुझे ये बात चुभी थी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तक उन बेचारों को और तो क्या इंक्रीमेंट तक नहीं मिला है वो जो उनको प्रॉमिस किया गया था। तो वो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, ये सब चीजें जो आपने देखा कैसे चुप रहने को भी कहा था, कहीं ना कहीं वो अंडरप्ले करना चाहते थे इस इंसिडेंट्स को। और हमने ये भी देखा है कि पहले कसब ने कलावा पहन के सब करके कहीं ना कहीं उसको भटकाया भी गया था। तो हम जो है अब हमारी सरकार जो है प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमने फिल्म में अंत में दिखाया कि प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे कर्मचारियों को भारत भाग्य विधाता का ये नाम दिया है जिससे हमारी ये फिल्म प्रेरित है।
4: जयपुर में कंगना रनौत की मूवी भारत भाग्य विधाता की स्क्रीनिंग हुई जहां कंगना रनौत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ स्क्रीनिंग में मौजूद रहे और यहां उस स्क्रीनिंग के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स और नर्सेस भी मौजूद रहे जिन्होंने वो मूवी देखी क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल और नर्स की जिंदगी से रिलेटेड वो मूवी थी। 26/11 के ताज अटैक से रिलेटेड वो मूवी थी, उसमें एक नर्स के रोल से रिलेटेड वो मूवी थी। तो इन नर्सेस से फ्यूचर नर्सेस से जानेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी।
5: जब नर्स अपना सारा काम कर रही थी इवन व्हेन टेररिस्ट वर देयर तब हमें बहुत अच्छा लगा कि नर्स तब भी अपना रोल प्ले कर रही थी।
6: उनकी हिम्मत देख के इनकी कॉलेज उनका डेडिकेशन देख के हमें वी वर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड इंस्पायर्ड बाय दैट। वो बहुत अच्छा प्राउड दैट वी आर अ नर्स।
4: एक नर्स होने के नाते आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट उस मूवी में आपके लिए क्या था?
7: मैम जब वो बच्चा होता है तब वो बोलते हैं कि बच्चा जिंदा है, गुजबम्स आते एकदम से, बहुत अच्छा लगा। एक लाइन में कह सकते हैं प्राउड टू बी ए नर्स।
4: नर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है इस मूवी में। नर्स के रोल को कुछ जगह पे अंडर एस्टिमेट किया कि लोगों की थिंकिंग क्या होती है और वहीं कई रोल्स ऐसे थे जहां पे गर्व महसूस कराया गया। आपको पर्सनली कैसे लगता है, अभी आप एक स्टूडेंट है, अभी आप ऐसे केसेस देखते हैं और ऐसे आगे भी काम करना चाहते हैं, कौन सा मोमेंट है आपको इंस्पायरिंग लगा और ऐसे केसेस के लिए आप क्या खुद क्या कहना चाहेंगे?
7: मैम सबसे ज्यादा तो मुझे तब लगा जब एक नर्स होके वो टेररिस्ट को बताने जाती कि ये एज ए टेररिस्ट है, और इतने टेररिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने सेफली वहां पे डिलीवरी करवाई, वो सबसे ज्यादा गर्व का महसूस होता है कि हम एक नर्स होने के नाते इस प्रोफेशन को और सम्मानजनक और समाज में सेवा के लिए आगे।
4: देखिए इससे ये पता चलता है इस पूरी मूवी से कि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो नर्स का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, या जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक प्रोफेशन एक दूसरे से जुड़ा होता है। आज अगर रोड की सफाई हो रही है, किसी भी जगह की सफाई हो रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई चेहरे हैं, किसी न किसी काम के पीछे, रेलवे में काम करने के पीछे भी कोई ना कोई चेहरा है। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है, हर एक काम एक दूसरे से जुड़ा है, हर एक प्रोफेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक काम की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मूवी हमें सिखाती है और ये भी बताती है कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हर एक पेशेंट की अच्छी सेहत के पीछे चेहरा एक नर्स का होता है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
2: लड्डू आमतौर पर भगवान को भोग लगाने के लिए बनाए जाते हैं या फिर खुशी के मौके पर बांटने के लिए। हम आपको गुजरात के जामनगर में लड्डू बनाने और बांटने की एक अनोखी परंपरा से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिर वहां लड्डुओं के भोग से भगवान का क्या खास कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट।

0: एक तरफ ढेर सारे लड्डुओं को सजाने का काम जारी है तो दूसरी तरफ लड्डू बनाने की भी तैयारी है। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। यहाँ पर इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएं और दूसरे लोग लड्डू बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि लड्डू किसी शादी समारोह या उत्सव के लिए नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इन्हें गाय और दूसरे पशुओं को खिलाया जाएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से वरुण देव प्रसन्न होते हैं और मॉनसून में अच्छी वर्षा होती है, जिससे अच्छी फसल होती है और खुशहाली आती है।
1: यह सेवा कार्य पिछले 22 वर्षों से चल रहा है। इसके तहत 900 किलो गेहूं के आटे, 300 किलो तेल और 300 किलो गुड़ सहित करीब 1500 किलो सामग्री से लड्डू बनाए गए हैं।
0: यहाँ पर हर साल वर्षा ऋतु से पहले पशु सेवा के माध्यम से प्रकृति और वरुण देव के प्रति आस्था जताने के लिए पशुओं के बीच लड्डू वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कृष्णनगर युवा समूह और महिला सत्संग मंडल के 250 से 300 स्वयं सेवकों की ओर से इन लड्डुओं को जामनगर शहर सहित आसपास के गांवों में बांटा जाएगा, ताकि वरुण देव प्रसन्न हो और किसानों की किस्मत चमके। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में इस वक्त आम का सीजन है तो जगह जगह पर आम की बहार भी देखी जा रही है। चाहे बाजार हो या फिर भगवान का दरबार, हर तरफ आम ही आम नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में अनोखा नजारा दिखा। यहाँ पर एक मंदिर में सैकड़ों किलो आम का चढ़ावा चढ़ाया गया और उसी का प्रसाद भी श्रद्धालुओं में बांटा गया। देखिए रिपोर्ट।

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासन जिले के कारंजा लाड की ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का आरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बन के सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: बेलखेड़ गांव से हम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हम यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा
2: करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: क्या घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ।
7: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
8: सच्चाई की कसौटी पर कसते तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: पुतिन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर। भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:19 तक नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:13 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कि घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, संतान की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा, देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें, तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगें बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला, हल्का नारंगी भी रख सकते हैं, या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पे गुंबद लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में। गुंबद का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे, इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता आपकी हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां से ऊर्जा कैसी लेनी है आपको, किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी है। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए, ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा पूजा स्थान के बीचों बीच में। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फिट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें। अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, करियर में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, एक घर के पूजा स्थान में लोगों की मान्यता है कि माँ काली का और भगवान भैरव का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप मां काली का चित्र भी लगा सकते हैं और भगवान भैरव का चित्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि घर में मां काली या भगवान भैरव की उग्र पूजा मत करिएगा। घर के पूजा स्थान पर शनि से संबंधित कोई चित्र, शनि से संबंधित कोई मूर्ति या शनि से संबंधित कोई यंत्र, ये आपको नहीं लगाना है। शनि देव का चित्र, मूर्ति या यंत्र लगाना पूजा स्थान पर और नियमित उसका दर्शन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर बैठकर रोज शनि देव का मंत्र पढ़िए, रोज शनि चालीसा पढ़िए, अच्छा है, लेकिन शनि देव का चित्र लगाना, यंत्र लगाना उचित नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाते। तो जिन घरों में पूजा स्थान नहीं रहता या पूजा स्थान बना तो लिया है, उसमें धूल जमे जा रही है, कभी दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते, वहाँ पर उन घरों में बीमारी बहुत होती है और उन घरों में धन की बहुत सारी बर्बादी होती है। आपके घर में पूजा स्थान आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होना चाहिए और पूजा घर की नियमित साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए। देखिए, कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए मंदिर में जाके या घर में। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम नाम का 108 बार जप करिए, राम राम राम। तो श्री राम के नाम का 108 बार जप करें, ये रोज करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं। 3 महीने निरंतर ये उपाय करें, मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
1: पुतीन ने दिया सुपर किलर का ऑफर, अदृश्य योद्धा के नाम से दुश्मनों में टेरर, भारत रूस की यारी, चीन पाकिस्तान पर भारी। देखिए रणक्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: ट्यून इन रेडियो ब्रिंग्स द वर्ल्ड ऑफ रेडियो स्ट्रेट टू यू। म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, podcasts and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
9: उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
2: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही हैं। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देख कर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान, जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल, आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होम स्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

सुकोई 30 MKI, मैग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और लाइस कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है, अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवीं पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलरी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है, क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों के डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें, तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं, साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहते हैं कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को ही रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना, कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
5: How they looked after game one.
6: I mean, they were frustrated.
4: The Daily.
7: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है।

0: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भारत और रूस के संबंध अब केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संबंध इससे ऊपर उठ गए हैं। दोनों संयुक्त रूप से नए नए हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, फिर चाहे वो T-90 टैंक हो या फिर Su-30 फाइटर जेट्स की बात हो। हाल फिलहाल में इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत ने लाइसेंस के तहत अपने आयन के अपग्रेडेशन का काम भी शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश मिलकर अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। 1960 के दशक से भारत रूस के रक्षा संबंध चले आ रहे हैं। आज भी भारत की सेना में जो हथियार, टैंक, मिसाइलें या फिर लड़ाकू विमान हैं, उनमें से करीब आधे रूस से आए हैं। बीते 6 दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम और मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में मॉडर्न हथियारों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से रूस के साथ वेपन एक्सपोर्ट में कमी आई है। साल 2011 से 2015 में भारत के कुल रक्षा आयात में रूस की साझेदारी 70% थी। साल 2016 से 20 में ये हिस्सेदारी घटकर 51% रह गई। साल 2021 से 2025 के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये घटकर 40% रह गई है। इस गिरावट के बावजूद रूस के कुल वैश्विक हथियार निर्याता का 48% हिस्सा अकेले भारत को जाता है। भारत रूस से आमतौर पर इसलिए हथियार खरीदता है क्योंकि रूस भारत को अत्याधुनिक और बेहद जरूरी हथियार जैसे सबमरीन, मिसाइल बोट 1960 के दशक से ही दे रहा है। वहीं पश्चिमी देश तब इसे भारत को देने के इच्छुक नहीं थे, वो भी तब जब हिंद महासागर दुनिया के जहाजों के लिए एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इतना ही नहीं, साल 1987 में सोवियत संघ ने भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइलों से लैस सबमरीन K-43 को लीज पर भी दिया था।
1: रूस ने भारत को 3 अकुला क्लास पनडुब्बियां लीज पर दी थी। हालांकि लीज पूरी होने के बाद रूस ने इसे वापस ले लिया, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसे रूस ने अपनी पनडुब्बी दी थी।
0: रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस ने भारत को जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ी मदद की। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दी, जिसे अब बड़े पैमाने पर तीनों ही सेनाओं में शामिल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस में जमकर तबाही मचाई। यही नहीं, रूस ने भारत को उन क्षेत्रों में तकनीक देने का ऑफर दिया है जिसे कोई भी देश देने के लिए तैयार नहीं होता।
1: भारत और रूस दोनों मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2 पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके बन जाने के बाद चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल ये सीधे चीन की DF-17 के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
0: ब्रह्मोस 2 के बाद भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट्स हैं। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी फिलहाल चल रहा है, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द काम शुरू करने वाले हैं। सोचिए, जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर उसका हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बन जाए तो क्या होगा।

0: ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व निदेशक अतुल राणे ने रूसी एजेंसी आरटी को एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और रूस दोनों मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं और इसकी नींव रखी जा चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि दोनों अब इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और ये यकीनन न सिर्फ इन दोनों की दोस्ती के लिए एक नया आयाम होगा बल्कि भारत की ताकत में भी इजाफा करने वाला है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ थिंक टैंक का मानना है कि ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 5 से मैक 8 तक होने वाली है। इसकी रेंज भी करीब 1500 किलोमीटर तक होगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसके वजन को भी घटाकर करीब 1.3 टन रखा जा सकता है ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस से भी दागा जा सके।
1: ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है ये एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 1 का। ब्रह्मोस 1 ने अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया हुआ है। उसकी जो मारक क्षमता थी, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। अब जब ब्रह्मोस 2 है इसमें देखिए एक स्पेशल फीचर डाला गया है, वो एक इसकी जो मैक स्पीड जो है वो 6, 7 और 8 तकरीबन 8 मैक स्पीड पे जा सकते हैं, यानी सुपरसोनिक मिसाइल बनेगा। और इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, वो डीप जो बंकर है जो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर है उसमें वो डीप पेनिट्रेशन कर सकता है और उसको स्ट्राइक कर सकता है। लिहाजा ये एक एडवांस सिस्टम है। तमाम तरीके के देश जो अपना दुश्मन की एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च लैब बनाते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाते हैं, उनको ये टारगेट करने में सक्षम है।
0: भारत के साथ दशकों से रूस दमदार दोस्त बनकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। भारत और रूस की दोस्ती का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत रूस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा। भारत को आजादी मिले 4 महीने ही गुजरे थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त तब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947 रविवार का दिन सोवियत संघ का एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उनका नाम था किरिल नोविको। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट की। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टो ने गाय की रस्सी नेहरू के हाथ में थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई और देश हमारे प्रधानमंत्री को गाय गिफ्ट करे मतलब कि दोस्ती को गाढ़ा करने का एक भी मौका न छोड़ना। बाईस जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। दरअसल रक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर आयरलैंड ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन किया अमेरिका, ब्रिटेन, चिली, वेनेजुएला, फ्रांस जैसे देशों ने, जिसमें आयरलैंड भी शामिल था। ये वो दौर था जब पश्चिमी देश भारत के खिलाफ थे और इसके पीछे सीधे तौर पर मकसद ये था कि कश्मीर को भारत से छीन कर पाकिस्तान को दे दिया जाए। और ऐसे समय में एक देश जो भारत के साथ खड़ा था, जिसने भारत का साथ निभाया, दोस्ती निभाई, वो था रूस।
2: भारत के विकास का आधार रखने में रूस का अहम योगदान माना जाता है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब स्टील लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा, उसने फौरन खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई।
0: साल 1971, पूर्वी पाकिस्तान जो इस वक्त बांग्लादेश है, वहां पर लगातार बंगालियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें अमेरिका लगातार दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने ये युद्ध थोपा है। ऐसे में आधे से ज्यादा देश, जिसमें फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, यूएई भी था, ये तमाम देश अमेरिका का साथ दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय में भी रूस भारत के साथ ही खड़ा रहा।
2: 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिए। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेना न पहुंचे, इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने का आदेश देकर उसे रवाना कर दिया गया।
0: तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी थी। उन्होंने अपनी सेना को कहा था कि भारत के बेस पर हमला किया जाए, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा था। अमेरिकी सेना के पास खुली छूट थी कि वो भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में रूस ने एक ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा।
2: रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका उसके साथ क्या करने वाला है। भारत ने भी जवाब में कहा कि हमारे वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार हैं। तब रूस ने खतरनाक चाल चली। सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोर्शकॉफ ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने के लिए कहा ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीरें खींच सके। रूस की नौसेना की SSGN यानी क्रूज मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया। हुआ भी वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीरें ली। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है, उसके होश उड़ गए। अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई। अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो रूसी पनडुब्बी उनका करियर डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं चाहता था। मजबूरी में यूएसएस एंटरप्राइज को नए निर्देश दिए गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने दिशा बदली और वो श्रीलंका चला गया। वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाया।
0: भारत ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, जो कि रूस की मदद से तैयार किया गया था। फिर आया साल 1984, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा रूसी शटल से अंतरिक्ष गए, और ये वो दौर था जब भारत का कोई पहला विंग कमांडर अंतरिक्ष में यात्रा के लिए गया था। यहाँ से भी भारत और रूस की दोस्ती और गहरी होती चली गई।
2: भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई, उस वक्त काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही भारत निर्भर था। और अब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का इस्तेमाल कर इस भरोसे को कायम रखा। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात की जाए तो 41% से ज्यादा उपकरण रूसी निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। वर्षों से भारत और रूस के बीच बार सेलर रिलेशनशिप, ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबादत लिखी गई है। भारत और रूस मिलकर दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं रूस से अधिग्रहण लाइसेंस की मंजूरी मिलने के बाद देश में ही T-90 टैंक का अपग्रेडेशन हो रहा है।
1: हिंदुस्तान की जो डिफेंस नीति है, पहले तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कंट्री अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है और जिसके जो डिफेंस के प्रोडक्शन आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट है, तो हम उससे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के तहत हमने जर्मनी से पनडुब्बी, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से जी के जो तेजस 2 के इंजन की डील की बातें आगे बढ़ी हैं, देखिए वो कहाँ तक मेटलाइज होते हैं, क्या आगे प्रोग्रेस होता है, ये देखने वाली बात है। हमने अपना जो एक्विजिशन, जो डिफेंस एक्विजिशन है, वो ओपन रखा है। रशियन इक्विपमेंट भी हम लेते हैं, नेटो के भी इक्विपमेंट लेते हैं, जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जो हमारे पाकिस्तान या चाइना एडवर्सरी को हर लेवल पे चेक करता है और काउंटर करने के लिए तैयार रहता है, और जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना GSQR खुद सेट करते हैं। फिर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में कहाँ किस कंट्री पे कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोक्योर करते हैं।
2: मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या फिर उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में हुई। मौजूदा दौर में भले ही भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती काफी गहरी हुई हो, रूस से हालांकि भारत काफी कुछ रक्षा संसाधन खरीदता है, सामान खरीदता है, लेकिन अब भारत की डील अमेरिका के साथ भी हो रही है। बावजूद इसके रूस और भारत की दोस्ती अभी भी कायम है, यानी दोनों के रिश्ते अभी भी कायम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस भारत का सच्चा दोस्त है। भारत का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, कई गाइडेड मिसाइलें, विध्वंसक और नया नया खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के साथ भारत के रक्षा सहयोग को दिखाता है। '91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 साल में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत के साथ अपना साथ कभी नहीं छोड़ा और भारत ने भी रूस से सच्ची दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत रहे, दोनों देशों में सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं बदला। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरी है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
5: Swing and a foul out of play off to the left.
4: Big 12 Radio.
6: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
4: Talk Sport.
7: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
4: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
13: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे, और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
14: पानी की असली कीमत क्या होती है, इसका एहसास अक्सर जरूरत के वक्त ही हो जाता है। इस वीडियो में एक प्यासा बंदर बड़ी समझदारी के साथ नल के पास पहुंचता है। वो पहले नल को चलाता है और फिर गिरते पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ये नज़ारा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है कि जल हर जीवन के लिए कितना जरूरी है। इंसान हो या जानवर, जीवन की डोर पानी से ही जुड़ी है। पिता और बेटी का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा होता है। इस वीडियो में एक पिता अपनी नन्ही बेटी के साथ खेलते खेलते उसे जादू दिखाने लगते हैं। चादर को ऊपर नीचे करने के दौरान वो अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। अगले ही पल बेटी की मासूम आंखें उन्हें ढूंढने लगती है और वो बड़ी प्यारी आवाज में अपने पापा को बुलाने लगती है। ये भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: धीमे धीमे पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान, जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होम स्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।

का सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: है जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उनकी चिंताओं को समझता हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है, दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying, how much it meant to our director Butchi sir, and I think the politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छी अम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: आई वॉन्ट टू रिमेम्बर द गुड थिंग्स। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौट कर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया ही क्या लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's, ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwaish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसो दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान, धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल, आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा, होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह, 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
3: देहरादून में हुई IMA की 158वीं पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। 555 कैडेट्स अंतिम पग पार कर बने सैन्य अधिकारी, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी ली। ऐतिहासिक रही इस बार की पासिंग आउट परेड, पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी परेड में हुई शामिल। 34 मित्र देशों के सैन्य अधिकारी हुए पास आउट, बांग्लादेश के जैफ सादत अलवी बने सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट। IMA पासिंग आउट परेड में जश्न और भावुक पलों के साक्षी बने परिजन, तो वहीं चेतवुड बिल्डिंग ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई परेड। हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी की 217वीं कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए समारोह में शामिल। राजनाथ सिंह ने ली शानदार परेड की सलामी, बढ़ाया नौजवानों का मनोबल। रक्षा मंत्री ने पास आउट होने

0: वाले कुल 231 फ्लाइट कैडेट्स को प्रदान किया राष्ट्रपति कमीशन, इनमें 194 पुरुष और 37 महिला अधिकारी शामिल। समारोह के दौरान वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाई शानदार कलाबाजियां। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में बनाई कई शानदार फॉर्मेशंस, दर्शक हुए रोमांचित। देश को मिली 3011 नए अग्निवीरों की शक्ति, ओडिशा के खोर्धा में हुई पासिंग आउट परेड, जोश से भरे अग्निवीरों के कदम ताल से गूंजा आईएनएस चिलिका। पासिंग आउट परेड में शामिल अग्निवीरों में 116 महिला अग्निवीर भी शामिल, पासिंग आउट परेड से कोस्ट गार्ड को मिले 265 नाविक। भारतीय सेना ने लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती गांवों के स्कूली बच्चों को बटालिक में सिंधु व्यू पॉइंट का कराया दौरा, करगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजन। इस दौरे के दौरान बच्चों को सीमावर्ती इलाकों में जीवन, सैनिकों की चुनौतियों और सशस्त्र बलों के साहस बलिदान को करीब से जानने और समझने का मिला मौका। बेंगलुरु में 13 से 14 जून को राइज कॉन्क्लेव का होगा आयोजन, 100 से ज्यादा स्टार्टअप अपनी तकनीक का करेंगे प्रदर्शन। फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कल पीएम मोदी और मैक्रों की अगुवाई में भारत और फ्रांस के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, बैठक में दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे दोनों नेता। नीस में कल भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन करेंगे मोदी और मैक्रोन, समिट में भारत फ्रांस समेत दुनिया भर के इनोवेशन स्टार्टअप होंगे शामिल। नीस शहर में 14 से 16 जून तक चलेगा भारत इनोवेट्स 2026 समिट, नीस शहर में चलने वाली ट्रेन पर लगाए गए भारत इनोवेट्स 2026 के संदेश। भारत इनोवेट्स 2026 में 120 भारतीय इनोवेटर, 500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ ग्लोबल सीईओ और इंडस्ट्री लीडर होंगे शामिल। आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 955 करोड़ की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इस दौरान सीएम ने हस्तशिल्प मेले में भी शिरकत की, क्षेत्र की हस्तशिल्प और संस्कृति की समृद्ध विरासत का जायजा लिया। मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को किया गया सम्मानित, बच्चों का भी दुलारते हुए नजर आए सीएम योगी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर लद्दाख के तांगसे में कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय सेना बाल श्रम के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। तांगसे के सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों और शिक्षा पर दिया गया जोर, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। यूपी में टीचर्स के लिए आई गुड न्यूज, शिक्षकों को जल्द मिलेगा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, योजना के पोर्टल का ट्रायल शुरू। फजल का पहुंचे हरियाणा के सीएम सैनी, बाबा भूमन शाह की पवित्र गद्दी पर टेका मथा, लिया संतों का आशीर्वाद। खूंटी में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवड़ी मंदिर पहुंचे हेमंत सोरेन की पूजा अर्चना और टेका माथा। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम धामी, गदरपुर में होने वाली इंटरनेशनल कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और स्थानीय संस्कृति का किया अनुभव। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने देखी कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 26/11 के रियल हीरोज नर्सिंग स्टाफ को किया गया सम्मान, ग्रुप फोटो भी कराई क्लिक। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को किया सम्मानित, तो वहीं मालवीय नगर और सैदुल आजाब की दुखद घटनाओं में लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस का दिया था परिचय। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की मौजूदगी में ई ऑटो ने मसूरी के कठिन चढ़ाई वाले रास्तों पर संतोषजनक प्रदर्शन। प्रशासन ने शुरुआती प्रशिक्षण को सफल और सुरक्षित माना। एनटीए ने परीक्षा कर्मयोगी परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया लॉन्च। एनटीए परीक्षाओं के लिए सुपरविजन और इनविजिलेशन के को बेहतर बनाना है मकसद। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुए पहाड़। शिमला समेत सभी पर्यटक स्थल पर सैलानियों की भारी भीड़। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और एडवेंचर स्पोर्ट्स का ले रहे हैं मजा। सैलानियों के साथ ही वाहनों की लगी लंबी कतारें। बीते 24 घंटों में शिमला में करीब 35,000 गाड़ियों की हुई एंट्री। 12 जून तक 2.5 लाख वाहनों का आवागमन। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। मैदानी इलाकों की गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। जून का अर्थ महीना बीत जाने के बावजूद डलहौजी में ठंड का एहसास हुआ। सुहावने मौसम का जमकर आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन सतर्क। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कश्मीर का मौसम लोगों को कर रहा आकर्षित। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटक कर रहे हैं डल झील का रुख। शिकारा राइड का लुत्फ उठाते पर्यटकों से झील में बढ़ गई है रौनक। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ के बीच बारिश से ट्रैफिक जाम। हालांकि तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल्लू हाईवे पर पर्यटकों की भारी भीड़। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जाम खुलवाने में जुटाया प्रशासन। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। होटल में 80-85% की बुकिंग से होटल मालिक खुश। वीकेंड पर हरिद्वार में चारधाम यात्रियों और सैलानियों की भीड़ उमड़ी। दिखी वाहनों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन। पुंछ और जम्मू के बीच सड़क संपर्क बाधित। नेशनल हाईवे 144 ए पर गिरा पहाड़ों का मलबा। रास्ता साफ कर ट्रैफिक बहाल करने में जुटा प्रशासन। वाराणसी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी से ढका आसमान। हालांकि गर्मी और उमस से निजात मिली। देशभर में मॉनसून की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में और बारिश और आंधी तूफान के होने की संभावना। महाराष्ट्र में लू चलने के आसार। बद्रीनाथ में 10,70,000 श्रद्धालुओं ने किए अब तक दर्शन। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्त भगवान विष्णु के जय घोष से गूंज रहा पूरा धाम। पुरुषोत्तम मास होने के कारण इस साल मई जून में भी भक्तों की भारी भीड़। गंगोत्री यमुनोत्री में भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भक्तों के दर्शनों का आंकड़ा। अब तक करीब 11.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 5,88,862 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए जबकि यमुनोत्री धाम में 5,61,124 श्रद्धालु कर चुके हैं मां यमुना के दर्शन। पर्वतीय क्षेत्रों में प्री मॉनसून की बौछारों की दस्तक के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं। पल पल बदलते मौसम के बीच भी लगातार धामों की ओर पहुंच रहे हैं यात्री। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर तिरुचेंदूर की दान पेटी से 4,20,00,000 के रिकॉर्ड धनराशि प्राप्त। कुछ समय पहले भी 4 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ था संग्रह। इस नकद राशि के अलावा भक्तों ने भारी मात्रा में सोना चांदी भी चढ़ाया जिसमें 1 किलो 62 ग्राम सोना और 26 किलो चांदी शामिल। मंदिर की दान पेटी से देश विदेश के भक्तों द्वारा अर्पित किए गए 963 विदेशी नोट। लगातार बढ़ रही है विदेशी भक्तों की आस्था। दान करने वाले भक्तों ने भगवान को चांदी का पालना किया अर्पित सैकड़ों वॉलंटियर महिलाओं ने की नोटों की गिनती। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भक्तों की सुविधाओं के लिए नया प्रशासनिक भवन बनाया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और बड़ी उपलब्धि हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाले दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। दिल्ली में बिजली हुई महंगी 1% से 3.5% तक बढ़े दाम डीईआरसी ने मासिक पीपीएसी चार्ज को मंजूरी दी। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों पर बढ़ेगा बिल जून से उपभोक्ताओं पर दिखेगा असर। 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत सब्सिडी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई भट्ट कैम की हॉरर मूवी हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट 2.5 करोड़ रहा देश में नेट कलेक्शन। इम्तियाज अली की फिल्म वापस आऊंगा को क्रिटिक्स से मिला अच्छा रिस्पॉन्स ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रही फिल्म की नेट कमाई। भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन की बायोपिक की शूटिंग साल के अंत तक शुरू होगी निर्देशक नीरज पांडे करेंगे डायरेक्ट। धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज 10 जुलाई को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। ओटीटी पर सनी देओल और अक्षय खन्ना होंगे आमने सामने 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी इक्का। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में कल भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दोनों टीमों के बीच एस्बेस्टन में होगा मैच। पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से ही भारत करेगा महिला T20 वर्ल्ड कप के सफर का आगाज हरमनप्रीत की कप्तानी में जीतने के लिए टीम का जोश हाई। T20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा 16 मैचेस में से 13 मैचेस में हासिल की है जीत। T20 वर्ल्ड कप में भी 6 बार भिड़ी हैं भारत और पाकिस्तान की टीमें जिनमें से 4 बार टीम इंडिया ने ही मारी है बाजी। अपने पहले आईसीसी T20 खिताब को हासिल करना है भारतीय टीम का लक्ष्य। पिछले साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप को जीतकर बनी थी चैंपियन। बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप के स्वागत में दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल बनाई गई इस फुटबॉल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। फुटबॉल की ऊंचाई 47 फीट और वजन 2200 पाउंड है 2013 में बने पुराने रिकॉर्ड से बड़ी। बॉस्टन शहर के लिए गर्व का पल बॉस्टन के लोग इस रिकॉर्ड उपलब्धि से बेहद खुश। पहले सबसे बड़ी फुटबॉल का रिकॉर्ड दोहा के नाम था वहां 39 फीट ऊंची फुटबॉल बनाई गई थी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के तहत बॉस्टन से 7 मैचेस खेले जाएंगे पहला मैच स्कॉटलैंड और हैदी के बीच 13 जून को। जर्मनी के पहले वर्ल्ड कप मैच से पहले कोरोन चिड़ियाघर के हाथी तारक ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की उसने जर्मनी वाली गेंद को चुना। 4.5 टन वजनी तारक ने गेंद को इतना दबाया कि वो धमाके के साथ फट गई इसे जर्मनी की मजबूत जीत का संकेत माना जा रहा है। हाथी की देखभाल करने वाली इंग्रिड वॉलनर ने कहा कि तारक का फैसला बिल्कुल साफ था उनके मुताबिक जर्मनी जीत के साथ शुरुआत कर सकता है। डॉर्टमुंड के ऑर्गुटान वॉल्टर ने भी मैच का नतीजा बताने की कोशिश की हालांकि उसका चुनाव तारक जितना स्पष्ट नहीं रहा। अब सभी की नजर जर्मनी और कोराकाओ के मुकाबले पर जर्मन फैंस जानवरों की भविष्यवाणी के सच होने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। न्यूयॉर्क में ब्राजील का जलवा देखने को मिला फीफा वर्ल्ड कप का छाया जुनून टाइम्स स्क्वायर ब्राजील के हरे पीले रंग में रंगा। ब्राजील आज मोरक्को के खिलाफ अपने अभियान की करेगा शुरुआत चरम पर पहले मैच का उत्साह। फैंस ने बढ़ाया जोश ढोल नगाड़ों और गीतों के साथ समर्थकों ने टीम का उत्साह बढ़ाया। अमेरिका पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का रंग, मेक्सिको की जीत के बाद न्यूयॉर्क में भी फुटबॉल का माहौल गरमाया। छठे खिताब की उम्मीद, ब्राजील से आए और अमेरिका में बसे फैंस रिकॉर्ड छठा विश्व कप जीतने के लगाए हैं आस। न्यूयॉर्क में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंचा, लोग धूप से बचने के लिए ठंडी जगहों का सहारा लेते दिखे। इतनी गर्मी पड़ने से पर्यटक हुए बेहाल, लगातार पानी पीकर खुद को रख रहे हैं हाइड्रेटेड। वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुंचे हजारों प्रशंसक, तेज धूप से परेशान नजर आए पर्यटकों के मुताबिक न्यूयॉर्क की गर्मी उम्मीद से कहीं ज्यादा। खिलाड़ियों और दर्शकों उन दोनों के लिए तेज तापमान बन सकता है चुनौती, आयोजक भी मौसम पर बनाए हुए हैं नजर। फुटबॉल प्रशंसकों का मानना है कि नॉर्वे और स्वीडन जैसे ठंडे देशों की टीमों को इस मार्ग मौसम से ज्यादा परेशानी हो सकती है। हांगकांग के वहामपोवा वर्ल्ड मॉल में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने लोगों का ध्यान खींचा, रोबोट्स ने मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन के डांस मूव्स की शानदार नकल की। द सिंघुआ यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने डांस परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को हैरान कर दिया, बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए पहुंचे। सिर्फ डांस ही नहीं, इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला, रोबोट्स की फुर्ती और संतुलन ने सभी को प्रभावित किया। आयोजकों का कहना है ऐसे कार्यक्रमों का मकसद आम लोगों को अत्याधुनिक रोबोटिक्स तकनीक से परिचित कराना है, बच्चों में भी इस तकनीक को लेकर खास उत्साह नजर आया। विशेषज्ञों के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, भविष्य में ऐसे रोबोट मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में निभा सकते हैं भूमिका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around the clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

0: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
2: La Que Buena.
1: ESPN Radio.
3: We know LeBron has to be the best player on the planet to
1: get The Daily.
4: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Sage University, transforming your passion into profession.
9: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी, 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि, हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाले दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण, नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई कर्तव्य।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: अच्छा, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल से करती हूँ। क्या आपको पता है आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? देखिए, घर का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है पूजा स्थान, क्योंकि यहीं से सकारात्मकता का संचार होता है, मन को शांति प्रदान होती है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए आपके घर का पूजा का स्थान, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए इस दौरान, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाते। तो जिन घरों में पूजा स्थान नहीं रहता या पूजा स्थान बना तो लिया है, उसमें धूल जमे जा रही है, कभी दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते, वहां पर उन घरों में बीमारी बहुत होती है और उन घरों में धन की बहुत सारी बर्बादी होती है। आपके घर में पूजा स्थान आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होना चाहिए और पूजा घर की नियमित साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 14 जून 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:19 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:13 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि घर में पूजा स्थान कैसा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले पंडित जी, सबसे पहला सवाल जो कि किसी के भी जहन में आएगा कि घर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वहां पर पूजा स्थान नहीं है तो घर में एक बहुत बड़ी कमी जो है वो खटकती है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है घर में पूजा स्थान होना?
1: जी, सरगम ने शुरुआत में ही बताया कि घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर, फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, संतान की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो पंडित जी, अगर कोई पूजा स्थान या फिर मंदिर बना रहा है तो किस रंग का प्रयोग करना चाहिए और इसे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा? देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगें बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला, हल्का नारंगी भी रख सकते हैं या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पे गुंबद लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में। गुंबद का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न भाग्य जी ने लिखा है हमें, इनका नाम भाग्य है, कर्नाटक से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 10 मई 2007, 4:11 शाम को बेंगलोर कर्नाटक। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी मेडिकल की परीक्षा की नीट की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को सफलता मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए भाग्य जी, आपकी जो पुत्री है उसकी कुंडली है ही मेडिकल वाली, तो उसे मेडिकल में तो जाना ही है। इस साल भी उनके सफलता की बेहतर संभावनाएं बन रही हैं और अगर वो ठीक से परिश्रम करेंगी तो साल 2026 में उनका सिलेक्शन हो सकता है और भविष्य में मेडिकल फील्ड में इनको काफी सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दो उपाय करने की आवश्यकता है इनके बेहतर सफलता के लिए। एक तो आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है हमारे दूसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, हमारी इसी ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी आज का दूसरा प्रश्न रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी ने गोरखपुर से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 12 नवंबर 1995 का जन्म है पुत्र का, 4:45 शाम को गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी। रामेश्वर जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 के आरंभिक समय में इनका विवाह होगा, लेकिन एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, वो थोड़ा जरूरी है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं मध्यम हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी की नौकरी में आपके सुपुत्र बहुत अच्छी तरक्की करेंगे ऐसा लग रहा है। एक तो इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करें तो काफी बेहतर होगा।
0: पूजा स्थान में देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार करें, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां से ऊर्जा कैसी लेनी है आपको, किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी है। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए, ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा, पूजा स्थान के बीचों बीच में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फिट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें। अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा।
0: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृषभ और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, व्यर्थ की चिंता आपकी हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी कहते हैं कि मंदिर में या फिर पूजा स्थान में सिर्फ देवी देवताओं का चित्र लगा देने से या फिर प्रतिमाएं रख देने से वो जगह शुद्ध नहीं हो जाती, उसे जागृत करना पड़ता है क्योंकि वहां पे एनर्जी का वास होता है। ऐसे में किस तरीके से उसे जागृत किया जा सकता है, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, घर के मंदिर को, पूजा स्थान को आप जागृत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों वेला एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाइएगा कि सुबह 7 बजे पूजा करते हैं, शाम को 7 बजे पूजा करते हैं, लगभग एक ही समय रखिएगा। शाम की जब आप पूजा करते हैं उसमें दीपक जरूर जलाइएगा और दीपक पूजा स्थान के मध्य में जलाइएगा। पूजा की जब शुरुआत करते हैं तो उस समय थोड़ा सा कीर्तन करिए या बोल बोल कर मंत्र पढ़िए। ऐसा करने से पूजा की पॉजिटिविटी, पूजा की सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलेगी। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखिए, रोज सुबह मंदिर की सफाई करिए और वहां पर एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिए। आप कोई भी पूजा करते हैं, अगर गुरु मंत्र मिला है तो पहले गुरु मंत्र पढ़िएगा, और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो पहले गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पूजा जब समाप्त हो जाए तो जल जो आपने भगवान को अर्पित किया है उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से एक निश्चित समय पर सुबह शाम पूजा करें, मंत्र का जप करें, कीर्तन और आरती करें, पूजा स्थान की साफ सफाई पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से आपका पूजा स्थान जागृत होगा। और अगर पूजा स्थान आपका जागृत होगा तो आप जब भी पूजा स्थान में जाएंगे आपका मन शांत होगा और जो भी प्रार्थना करेंगे वो स्वीकार होगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, करियर में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न उत्तम कुमार जी ने रांची से हमें लिखा है। 25 जून 1999 का जन्म है, 3:30 दोपहर में, रांची झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। उत्तम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मेडिकल जैसे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाएं, दवाइयों का काम करें, फिजियोथेरेपी का काम करें या मेडिकल असिस्टेंस करें, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आपको अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2027 के बाद आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम को एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न अर्चना त्रिपाठी ने हमें लिखा है और अर्चना त्रिपाठी लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1994। जन्म का समय दोपहर के 3:15। जन्म स्थान है लार देवरिया उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी शादी अभी 3 साल पहले हुई है और वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चली आ रही हैं, तो क्या मेरा ये विवाह चल सकेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके इस विवाह की पहले विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से 2027 में सेपरेशन होगा। आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना आगे बनती है 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में, और दूसरा विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आप ऐसा करिए, जल्दी इस मामले को निपटा के जीवन में आगे बढ़ पाएं, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी

0: हम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, और एक ऐसा सवाल है जो कि हर किसी के जहन में आता है कि जब हम पूजा स्थान स्थापित कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो अपने घर में, तो कौन से देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्र हमें नहीं लगाने चाहिए, इसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, एक घर के पूजा स्थान में लोगों की मान्यता है कि माँ काली का और भगवान भैरव का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप माँ काली का चित्र भी लगा सकते हैं और भगवान भैरव का चित्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि घर में माँ काली या भगवान भैरव की उग्र पूजा मत करिएगा। घर के पूजा स्थान पर शनि से संबंधित कोई चित्र, शनि से संबंधित कोई मूर्ति या शनि से संबंधित कोई यंत्र, ये आपको नहीं लगाना है। शनि देव का चित्र, मूर्ति या यंत्र लगाना पूजा स्थान पर और नियमित उसका दर्शन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर बैठकर रोज शनि देव का मंत्र पढ़िए, रोज शनि चालीसा पढ़िए, अच्छा है, लेकिन शनि देव का चित्र लगाना, यंत्र लगाना उचित नहीं है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन यानी जिनका बर्थडे 14 जून को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 14 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका, ये दुविधा रहती है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। भगवान को भोग में सात्विक वस्तुएं अर्पित करें बेहतर होगा कि दोनों समय का भोजन बनाएं और खाने के पहले भगवान को अर्पित करें। तामसिक और राजसिक वस्तुएं अर्पित करने से परहेज करें। अगर कोई भी चीज नहीं है तो शुद्ध जल, दो पत्ते तुलसी के डालकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार 14 जून 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, इससे धन की समस्या में और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 14 जून रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।

0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है तुला। इनकी शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहता है, शिक्षा में बहुत एकाग्र नहीं होते। अगर आपकी राशि तुला है और आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो शनि देव की उपासना करने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी देखिए, कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए मंदिर में जाके या घर में। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम नाम का 108 बार जप करिए, राम राम राम। तो श्री राम के नाम का 108 बार जप करें, ये रोज करें, और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं। 3 महीने निरंतर ये उपाय करें, मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जयंती के साथ।

सुकोई 30 एमकेआई, मिग 29 फाइटर जेट, एमआई जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखें तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और एएमसीए में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए कि दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचो थे, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं इग्लाइस को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी ना तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और ना ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनके रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: स्टेप इनटू टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक, works from the masters, brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
5: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
6: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देख कर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है। बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
3: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए। क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at tunein.com.
9: छोड़ जाती ऐसी हर एक खबर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पैदी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: देखते हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माय कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छी अम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी, इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जाती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। I think it makes me feel like maybe like I don't know, she's traveling somewhere and she'll come back.
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मानतोड़कर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे, तो मैंने किया है क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज़ वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरी थिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwaish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: I feel like I'm getting robbed when I bet the finals on a sports book.
3: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
2: Polymarket?
3: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
2: Even during the finals?
3: Especially during the finals. You can even trade on whether Trump or Chalamet will attend the games.
2: No way. What's the catch?
3: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
2: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
4: Download Polymarket now and use promo code BUZZ for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code BUZZ for $50 free on your first trade. Use promo code BUZZ.
5: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
8: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देख कर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देखकर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गई हो।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए। क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: इसीलिए खबर के
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

सुकोई 30 एमकेआई, मिग 29 फाइटर जेट, एमआई जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में ही व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और लाइस कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खासतौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह यह है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और एएमसीए में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए कि दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंडओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेजी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है। भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है। भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Igla-S को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना, कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी ना तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और ना ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है। सात दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनके रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: No.
5: Oh no.
6: Welcome to Get Real.
7: I got something to say.
6: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
8: Oh my god.
9: It's got to be deliciously desperate.
10: Why do these girls forgive him?
11: Well, she has a soft spot for troubled men.
9: Boo bloody hoo.
6: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
12: Love runs deeper than we know.
6: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
14: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही हैं। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देख कर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। बेदी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा, लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

0: लगते हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी चिंताओं को समझता हूं और खुले दिल से माफी मांगता हूं। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माई कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जाती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: You know, she always used to say कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। And because the camera is very smart, I feel like if you're not a good person, then it shows, everything feels fake. And she used to say, अगर दिल में गंदगी है या अगर you know, if you're not able to live your character's feelings genuinely, then it shows. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: जानवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
1: ये चुनौतीपन क्यों, हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं, और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए।
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था। जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है।
2: जानवी का अपनी माँ श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की।

4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक शो उनकी माँ श्रीदेवी की

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गई। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज़्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, there wasn't a lot of time that had passed. वो बहुत fresh था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, so that was my escape. और जब भी कोई भी professional scenario में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो.
3: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए. क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या.
7: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है. यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है. इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए। क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
9: I have no idea how this election is going to play out,
8: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सोच दिखाती तो कुछ दिखाती।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: सरकार ने नया के पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छा। गुड न्यूज इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छा।

सुकोई 30 MKI, मेग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना, भारत में ही व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर, देखें तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत कि अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इस पे समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और लाइस कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्र हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवीं पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछा छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं, साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन युद्ध से इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेजी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है। भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है। भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी ना तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और ना ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है। बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहाँ पर उनके रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: I feel like I'm getting robbed when I bet the finals on a sports book.
5: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
4: Polymarket?
5: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
4: Even during the finals?
5: Especially during the finals. You can even trade on whether Trump or Chalamet will attend the games.
4: No way. What's the catch?
5: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
4: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
6: Download Polymarket now and use promo code BUZZ for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code BUZZ for $50 free on your first trade. Use promo code BUZZ.
7: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
9: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
10: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए। क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं, आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, NBC स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। स्टार्ट योर डे विद NFL अपडेट्स फ्रॉम माइक फ्लोरियो. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।

हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4

0: से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेद्दी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेद्दी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेद्दी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बूची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेद्दी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उनकी चिंताओं को समझता हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जाह्नवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट माय कैरेक्टर, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट व्हाट द फिल्म वाज सेइंग, हाउ मच इट मेंट टू आवर डायरेक्टर बुच्ची सर, एंड आई थिंक द politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेद्दी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेद्दी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी, इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति

0: पति चढ़कर जाती थी, और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था। तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
1: जानवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जानवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये कैसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
0: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही, मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था, आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
1: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जानवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जानवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जानवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मानतोड़कर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जानवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जानवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
0: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया ज़िंदगी में, और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं, तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मर ही जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
1: साफ है कि जानवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जानवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जानवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जानवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
0: You know, she always used to say कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। And because the cameras are smart, I feel like if you're not a good person, then it shows, everything feels fake. And she used to say, अगर दिल में गंदगी है या अगर you know, if you're not able to live your character's feelings genuinely, then it shows. So that's one thing. And I think that it's, ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
1: जानवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
0: ये चुनौतीपन क्यों, कि हम इसके
2: ये
0: बारे में
2: हमेशा
0: क्यों
2: रहती
0: सोच
2: है
0: रहे?
2: ना.
0: नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
1: दरअसल जाह्नवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जाह्नवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जाह्नवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जाह्नवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप, आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी देयर वाजंट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैड पास्ड, वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए. क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
4: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
7: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या.
8: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है. यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है. इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है. इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा. डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं. We'll be right back. अब इन किटीज को देखिए जरा। एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए। क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end, game two. Overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a second of action.
9: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
2: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए। क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

सुकोई 30 एमकेआई, मिग 29 फाइटर जेट, एमआई जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में ही व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और लाइस कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है, अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलरी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में, सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से हट गया, पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका भी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, MCA डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की ज़रूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: बीते 7 दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनकी रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्सरसाइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: Good news today. अच्छी खबर सच।
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
7: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
8: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: TuneIn is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
9: continue to face political pressure to reach a peace deal,
5: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पैदी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

देखते हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है

0: खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बुची बाबू को आखिरकार ऐसे सेंसुअलाइज्ड दृश्यों को फिल्म से हटाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बुची बाबू ने अपना पक्ष रखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बेदी के कुछ दृश्यों पर मिली प्रतिक्रिया को मैं गंभीरता से लेता हूँ। मैं पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखाने का नहीं था। अगर फिल्म का कोई हिस्सा ऐसा लगा है तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उनकी चिंताओं को समझता हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है। दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जानवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying, how much it meant to our director Butchi sir, and I think the politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जानवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थी।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अच्छी अम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा आस्था और समर्पण से वाकिफ थी, इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है।

0: ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में और हर दो तीन सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही, मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था, आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौटकर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था इत्तेफाक से, जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं, तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: You know, she always used to say कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। And because the camera is very smart, I feel like if you're not a good person, then it shows, everything feels fake. And she used to say, अगर दिल में गंदगी है या अगर you know if you're not able to live your character's feelings genuinely, then it shows. So that's one thing. And I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: जाह्नवी डॉक्टर बनने की माँ की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन हर कसौटी पर अच्छा इंसान बनने की माँ की इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश आज भी करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है। पर जाह्नवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं। उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं।
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं। और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए।
0: दरअसल जाह्नवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था। जाह्नवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है।
2: जाह्नवी का अपनी माँ श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जाह्नवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की।

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ट के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार किड होने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखे तो आह्लाद से ओत प्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुँचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल।
0: पूछा जाता तो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो. लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था. आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी, देर वॉजेंट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैड पास्ड. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप. और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर, आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया. लेकिन जाह्नवी अब भी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई. 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी. एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए. दरअसल मां की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है.
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है.
2: तो बंदे में दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
3: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए. क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
4: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ

0: आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
1: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गई हो।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Summer hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
3: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

सुकोई 30 MKI, मेग 29 फाइटर जेट, MI जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, S-400 जैसा बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य जैसा विशाल एयरक्राफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रूस रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी भी रुकी नहीं, कभी भी थमी नहीं। आज भी रूस भारत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है।

0: रूस ने भारत को अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट ऑफर किया है। साथ ही रूस ने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वो अपने फाइटर जेट Su-57 की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा।
1: भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है।
0: रूस की पेशकश सिर्फ विमान बिक्री तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में संवेदनशील सोर्स कोड तक पहुंच, व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरतों के अनुरूप दो सीटों वाले Su-57D वेरिएंट के विकास की संभावना भी शामिल है। ये भारत को स्वदेशी हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स को बिना किसी विदेशी मंजूरी के विमान में इंटीग्रेट करने की स्वतंत्रता देता है। रक्षा क्षेत्र में इस रफ्तार का तकनीकी हस्तांतरण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

0: देखा जाए तो समय में रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर SU-57 का सोर्स कोड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, भारत में व्यापक प्रोडक्शन करना और देश की जरूरत के हिसाब से 2-सीटर SU-57 का ऑफर देखे तो कई तरह से अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके द्वारा आज जो भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, HAL इसमें समर्थ है कि रशिया के द्वारा ऑफर की हुई टेक्नोलॉजी को हम बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करके बना सकते हैं। दूसरी बात, ये ट्रस्टेड है, टेस्टेड है। तीसरी बात यह है कि ये आज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से और कोड ट्रांसफ़र की वजह से आज हमारा जो अपना है, अस्त्र है, रुद्रम है, जो मिसाइल सिस्टम्स है, सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, इसको इसके ऊपर इंटेग्रेट कर सकते हैं।
1: उसका रिश्ता सिर्फ रक्षा खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, दोनों देश संयुक्त शोध और तकनीकी विकास पर भी साथ काम करते हैं और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

0: हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे।
1: भारत को रूस से Su-57 या S-500 एयर डिफेंस खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि नए भारत ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत एक संप्रभु देश है, वो उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वो अपने लिए सबसे आधुनिक और सबसे उपयुक्त मानता है।

दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए, यह हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे।

भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी के विमान की तलाश और AMCA में देरी के बीच Su-57 का प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है।

0: चीन ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट दे दिया है और चीन का ये ऑफर अब पुतिन के लिए संभावनाएं खोलता है कि वो जल्दी से जल्दी भारत को भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे। वैसे अभी तक S-400 रूस की तरफ से मिल चुका है और अगर Su-57 को लेकर रूस और भारत के बीच साझेदारी होती है, इस पर काम होता है, तो यकीन मानिए ये दोनों देशों के बीच में एक नया रक्षा समझौता और साथ ही साथ साझेदारी साबित होगी। अगर भारत Su-57 प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके कई फायदे होंगे। स्वदेशी उत्पादन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन और तकनीकी ज्ञान में इजाफा होगा, भविष्य में AMCA को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हर विदेशी सौदा ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को बढ़ाए न कि कम करे।
1: अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो देखा जाए तो एक जब बड़ी इंडस्ट्री खुलती है तो इससे एक पूरा सिस्टम ही बदली हो जाता है, एक नेक्स्ट गैप अप हो जाता है। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को, भारत को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक जनरेशन होगा, इंसिलर इंडस्ट्री खुल जाएंगी, साथ साथ में मैन पावर एक ट्रेन हो जाएगी, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में सोच बदली हो जाएगी, हमारी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन बदली हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमको बेस मिल जाएगा और देश में बनने से एक हम कई टेक्नोलॉजी को अपने एमका के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो उसका एक बहुत फायदा होता है, क्योंकि कई पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं होते।

0: रूस के Su-57 के ऑफर से सवाल उठता है कि क्या भारत आने वाले दशक में चीन के तेजी से बढ़ते एयर पावर का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ लौटेगा या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर लगाएगा।
1: भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान AMC 2035 से पहले तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चीन G20 के साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की फ्लीट एक तो कम हो रही है और दूसरा चीन के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है।
0: बढ़ती चुनौतियों के बीच वायुसेना को एक ब्रिज गैप फाइटर की जरूरत है जो दुश्मन के स्टेल्थ विमानों, एडवांस एयर डिफेंस और आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। Su-57 इसी गैप को भरने का मजबूत विकल्प बन सकता है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका कॉम्बैक रेंज 3500 किलोमीटर है। करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस फाइटर जेट की सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता 65,000 फीट है, जो अपने साथ करीब 10,000 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस Su-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
1: पुतिन का Su-57 का ऑफर केवल एक हथियारों की डील भर सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी है। पुतिन दरअसल दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि रूस और भारत आज भी रक्षा के क्षेत्र में साझेदार है और दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या भारत को एक बार फिर से रूस के साथ आना चाहिए, यानी 2018 में जिसे वो पीछे छोड़ चुका है, क्या वापस उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
0: भारत कभी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है। उस समय इसे FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया जो Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बन पाई। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
2: कई बार ये सवाल उठता है कि भारत 2018 में ही क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। तब हम करते तो आप कहीं के कहीं पहुंचे होते, पर देखा जाए तो उस समय में बहुत महंगा पड़ रहा था, रशिया जॉइंट डेवलपमेंट की कीमत मांग रहा था, तब इनका अभी प्रोटोटाइप में था और भारत का DRDO और हमारा जो साइंस कम्युनिटी है वो सोचते थे कि हम देश के अंदर ही डेवलप करें, एमका डेवलप करें। तो कई बातें थी जिसकी वजह से उस समय में इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया।
0: Su-57 के ऑफर के बीच रूस ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी डिलीवर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिलीवरी ऐसे समय में हुई जब रूस खुद यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत और रूस में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है।
2: भारत और रूस की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रूस जबकि खुद यूक्रेन के साथ जूझ रहा है और आए दिन उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और उनकी काफ़ी रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने S-400 की चौथी बैटरी भारत को हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ साथ में फिफ्थ बैटरी का भी ऑन शेड्यूल डिलीवरी का उनका प्लान है। तो दो तीन बातें कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो ये भी है कि यूक्रेन जो थे इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी तेज़ी से काम करती जा रही है और एक वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखना चाहती है कि अगर वादा किया है तो डिलीवर करते हैं। साथ साथ में भारत के साथ एक बिजनेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है, क्योंकि भारत ने भी रूस के साथ खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं है कि भारत को रूस की ज़रूरत है, रूस को भी भारत की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत ने S-400 की डील की थी तब अमेरिका ने कहा था हम काट सा लगा देंगे, पर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा और जो देखा कि कितना कामयाब साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
0: भारत और रूस की रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रूस की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा खरीद का डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन आज भी भारतीय सेनाओं के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का ही है।
1: भारत पारंपरिक रूप से हथियारों के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं जल थल नभ, तीनों में 60-70% हथियार रूसी निर्मित ही है।
0: भारतीय सेना में वो कौन कौन से हथियार हैं जो रूस से लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। वायुसेना के बेड़े में शामिल Su-30 MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी रूस से ही आयात किए गए हैं। एयर डिफेंस के लिए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वहीं Aegis को भी सेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से एक रूसी एडमिरल गोर्शकोव पोत है जिसे रिफर्बिश किया गया था। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक चैन T-90 भीष्म और T-72 अजय रूसी तकनीक पर ही आधारित है। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो BM-21 ग्रैंड और BM-30 स्मर्श भी रूस से ही लिया गया है। अब भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं है बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान और सह उत्पादन में बदल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AK-203 राइफल्स इसके उदाहरण हैं।
1: दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, दशक तक गुजर गए, दुनिया में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी उथल पुथल हुई, कोई दोस्त बना कोई दुश्मन बना, लेकिन एक दोस्ती जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटी, वो थी भारत और रूस की दोस्ती। इतने दशकों बाद भी न तो इस दोस्ती को किसी की नजर लगी और न ही इस दोस्ती का भरोसा टूटा, यानी रूस ने भारत पर और भारत ने रूस पर आज भी भरोसा किया है।
0: सात दशक में भले ही वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या फिर भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के दौर में और मजबूत हुआ। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम सैन्य समझौता लागू हुआ जिसे रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कहा जाता है। ये समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था और जनवरी 2026 में प्रभावी हो चुका है। रिलॉस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी, यानी रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस और सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। ये इस्तेमाल सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। रिलॉस समझौते के तहत जंग या किसी अन्य सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करेंगे। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देश की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करेंगी। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है।
2: देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो रिलॉस साइन किया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके तहत रशिया भारत में और भारत रशिया की बेसिस पर तकरीबन 3000 सैनिक, 5 युद्ध पोत और 10 एयरक्राफ्ट तक रख सकते हैं, जहां पर उनके रख रखाव और उनको तेल, पानी, राशन, इस तरह की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं जो एक्साइज के लिए, रखी के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। देखिए, दोनों को फ़ायदा है इसमें कि क्योंकि भारत को उत्तरी समुद्री रास्ते, आर्कटिक रीजन, उस इलाकों में पहुँच मिल जाएगी, रशिया को हिंद महासागर और भारत के अरब सागर में बेसिस मिलेंगी जहाँ से वो अपना देखभाल कर सकते हैं, उनके शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी।
0: रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग 21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट को ट्रैक करने की बात करें तो ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत के साथ साझा करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान बन सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM आकाश नेक्स्ट जेनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। ये नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को रोकने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: घर के पूजा स्थान का रंग विशेष होना चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं? घर के पूजा स्थान को जागृत कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं? आपके घर के पूजा स्थान का कैसे उठाएं लाभ, कैसे बनाएं इस स्थान को पवित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Tune in has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
6: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
5: to live sports action.
7: To the near side corner. The wraparound. He scores!
5: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे और कुछ को देखकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या।
9: नृत्य में योग मुद्राएं दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस युवती के नृत्य में सभी योग मुद्राएं शामिल है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। यही वजह है कि यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके कह रहे हैं कि आज के दौर में बेटियों के लिए ऐसे गौरवशाली नृत्य सीखना जरूरी है। इस डॉग की खुशी देखिए जरा, ये स्ट्रीट डॉग है और इसे आज खाने की ट्रीट मिली है, इसीलिए ये खुशी से झूम रहा है। इतना सारा फूड आइटम एक साथ मिलने के बावजूद डॉगी ने अपना हिस्सा ही थाली से उठाया और वापस सड़क पर लौटते ही खुशी से झूमने लगा। डॉगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब इसे देखकर उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब इन किटीज को देखिए जरा, एक भला मानुस खिड़की साफ करने के काम में व्यस्त है, बिना ये जाने कि खिड़की के कांच की दूसरी तरफ दो बिल्लियों को ये सफाई खेल नजर आ रही है। सफाई करने वाला रोजाना की तरह खिड़की का कांच साफ कर रहा है और वो जैसे जैसे ब्रश खिड़की पर घुमा रहा है, दूसरी तरफ बैठी शरारती बिल्लियां ठीक वैसे ही मूवमेंट कर ब्रश को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस एक तरफा खेल को देखकर बेहद आनंद ले रहे हैं। जिंदगी छोटी बातों से ही गुलजार होती है। यूं तो अपने घर में हर स्त्री खाना बनाती है और अपने पति को गर्मा गर्म भोजन कराती है, लेकिन कम ही पति होते हैं जो इस वीडियो में दिख रहे शख्स की तरह रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। देखिए जरा, गर्मी में एक पत्नी को गर्मा गर्म रोटियां थोड़ा सख्ती से परोसते देख खाना खाते पति का दिल पसीज जाता है और वो बीवी के लिए हाथ पंखा चलाने लगता है। यूजर्स इसे देख कर कह रहे हैं कि अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। सोशल मीडिया पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का ये छुटकू बंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। खुद ही देखिए, हनुमान मंदिर में ऊपर बैठे पुजारी इस छुटकू बंदर को पहले तो बुलाते हैं और वो उनकी ओर आ जाता है और उसे ऊपर लेने के लिए हाथ देते हैं। नन्हा छोटू बंदर उनके हाथ पर चिपक जाता है, मानो उसे भी इस मंदिर में शरण मिल गयी हो।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: खबरें तो गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: सोशल मीडिया पर अच्छी अम्मा वायरल। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। बालाजी की भक्ति का जाह्नवी पर असर। श्रीदेवी के अधूरे सपनों में जाह्नवी की आस्था। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: सरकार ने नए आर्मी चीफ के नाम का किया ऐलान। जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संभालेंगे पदभार। डीआरडीओ को एक और उपलब्धि। हवा में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर क्षमता का परीक्षण। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट। हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। आसमान में सेना ने दिखाया हवाई करतब। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 11.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीकेंड पर सैलानियों से हाउसफुल हुए हिल स्टेशन। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा। होटल और होमस्टे में नहीं मिल रही ठहरने की जगह। 13 दिन करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अनोखी पहचान बनाई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जानवी कपूर है। जी हाँ, जानवी कपूर। बीते 4 जून को जानवी कपूर की पेद्दी फिल्म रिलीज हुई तो जानवी के किरदार को लेकर हंगामा मच गया। लोग फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू की आलोचना करने लगे कि उन्होंने जानवी के फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाई किया है। जानवी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचता रहा लेकिन वो शांत रही। आखिरकार बुच्ची बाबू को फिल्म से उन दृश्यों को हटाना पड़ा।

हैं जो महफिल में बड़े बेपरवाह से अंदर से वो गुजरते हैं गहरी किसी राह से। इस जुमले में मौजूदा दौर की दिलकश अदाकारा जाह्नवी कपूर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान जज्ब है। 4 जून को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई बुची बाबू की पेदी फिल्म ने पहले ही हफ्ते में बेशक 345 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया, लेकिन जबरदस्त कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को भी ट्रिगर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक गलियारों तक में चर्चा गर्म हो गई कि पेदी में जाह्नवी कपूर के किरदार को अनावश्यक रूप से सेक्सुअलाइज किया गया है, उनके फिगर को जानबूझकर ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। दरअसल पेदी में जाह्नवी कपूर ने अच्छी अम्मा का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक बूची बाबू के मुताबिक अच्छी अम्मा का किरदार खास तौर से फिल्म के हीरो रामचरण के किरदार पेदी के बदलाव को दिखाने के लिए गढ़ा गया है। कह सकते हैं कि इस तर्क की आड़ में बूची बाबू ने जाह्नवी कपूर की एक्टिंग से ज्यादा उनके फिगर को ग्लैमराइज कर दिया। जाहिर है महिला अधिकार संगठनों से लेकर नेटिजन्स तक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। भारी विरोध को देखते हुए बूची बाबू को आखिरकार